पौड़ी सतगुरु विटोवार जित मिले खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्नी नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे।

संध्या बादं सिल पूज सुबगल समादं मुख झूठ भूखन सारं त्रिपाल तिहाल विचारं गलमाला तिलकल लाटं दो तोती बस्तर कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निचो कर्मं कहो नानक निचो त्यावे बिन सतगुरु वाक न पावे।

0: पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना पे ही कीता पावना हुक्म किए मन भाव देरा पीड़े अगे जावना नंगा दो जग चालिया तद से खरा डरावना करे अगण पछतावना
1: करे अगण।

बल दिवाहे गुर एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती समरका गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय और जन हर गोबिंद नाउ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईया जैस बिठे सब दुख जाए तेक बहादुर सिमरिया घर नाउ निध आवे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोले जी वाहे गुरु बोले जे पंजा प्यारिया सोहां साहिबजादिया चालिया मुकतिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छगिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिन्ना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोले जी वाहे गुरु बोले जे जिन्ना सिंघा सिंघड़िया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आ रिया नार चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोले जी वाहे गुरु बोले जी पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोले जी वाहे गुरु बोले जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवा जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रिचार आए तो देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीता

0: दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। श्री गोयल अन्य सदस्य देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमरीका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसमें भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा बढ़ाने को भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं को त्रुटियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस बीच SIR के अंतर्गत आज से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई है। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक गतिविधि का विस्तार जारी है। जुलाई की IIP वृद्धि दर पहले के 6.7% के अनुमान से बढ़कर 7.4% हो गई है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल 45 पदक प्रतियोगिता में जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Union Home Minister Amit Shah.
2: मीडियम रेट 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 6:05 होए ने ज्ञान अमृत।

आराधना भक्ति संगीतदायी प्रोग्राम जिसनों तुसी सरवण कर रहे हो आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों।

0: जय हिंद जी संधु साहब बचाले।
1: जय हिंद जी। जय हिंद हुलिया राम जी, सुनाओ की हाल चाल है।
0: तकड़ा तकड़ा, शुक्र मालिक दा।
1: हाँ,
0: जेड़ा टाइम लंघे
1: वधिया जी।
0: हाँ
1: देखो, जेड़ा समा लगाना ते ठीक ढंग दा काम करना, दोनों चीजां नाल नाल चल दियां ने जी।
0: बिलकुल सही गल
1: है, देखो अपनी रफ्तार नाल लंघ ही जाना।
0: हाँ बिलकुल बिलकुल, देखो संधु साहब गल है भी समा तक पौड़िए भी लंघा रहे ने बेलियां गप्पा मार के। पर वह समा कोई बहुता वधिया नहीं हुंदा जिहड़ा रुझेवे च कम दे विच, क्योंकि कम का बिगाड़ आपां खेतीबाड़ी वाले बंदे आ, फसल बाड़ी देख रेख मंगदी है, वह तां तों पैसे तां मंगदी नहीं, तां तों पैसे दिंदी है ते देख रेख मंगदी है। देख रेख जे तुसीं करदे नहीं, क्योंकि बिजाई तो बाद जिहड़ा अमूमन आपां देखदे आ कि लोकी जिहड़ा है वो थोड़ा अलगर्जी करनी शुरू कर देंगे, ज्यादातर कामयां दे सिर ते छड़दे है। सो इहदे च असीं सारे ही शामिल हाँ, इत्थे ही जाके किते ना किते जिहड़ा है असीं कांप खाने या मार खाने, जिहदे नाल फिर झाड़ दे उत्ते जाके सानू पता चलता है कि कमी पेशी

श्री राम के आश्रम में प्रवेश करते ही भरत का दुख और दाह ऐसे मिट गया जैसे योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। श्री राम सीता और लक्ष्मण को देख सखा निषाद सहित भरत और शत्रुघ्न प्रेम के आनंदातिरेक में हर्ष विषाद सुख दुख सब कुछ भूल गए। स्नेह के सागर में डूबते उतराते भरत हे नाथ रक्षा कीजिए कहते हुए दंड की भांति श्री राम के चरणों में आ गिरे।

0: भाषमाणः। सः अवोचत् यत् E20 इन्धनम् एकं समाह्वानम् अस्ति, किन्तु आधुनिक प्रविधिना अस्य परिहारो भविष्यति। सः स्पष्टं न्यगादीत् यत् पश्चिमैशिया युद्धस्य कारणात् जगति देशैः वैदेशिक निर्भरता न्यूनीक्रियते। अस्मिन् काले भारतस्य वर्धमानाम् ऊर्जा आवश्यकताम् विचार्य भारत ऊर्जा सप्ताहः एका प्रमुखा पीठिका वर्तते। भारतीय रेल विभागेन पूर्वोत्तर रेल विभागस्य वाराणसी मण्डले 14,600 किलोमीटर परिमिते क्षेत्रे कवच 4.0 इति प्रणाल्याः स्थापनायै 23,200 कोटि रूप्यकाणि अनुमोदितानि। अनुमोदितया परियोजनया वाराणसी मण्डलस्य चिह्नितेषु अवशिष्टेषु खण्डेषु कवच 4.0 इति प्रणाल्याः विस्तारो भविष्यति, येन रेल परिचालनाय उपलब्धं सुरक्षातन्त्रं सुदृढं भविष्यति। उपक्रमोऽयम् अधिक सुरक्षितं विश्वसनीयं च रेल परिचालनं सुनिश्चेतुं तथा सम्पूर्णे भारतीय रेलजाले स्वदेशीय कवच प्रौद्योगिक्याः विस्ताराय क्रियमाणानां प्रयासानां समर्थनं करिष्यति। भारतेन स्वीय वस्तूनां सेवानां च आहत्य निर्यातस्य परिमाणं 63.8 बिलियन डॉलर परिमित धनात् वर्धयित्वा 1 ट्रिलियन डॉलर परिमितं विधातुं उच्च लक्ष्यं विनिर्धारितम्। ह्यः मुम्बय्यां संजातस्य भारत संयुक्त अरब अमीरात निवेश संबंधी उच्चस्तरीय संयुक्त कार्यबलस्य 14 उपवेशनानन्तरम् अस्य ऐतिहासिक लक्ष्यस्य घोषणाकारी। वाणिज्योद्योगमन्त्रिणा पीयूष गोयलेन प्रोदीरितं यत् जागतिक संकटेषु सत्यपि प्रवृत्तस्य वित्तीयवर्षस्य प्रथम षट् मासेषु पण्यनिर्याते 15% अधिकं वृद्धिः समवापि। जापान देशस्य आइची नागोया नगरे आयोज्यमानासु एशिया क्रीडासु भारतस्य पदक प्राप्तिक्रमः ह्यः अपि अनुवर्तितः। लक्ष्यवेद क्रीडा क्रिकेट कुराश मुष्टियुद्धम् इत्यादिषु क्रीडासु भारतीय क्रीडकैः पदकानि प्राप्तानि। भारतेन पदक संख्यायां 8 पदकानि अधिकानि योजितानि। भारतीय पुरुष क्रिकेट दलं च उपान्त्य चक्रे प्रविष्टम्। पुरुषाणां कुन्तक्षेप स्पर्धायां भारतस्य 2 पदके प्राप्ते। यशवीर सिंहेन रजत पदकं तथा रोहित यादवेन कांस्य पदकम् अवाप्तम्। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दी 7 बजे ने पेश ने मुख खबरां। भारत अते संयुक्त अरब अमीरात स्थानक मुद्रावां विच व्यापार दे निपटारे अदायगी अते केंद्री बैंका दियां डिजिटल मुद्रावां नाल संबंधित पहल कदमियां लई सहमत होए। पेट्रोलियम अते कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है कि पश्चिमी एशियाई विच चल रहे संकट दे बावजूद देश ने हुण तक कच्चे माल अते कुदरती गैसां दी सप्लाई दियां चुनौतियां दा सफलतापूर्वक हल कीता है। सरकार वल्लों नवी दिल्ली विच पशुधन बीमा योजना पोर्टल दी शुरुआत। ए पशुधन बीमे लई एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। राज्यसभा मेंबर ते प्रसिद्ध वातावरण प्रेमी संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने जलंधर विच ड्रेनों नूं प्रदूषण मुक्त करन दे लई कीते जा रहे उपरालियां दी समीक्षा कीती है। महान इनकलाबी शहीदी आजम भगत सिंह 119वीं जयंती मौके पंजाब दा सूबा पदरी समागम लुधियाना विखे करवाया गया है। भारतीय जनता पार्टी दे प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा है सूबे विच नशा दी मौजूदगी स्थिति तरसयोग है अते सरकार इसनु काबू करन विच असफल रही है। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने कहा है कि लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी दे मुद्दे ते पुलिस जांच शुरू कर दी गई है। दंगा करन अते करवान वाले किसी भी व्यक्ति

कानून बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब गौतन कमीशन ने उप चेयरमैन कीमती भगत ने जलंधर विच बेसहारा गौतन की सांभ संभाल अती सुरक्षा यकीनी बनाने पर जोर दिता है। भारत वालों एशियाई खेडों विच तंगा जितन की मुहिम जारी है। खिडारियों ने शूटिंग, क्रिकेट, कुरश और मुक्केबाजी विच तमगे हासिल किए। इस सन हुण तक दीआं मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। तिलो जी हुण पेशे प्रोग्राम सोनी सवेर। प्रोग्राम लेके हाजिर ने रीमा गुगलानी।

गुड मॉर्निंग। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते। नाल दे नाल तुसी सानू 100.8 मेगाहर्ट्ज़, 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते वेव्स ऐप ते सुन रहे हो बिल्कुल लाइव। मैं हां तुहाडी आरजे रीमा लाईयां तुहाडे सारयां दे लई सोहणी सवेर। अज जदों मैं आ रही सी ते पार्क दे विच, क्योंकि सवेरे सवेरे जल्दी करना हुंदा है, इहदे लई घरों वी जल्दी निकलना पैंदा है। मैं तो खैर पैदल नहीं आई, पर रस्ते दे विच मैनूं बहुत सारे लोग ना पैदल तुरदे दिखाई दिते। मौसम सवेरे सवेरे ठंडक दे नाल भरिया होया और इस मौसम नूं इंजॉय करदे लोग सैर करदे जा रहे सी। सदके जाइए उन्हां लोकां दे जिन्हां दी वाकई रूटीन बनी हुई है, मीं जावे नेर

0: ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ। ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਰੀਮਾ ਗੁਗਲਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 8 ਵਜੇ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष CBSE की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की। अमेरिका ने भारत और 19 अन्य देशों से आयातित विशेष दवाओं पर टैरिफ हटाया। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के मौजूदा सत्र में कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह त्रिभाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार तथा CBSE की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को CBSE से कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 2027 से शुरू होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र से भारतीय मूल की दो भाषाओं सहित तीन भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन वाली अपनी नीति को लागू करने पर विचार करने को कहा था। ये विवाद CBSE के अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूपरेखा 2023 के अनुरूप बनाने के निर्णय से संबंधित है। इस रूपरेखा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चालान की राशि को बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण

0: नवीनीकरण, फिटनेस और पीयूसी प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्री हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को सुदृढ़ करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्चस्तरीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में अब तक उठाए गए कदमों और सर्दियों के मौसम से पहले उसके दौरान जरूरी उपाय की समीक्षा की गई।
1: कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर पीयूसीसी नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए जागरूकता अभियान और नियमों का पालन सुनिश्चित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत पहले नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण, सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण कार्य में तेजी लाई जाएगी और मलबा ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। सर्दियों की कार्य योजना के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि निर्णयों तथा चिन्हित कार्रवाई बिंदुओं का धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नीतिका गुप्ता के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम नजर डालेंगे कि कैसे मिशन लाइफ की सहायता से इस सोच को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
2: देश का 40% खनिज संसाधन समेटने वाले झारखंड में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने युवाओं को पर्यावरण अनुकूल आदतें सिखाने के लिए अपने सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर 2 क्रेडिट और 10 सप्ताह का अनिवार्य कोर्स शुरू किया है। इस आंदोलन के मूल विजन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
3: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से इतना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन को कोडरमा जिले की जरगा पंचायत ने सच कर दिखाया है। यहाँ के कझाटांड गांव की कभी बंजर रही भूमि को जल योद्धा पार्वती देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सामूहिक भागीदारी से हरा भरा कर दिया है। पार्वती देवी को इसके लिए राष्ट्रपति से सम्मान भी मिल चुका है।
4: पहले बारिश के पानी सीधे जंगल चल जाता था, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। अभी जिसके घर जाइएगा सब सारा अनाज मिलेगा, बहुत अच्छा फसल होता है बारिश के पानी जब से रुका है।
2: साहिबगंज के आदिवासी इलाकों में इस साल 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर जल, जंगल और वन्य जीवों को नया जीवन दिया गया है। इससे स्थानीय आदिम जनजातियों को गांव में ही रोजगार और पत्तों और बांस से अतिरिक्त आय मिल रही है।
5: नाम है चुन्ना।

0: इस जंगल में हम लोग आम भी लगवाए हैं और केन भी है, फल उल दर है, उससे हम लोग गांव वालों को भी यहाँ उस बेच उच करके हम लोग का सुविधा होगा।
1: ये बदलाव सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है, झुमरी तिलैया जैसे शहरी क्षेत्रों में भी 10,000 से अधिक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में गठित इको क्लब्स बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा और पानी की बचत सिखा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा और साहिबगंज से अनंत ओझा के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
2: सरकार ने कहा है कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसमें करीब 61% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार से संपर्क सुविधाएं मजबूत हुई है और बाजारों तक भी पहुंच बेहतर हुई है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित बनाने का काम ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
4: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज के में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इन देशों की सूची फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की है। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्रीशंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बीच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक है।
2: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश

0: केरलम, माही, कोंकण, गोवा और उड़ीसा में भी आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद जया। महिला सुरक्षा पर शीर्ष अदालत द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान की खबर को आज सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है कि शोरियों से गैंगरेप, पूरे तंत्र की विफलता, रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कई निर्देश जारी, स्थिति रिपोर्ट तलब, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। आम लोगों से जुड़े चार और मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता ने यूपीआई भुगतान से जुड़े फैसले को प्रमुखता से दिया है।

0: किशोरियों से गैंगरेप, पूरे तंत्र की विफलता, रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कई निर्देश जारी, स्थिति रिपोर्ट तलब, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। आम लोगों से जुड़े चार और मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता ने यूपीआई भुगतान से जुड़े फैसले को प्रमुखता से दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एमडीआर पर रोक लगाने से इंकार, केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस, चार सप्ताह में मांगा जवाब। बवाल के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 10 दिन के लिए बंद, पंजाब केसरी की खबर है। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट का सुझाव लिखा है, ट्रैफिक चालान ना भरें तो बिजली बिल में जोड़ दें। बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा तंत्र तैयार करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बयान अमर उजाला में है। हिंदुस्तान ने विश्व हृदय दिवस पर भारत समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र के 39 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण दिया है। प्रदूषण दिल के मर्ज को जानलेवा बना रहा, हर साल 17 लाख लोगों की हार्ट अटैक से होती है मौत। लोकसत्ता ने मौसम का मिजाज शीर्षक से लिखा है, सितंबर की बारिश ने तोड़ा 57 साल का रिकॉर्ड, फिर भी 11.8% कम वर्षा। एशियाई खेलों में विथ्या रामराज के नए रिकॉर्ड को भी अखबारों ने सचित्र दिया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष सीबीएसई की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: Supreme Court asked Centre to consider exempting Class 6 students from CBSE's three-language policy this year. Indian Navy to host second edition of Commanders Conference 2026 in New Delhi from today till Thursday. Delhi government prepares tougher action plan to control air pollution in the national capital during winter season. US waives tariff on specialty drugs imported from India and 19 other countries. An Indian men's cricket team advanced to the semi-finals at the Asian Games in Japan. The Supreme Court has directed the Centre and the Central Board of Secondary Education CBSE to consider extending to the current Class 6 students the exemption from the three-language framework that has been granted to students of Class 7. We have more from a correspondent.
3: A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justices Joy Mallya Bagchi and V. Mohana asked Solicitor General Tushar Mehta and Additional Solicitor General Aishwarya Bharti, appearing for the Centre and the CBSE, to grant the same relaxation granted to students of Classes 7, 8 and 9 to students of Class 6 this year. On September 17, the top court had asked the CBSE to consider implementing its policy mandating the study of three languages, including two native Indian languages, for Class 6 students from the next academic session starting 2027. According to CBSE's statement, the current batches studying in classes 7, 8 and 9 would not be required to give board examination in third language when they progress to class 10. The Solicitor General has submitted that about 99% of schools have adopted the third language policy and have been provided the necessary facilities, and only about 1.2% of the schools have not. During the hearing, the Centre, however, maintained that it was not inclined to exempt the current class 6 batch from the policy and said students should pursue the new language framework from the current academic year itself. Yashasvi Kiryal for Akashvani News, Delhi.
2: Indian Navy will host the second edition of the Commanders Conference 2026 in New Delhi from today till Thursday. The three-day conference will provide an avenue for senior naval leadership, including outstation operational and area commanders. It will undertake a comprehensive review of operational preparedness at the military strategic level and engage with senior government functionaries through an institutionalized mechanism. The conference will be pivotal in underscoring Indian Navy's contribution towards safeguarding India's maritime interests, including security of energy amidst the ongoing conflicts in West Asia. On the opening day of the conference, Defence Minister Rajnath Singh will share his vision and guidance on national maritime perspectives and expectations

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार ते केंद्रीय सैकेंडरी सिक्ख्या बोर्ड नूं इस साल 7वीं जमात दे विद्यार्थियों वांग 6वीं जमात दे विद्यार्थियों नूं भी तीन भाषा नीति तो छोड़ देने बारे विचार करन दा निर्देश दिता। राज्यसभा मैंबर ते प्रसिद्ध वातावरण प्रेमी संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने ड्रेनां नूं प्रदूषण मुक्त करन लई कीते जा रहे उपरालियां दी समीक्षा कीती। कहा, कुदरती स्रोतां नाल खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कीता जाएगा। सीधे करां बारे केंद्रीय बोर्ड ने टैक्स दातावां लई मुलांकण साल 2026-27 लई ऑडिट तहत आमदन टैक्स रिटर्न भरन की आखिरी तरीक 21 नवंबर तक वधाई। अमरीका के संघी जांच ब्यूरो ने गैंगस्टर सतेंद्रजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ नूं 10 अत्त लोड़ींदे भगौड़ियां की सूची में शामिल किया। उसकी जानकारी देने लई 10 लाख अमरीकी डॉलर के इनाम का ऐलान। एशियाई खेडां च भारतीय खिडारियों निशानेबाजा ने देश की तमगा सूची में कई होर तमगे जोड़े। मर्दां दी क्रिकेट टीम भी सैमीफाइनल विच पहुंची। ते हुण खबरां विस्थार नाल। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार ते केंद्रीय सैकेंडरी सिक्ख्या बोर्ड CBSE नूं इस साल 7वीं जमात दे विद्यार्थियों वांग 6वीं जमात दे विद्यार्थियों नूं भी तीन भाषा नीति तो छोड़ देने बारे विचार करन दा निर्देश दिता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची ते वी मोहना दी बेंच ने केंद्र सरकार ते CBSE दी नुमाइंदगी कर रहे सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ते वधीक सॉलीसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी नूं कहा कि उह 6वीं जमात दे विद्यार्थियों नूं 7वीं, 8वीं ते 9वीं जमात दे विद्यार्थियों वांग ही छोड़ देण। 17 सितंबर नूं सुप्रीम कोर्ट ने CBSE नूं 2027 तो शुरू होने वाले अगले अकादमिक सैशन तो 6वीं जमात के विद्यार्थियों लिए तीन भाषावां जिन्हां च भारतीय मूल दीआं दो भाषावां शामिल ने दे लाजमी अध्ययन की नीति नूं लागू करन ते विचार करन लई कहा सी। CBSE दे एक बयान मुताबक 7वीं, 8वीं ते 9वीं जमात विच पढ़ रहे मौजूदा विद्यार्थियों नूं 10वीं जमात विच प्रवेश करन लई तीजी भाषा की बोर्ड परीक्षा देने की लोड़ नहीं होगी। सॉलीसीटर जनरल ने बेंच नूं दस्सिया कि ताज़ा अंकड़े दर्शाते हैं कि करीब 99% स्कूलों ने तीन भाषा नीति अपनाई है ते उन्हां नूं लोड़ींदियां सहूलतां प्रदान कीतियां गईयां ने। यह विवाद CBSE दे अपने पाठक्रम नूं राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति 2020 ते स्कूल सिक्ख्या लई राष्ट्रीय पाठक्रम ढांचा 2023 दे अनुकूल बनाउण दे फैसले नाल संबंधित है। इस ढांचे तहत विद्यार्थियों लई दो भारतीय भाषावां समेत तीन भाषावां पढ़ना लाजमी है। सर्वोच्च अदालत ने सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां नूं बकाया ट्रैफिक ई चलान की राशि की वसूली च सुधार लई बिजली बिलां नाल जोड़न ते विचार करन लई कहा। जस्टिस JB पादरीवाला ते KV विश्वनाथन दे बेंच ने कहा कि पहल प्रभावशाली वसूली प्रक्रिया नूं बेहतर बना सकती है। अदालत ने यह सुझाव भी दिता है कि वाहन रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण मालकी दे तबादले फिटनेस अते PUC

बने के कौन बनाए पति भोज आई के फिर वो कहन लगी बेटे नु किसने है पढ़ाई पति।

ਸ਼ਾਮ ਲੈ ਚੱਲੋ ਬੰਦ ਬੰਦ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਪਲੰਗ ਬਣਾ ਦੇ ਲਈ।

0: सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार अते केंद्रीय सेकेंडरी सिक्ख्या बोर्ड नूं इस साल सतवीं जमात दे विद्यार्थियों वांग छेवीं जमात दे विद्यार्थियों नूं भी तीन भाषाई नीति तों छूट देने बारे विचार करन दा निर्देश दिता है। सर्वोच्च अदालत ने सूबियां ते केंद्री शासित प्रदेशां नूं बकाया ट्रैफिक ई चलान दी राशि दी वसूली विच सुधार लई बिजली बिलां दे नाल जोड़न ते विचार करन लई कहा है। राज्यसभा मेंबरों के प्रसिद्ध वातावरण प्रेमी संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने ड्रेना नूं प्रदूषण मुक्त करन दे लई कीते जा रहे उपरालिया की समीक्षा कीती कि आ कुदरत स्रोतां दे नाल खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिद्धी करां बारे केंद्रीय बोर्ड ने टैक्स दाताओं लई मूलांकन साल 2026-27 लई ऑडिट तहत आमदन टैक्स रिटर्न करन दी आखिरी तारीख 21 नवंबर तक वधाई। अमेरिका दे संघी जांच ब्यूरो ने गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराल नूं 10-8 लोड़ींदे भगोड़ियां दी सूची विच शामिल किया। उसकी जानकारी देने वाले नूं 10 लाख अमरीकी डॉलर दे इनाम दा ऐलान। भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा है सूबे विच नशे दी मौजूदगी स्थिति तरस योग है अते सरकार इस नूं काबू करन दे विच असफल रही है। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने कहा है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दे मुद्दे ते पुलिस जांच शुरू कर दी गई है। दंगा करन जां करवाउण वाले किसी भी व्यक्ति नूं बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब गौ सेवा कमिशन दे उप चेयरमैन कीमती भगत ने जलंधर विच बेसहारा गौ धन दी सांभ संभाल ते सुरक्षा यकीनी बनाने ते जोर दिता है। एशियाई खेडां विच भारतीय खिडारियों ते निशानेबाजां ने देश दी तमगा सूची विच इक होर तमगा जोड़े। मर्दां दी क्रिकेट टीम विच सेमी फाइनल विच पुज गई है। ए सन जी हुण तक दीआं मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं।
1: जापान दे खेड मैदानों विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तो वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा शिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात

बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक वक चैनल्स दे FM रेनबो प्राइमरी चैनल DRM ते DTH चैनल्स दे इदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।

0: reach the eastern gate, my sister the witch. I say, go from the gate soon, Daisy. The inner gate, honey. प्यार दे रंग महसूस करवा दिते किते प्यार दी मिठास किते इंतजार ते किते दिल दी बेचैनी किते महफिल दी रौनक भी दिल का क्या कसूर नब्बे दे दहाके दी उस दौर दी याद सानू फिर दबा गई जदों मुठियां धुना दिल नू छू जाण वाले बोल फिल्म संगीत दी खास पहचान होया करदे सी फिल्म दे संगीतकार नदीम शोर गीता अपनी आवाज देने वाले गायक कुमार सामनो आशा भोसले साधारण सरगम अलका याकिनी जी इस पिटारे हम इतने ही समेट लेने इस दे जुड़े रहे उस शुक्रिया हम जी सुन रही सी एक ही फिल्म के गीत अज की फिल्म से दिल का क्या कसूर मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं
1: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम खेडां दे सब तो वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा कौन रचेगा इतिहास कौन चुम्मेगा जित दा शिखर भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक वक चैनल्स ते एफएम रेनबो प्राइमरी चैनल डीआरएम ते डीटीएच चैनल्स ते इहदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे एफएम रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते
2: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवें प्रसारण समय दा ध्यान रखण
0: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां तलो जी हुण पेश ने कुछ गज़लां

अक्षतों कल वसलती हुई तिबला मिली सांडी आवाज। सिर्फ उसमें गौंदी नहीं है बल्कि महसूस करवा के जाती है जी इस गजल दे विच उन्हां दे लहर कहंदा अरंदाज। बखूबी हर वार नवा जिहा लगता है ते लगता है कि बिल्कुल एक होर नवी लहर आ गई। दिल्ली समझांदे रहिए दिल दे ना मनिए इसनू भुलना चाहिए पर नहीं हो पाता क्योंकि यादों का पिटारा ही ऐसा है। तो ये गजल सुन के मैंने भी पता है कि तुहाड़ी भी एहसास कई तरह ताज़ा हो गए होंगे। इन गजलों की खूबसूरती है कि इन्हों दे विच डूंघाई है इन्हों दे विच अपनी ही तरह का एक लगाव भी है। तो आओ सुनते हैं प्रोग्राम की ये अगली गजल आबिदा परवीन की आवाज़ दे विच।

दिल जदों किसी ने सच्चे दिलों चार लवे फिर इंतजार भी एक खूबसूरत एहसास बन जाता है। तो आओ कुछ पलों लिए दुनिया की रफ्तार में हौले करिए, दिल दियां धड़कनां नूं सुनिए, डुब जाइए इस गजल की दुनिया दे विच जिथे हर लफ्ज एक एहसास है ते हर सुर एक कहानी। ते हुण इस महफिल दे विच भुपिंदर सिंह ते मिताली सिंह हुणां दी आवाज़ दे विच एक खूबसूरत ए मखमली गजल।

0: सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार अते केंद्रीय स्कूली शिक्षा बोर्ड नो इस साल सत्तवी जमात दे विद्यार्थियों वांग छवी जमात दे विद्यार्थियों नू भी तीन भाषाई लिपि तो छोट देन बारे विचार करन दा निर्देश दिता है। सर्वोच्च अदालत ने सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों नू बकाया ट्रैफिक ई चलान दे राशि दी वसूली लई सुधार दे लई बिजली बिलों दे नाल जोड़न ते विचार करन दे लई किया है। राज्यसभा मैंबर ते प्रसिद्ध वातावरण प्रेमी संत बलबीर सिंह सचिवाल ने ब्रेना नू प्रदूषण मुक्त करन दे लई किते जा रहे उपरालियां दी समीक्षा कीती ते किया कुदरती स्रोतां दे नाल खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिद्धी करां बारे केंद्रीय बोर्ड ने टैक्स दातावां नू मुलांकन साल 2026-27 लई ऑडिट तहत आमदन टैक्स रिटर्न भरन दी आखिरी तारीख 21 नवंबर तक वधाई। अमरीका दे संघी जांच ब्यूरो ने गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ नू 10 अत लोड़ींदे भगोड़ियां दी लिस्ट दे विच शामिल किया। उसकी जानकारी देन लई 10 लख अमरीकी डॉलर दे इनाम दा ऐलान। भारतीय जनता पार्टी दे प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा है सूबे विच नशियां दी मौजूदगी स्थिति तरसयोग है अते सरकार इस नूं काबू करन विच असफल रही है। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने कहा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दे मुद्दे ते पुलिस जांच शुरू कर दित्ती गई है। दंगा करन अते करवाण वाले किसी भी व्यक्ति नूं बख्शा नहीं जावेगा। पंजाब गऊ सेवा कमीशन दे उप चेयरमैन कीमती भगत ने जलंधर विच बेसहारा गऊ तां दी सांभ संभाल ते सुरक्षा यकीनी बनाउण ते जोर दित्ता अते एशियाई खेडां विच भारतीय खिडारियां अते निशानेबाजा ने देश दी तमगा सूची विच कई होर तमगे जोड़े। मर्दां दी क्रिकेट टीम विच सेमीफाइनल विच पहुंची। इस सन हुण तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां।
1: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा शिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वख वख चैनल्स ते FM रेनबो प्राइमरी चैनल DRM ते DTH चैनल्स ते इहदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तो 3

जिस प्रोग्राम दा इंतजार रहंदा है यानी कि अपनी पसंद दे गीत सुनन दा फरमाइशी प्रोग्राम दा उही प्रोग्राम है जी हैलो फरमाइश ते पहुंच गई नी साडी अज दी अगली कॉलर हैलो हैलो लो जी साडी कॉलर दी आवाज शायद साडी तक नहीं पहुंच पा रही पर हां तुहाडी तक जेडे गीत ने ना ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਗਮਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸੋਨੂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ

तक नहीं पहुंच पा रही, पर हां तुहाड़ी तक जेडे गीत ने ना वह बखूबी पहुंचणगे, क्योंकि संगीत का सफर जड़ा ना वह रुक नहीं सकता। तो हाँ खूबसूरत नगमा असी फिर तुरी तुहाड़े लिए चुन लिया। एक सोनू निगम की आवाज़ है इस बार, रूप कुमार राठौड़ ने इन्हों के नाल, हाँ होर भी साथियों ने दिता है साथ, हाँ तुसी भी साथ दे सकते हो अपनी पसंद का गीत सुन के।

0: प्रोग्राम चल रहा जी हेलो फरमाइश जिसनूं तुसीं सुन रहे हो आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो ते लो जी साडे नाल प्रोग्राम दे विच अगली हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार जी
1: नमस्कार मैम
0: कौन बोल रही हो
1: मैं जी टिल्लों टेलर गल कर रहा जी भंग जड़ी श्री मुक्तसर साहिब तो
0: जी मुक्तसर साहिब तो टिल्लो जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम दे विच
1: जी मैम
0: जी मैनू लग रहा है कि तुसी अपने रेडियो सेट तो आवाज सुन के गल कर रहे हो है ना
1: हाँ जी मैम बिल्कुल साडा बहुत मुश्किल नाल फोन मिला तुहाडा
0: ते बिल्कुल तुहानू आवाज ते आ रही है ना
1: हाँ जी आ रही है मैम
0: ते फिर जरा का अपने सेट तो साइड ते होके गल करोगे ना तो तुहाडी भी आवाज जिहड़ी है बिल्कुल क्लियर सबनू जाएगी है ना ते दसो जी फिर टिल्लो जी केड़ा गीत सुनाइए
1: थैंक यू मैम वेलकम

0: वाकई जी हिंदी फिल्म सिनेमा दे कोल हर रंग हर ढंग हर एहसास दा गीत है। खैर इन्हां ही गीतां दे विच जिहड़ी है ओह लुकी हुई है तुहाडी फरमाइश ते ए गीत बन रहे ने अज तुहाडे खास फरमाइश वी ते पहचान वी। लो जी अगले कॉलर जुड़ गए ने साडे नाल। हैलो सत श्री अकाल जी।
1: ईमानदार फिल्म का गीत सुनना जी और इस दिल में क्या रखा है बस तुम्हारा ही नाम लिखा रखा
0: है। ठीक है जी बिलकुल यही गीत सुनाने प्रोग्राम तुहाड़ी फरमाइश था पर एक अंतराल दे बाद। ठीक है जी कॉल करने के लिए शुक्रिया।
2: एक विशेष सूचना आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार सूबा सरकार जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: जरूरी सूचना आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलों जलंधर शहीद भगत सिंह नगर मलेरकोटला संगरूर बरनाला बठिंडा मानसा फिरोजपुर मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े BMC चौंक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वेबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार नहीं है।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: इस अंतराल दे बाद आओ सुन रहे हां फरमाइश कीता होया एक गीत।

0: पर मैं पूरी उम्मीद है कि तुसी प्रोग्राम दे विच शामिल होने दे लई लगातार जिहड़ा नंबर है वह मिला भी रहे होगे तो कोशिश कर रहे होगे कि अपनी पसंद का गीत सुन लो अगे। तो हाँ, कई कोशिशां कामयाब हो गई ने तो उन्हां दे नाल गल कर लैने। हैलो
1: हैलो, सत श्री अकाल माणी जी।
0: सत श्री अकाल जी। हाँ जी, अपना शुभ नाम दस दियो।
1: सरदास बोलदा जी, पिंड कटियाली जट्टां, जिला फाजिलका।
0: वाह जी वाह, बहुत बहुत स्वागत कर दे तुहाडा।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद।
0: पर तुहाडा जिहड़ा नाम है ना, वह मैनू क्लीयरली पता नहीं लगा।
1: गुरदास।
0: गुरदास।
1: हाँ जी।
0: वाह जी वाह, बहुत बहुत स्वागत दोबारा तो कर लैने।
1: धन्यवाद।
0: हाँ जी, दसो जी फिर अज का फरमाइशी गीत केड़ा सुनाइए।
1: दिल वाले फिल्म दा सुना दे।
0: दिल वाले फिल्म दा, ठीक है जी। दिल वाले फिल्म तो एक गीत सुना रही हूँ। आज वर्ल्ड हार्ट डे दे उते फिल्म बहुत याद की जा रही है ना।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: कुमार सानू ते अलका याकिनी दी आवाज दे विच ए गीत है ना। कॉल करने दे लई शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

0: लो जी, दिल वाली फिल्म का यह भी गीत असी सुन लिया ते प्रोग्राम दे विच शामिल होने जा रहे ने साडी अज दी अगली कॉलर। हैलो, जय माता दी जी।
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे जुड़ गया हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर गांव का नाम अंसमेल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम, राजस्थान से।
0: वाह जी वाह, राजस्थान से जुड़े हैं आप। और पूरन जी, प्रोग्राम सुन रहे थे
1: जी? मैडम आपका प्रोग्राम मैं डिटेल्स में रोज सुनता हूँ, रोज ही ट्राई करता हूँ, पर फोन लगता बड़ी मुश्किल है, पर हाथ लग गया तो बहुत खुशी हो रही है। एक डेढ़ महीना पहले लगा था मैडम मेरा कॉल, तो आज लगा तो बहुत खुशी हो रही है। मैं रोज करता हूँ ट्राई, तो पर लगता नहीं मैडम।
0: जी, कभी कभी लग जाता है ना।
1: हाँ जी हाँ जी, एसिडी भी बोलती है कि कभी कभी लगाया करो, इसलिए शायद ऐसा हो रहा होगा।
0: चलिए बहुत बेहतर है, लग भी गया है ना।
1: हाँ जी, बहुत खुशी हो रही है मैडम आपसे बात करके।
0: वाह जी वाह, पूरन जी बहुत बहुत स्वागत भी कर दिया, ते इन्नी ज़्यादा तुसी डेडिकेशन दे नाल प्रोग्राम दे विच फोन कर दे हो, मिलाउंदे हो ते साडी प्रोग्राम सुनदे हो, उस लिए असीं तुहाडे शुक्रगुजार हां। डीटीएच दे जरिए तुसी सानू सुन रहे हो, है ना?
1: हाँ मैडम, डीटीएच हम घर बैठे बिल्कुल साफ सुना देता है, लाइट लाइट के माध्यम से होता है तो सुन लेते हैं, पर लाइट नहीं होती तो फिर नहीं सुनते, पर लाइट आती है तब तो सुनते रहते मैडम।
0: वाह जी वाह, चले ठीक है, असि यही कुछ दुआ करेंगे कि लाइट जड़ी वो बनी रहे, है ना, हाँ, कोई दिक्कत ना आए ते प्रोग्राम्स जड़ी वो तुसी जरूर सुन दे रहो। पूरन जी, फिर आपके साथ ही आज का हम जो प्रोग्राम है ना, उसको पूर्ण करेंगे, मतलब साड़ी आज दी तुसी आखिरी कॉलर बन रही हो इस प्रोग्राम दे, है ना।
1: आदी आदी, मात्रा का शुक्रिया कि आखिरी कॉल मेरे को बना दिया ने, तो मैं

0: नहीं नहीं माता रानी ने गड्डी जो है चढ़ा दी है ना
1: जी,
0: चलिए आपके साथ हम भी शुक्रगुजार हैं कि फोन जो है हमारे स्रोतों के मिलते रहते हैं
1: जी मैडम। तो आज फिल्म का नाम रहेगा अंश,
0: अंश फिल्म का गीत सुनना है।
1: वो एक मासूम चेहरा कोई गाना है वो सुनूंगा मैं।
0: चलिए ठीक है जी पूरन जी, प्रोग्राम के विच फोन करने के लिए शुक्रिया।
1: थैंक यू मैडम, धन्यवाद।

0: ਇਸੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇਸੇ ਦੁਆ ਇਸੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਰਹਿਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਹੜੀ ਬਰਕਰਾਰ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਮਾਚਾਰ। ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे राष्ट्रीय समुद्री हितों और नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और सेनाध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को और मजबूत करना है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की फ्रेम्स 2026 की शुरुआत आज मुंबई में होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का विषय है इंडियाज मीडिया मूवमेंट और क्रिएटिंग वैल्यू का निर्माण।
2: केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। फिक्की फ्रेम्स के अम्बेसडर और अभिनेता आयुष्मान खुराना भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र में फिक्की फ्रेम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाएगा, जो फिक्की के पूर्व अध्यक्ष और जियो स्टार के वाइस चेयरमैन उदय शंकर को दिया जाएगा। कार्यक्रम में भारत की स्क्रीन अर्थव्यवस्था, सिनेमा, डिजिटल क्रिएटर्स, खेलों में दर्शक अनुभव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कॉपीराइट सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अन्वेषण निदेशक ओम प्रकाश सिन्हा ने कहा है कि E20 पेट्रोल आयात को काफी हद तक कम कर आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद कर सकता है। श्री सिन्हा ने अहमदाबाद में ONGC जलाशय अध्ययन संस्थान में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह 2027 के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। प्रवर्तन निदेशालय पश्चिम बंगाल में महानिर्वाण रोड मास आर्ट सोसाइटी के दुर्गा पूजा से पहले के कार्यक्रम में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में कोलकाता में 15 परिसरों में छापेमारी कर रहा है। ये छापेमारी धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की जा रही है। निदेशालय के अनुसार मास आर्ट ने खुद को यूनेस्को द्वारा प्रायोजित संस्था बताकर लोगों से फर्जी तरीके से बड़ी संख्या में पैसा इकट्ठा किया और इसका इस्तेमाल निजी हितों के लिए किया। पूर्व मंत्री इंद्रानिल सेन और उनके करीबी सहयोगी सहित कई लोग और संस्थाएं इस मामले से जुड़ी हुई हैं। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ADGPI पर पोस्ट कर इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल, डिप्टी कमांडिंग जनरल USARPAC ने कल जनरल धीरज सेठ COAS से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा हालात पर चर्चा की और कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी बातचीत की। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के लिए अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ाने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर

0: चर्चा होगी। एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मदेवरा, नीरज चौहान और कुमकुम मोहद अनिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला रिकर्व के प्री क्वार्टर फाइनल में कुमकुम मोहद अनिल ने बांग्लादेश की साइमा सलाहउद्दीन को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय टुकड़ी ने कल महिलाओं के ट्रैप टीम इवेंट में रजत पदक जीता। शूटिंग में देश के पदकों की संख्या 13 हो गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मिनिमीटर 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज, आकाशवाणी अमृतसर अते डीटीएस दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ई जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव ऐप राही भी सुन सकदे हो। पेश है प्रोग्राम तमुक जलंधर पेंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुहाडी दोस्त कृतिका कौशल।

इब्राहिम सद्दाम। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया तो ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर तो प्रतीक राय, रोशनी राय ते प्रांजल राय। गुरमीत सिंह नीता साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो सानू मैसेज कर रहे ने, लिख रहे ने सानू मैसेज पंचकुला तो। वेद प्रकाश, प्रजापति, लक्ष्य, अंजल, नेहा, अंजलि, शुभम, लवली, गुरमीत कौर ते सारा परिवार सुनना चाहते ने कोई भी गीत। सादुल शहर राजस्थान तो राम कुमार रेवाड़ ते नाल इन्हां दे चंद्रकला रेवाड़। पिंड कबूल शाह खुबण तो लिख रहे ने, यानी कि जिला फाजिलका तो। नवजोत, हरमन, हैरी, हैप्पी ते सारा परिवार। हरजीत कैंत मौजी कलोनी ढाबा लुधियाना तो लिख रहे ने कोई भी गीत सुनना चाहते ने, लिख रहे ने सानू मैसेज मुलापुर तो। बिट्टू जैन, मट्टू, दीपक, गौतम, राजेश, अरुणा, टीटू, गोपाल शर्मा, जेबी राव, बुलबुल राव कोई भी गीत सुनना चाहते ने। पिंड नथाणा बठिंडा तो लिख रहे ने हरजिंदर छिंदा, जसवी जसी ते सीता ते गीता। लिख रहे ने सानू झज्जर हरियाणा तो बिट्टू भाटिया, रीटा रजत ते मयंक भाटिया कोई भी गीत सुनना चाहते ने। लिख रहे ने भोपालगढ़ राजस्थान तो दविंद्र, कपिल, ईशान ते पूजा परिहार। पिंड ठाणी लाल खां नोहर तो जवेद खां, अरमान खां, इमरान खां, सीमा बानो, विनोद खां ते सारा परिवार। चकला बजान समाणा शहर तो लिख रहे ने संगीता राणी जिंदल, पप्पू राजा खुशदिल, पप्पू स्माइल खुशदिल, हसमुख, संजीव, सुनीता, बंटी जिंदल, आरजू, महक ते पूरा परिवार। कोई भी गीत सब तो पहले इन्होंने लिखा है। लिख रहे ने सानू मुक्सर तो कृष्ण कुमार, राम प्रताप, ज्योति, सुमन ते मनीषा। सुभाष शर्मा, सुदेश शर्मा, निशांत, अनुराधा, निवान, निया शर्मा ये लिख रहे ने सानू ऊना हिमाचल प्रदेश तो। फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा ते नाल इन्हां दे जी एस रामगढ़िया कोई भी गीत सुनना चाहते ने। लिख रहे ने हनुमानगढ़ फाजिलका तो रमन वर्मा, अमन वर्मा ते नाल इन्हां दे दिव्यांश ते डॉक्टर मदन लाल वर्मा। पेन कबूल शाह तो लिख रहे ने सानू बलकरण, तन्नू, पवीन, जस्सी ते सारा परिवार। पिंड बांडीवाला फाजिलका पंजाब तो ओम बगड़िया, क्रियांश, रजत ते बेबी गरिमा बगड़िया। जगदीश मठाड़ू, वीरपाल ते नाल इन्हां दे गुरबख्श ए कर रहे ने मोगा तो मैसेज। पिंड कातरू तो अमरीक सिंह, जसविंदर, सुखप्रीत ते नाल इन्हां दे जशन ते इन्हां सारे नूं सुना रहे हां। गुरदास मान ते अलका याग्नि दी आवाज़ विच गीत है, तुसी सुन रहे प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी।

गीत लिख रहे ने विजय ते ममता खुंडी खरड़ तू यादव मोना सनावत तू लिख रहे ने दिलीप मालाकार सुनीता मालाकार योगेश ते नाल इना दे मुस्कान ते सुनना चाहते ने कोई भी गीत स्टेशन रोड जमशेदपुर तो लिख रहे ने हरजिंदर सिंह पाटिया इंजल पाटिया सोनू पप्पी ते नाल इना दे तमन्ना पाटिया सतीश कुमार बांसल पिंड सावनखेड़ा नियर मंडी डबवाली तो लिख रहे ने लेवई छत्तीसगढ़ तो गुलाबदास मणिकपुरी ते राजा दास मणिकपुरी पिंड इस्लाम वाला जिला फजलका तो सोहन लाल ओम प्रकाश शगुन लवकुश छत्रपाल सिंह रजिंदर सिंह बब्बू सिंह काका ते सारा परिवार पांडर कवड़ा तो लिख रहे ने सानू अनिल उषा अनुश्री ते नाल इना दे तांश्री लिख रहे ने खेल बाजार पानीपत तो नरेश मल्होत्रा नीटू लक्षे लाडो कोयल ते पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा ते नाल इना दे पीयूष कोयल ते डुगू लिख रहे ने मनजीत कौर दपिंदर सिंह पोता गुरशबद सिंह जीत सिंह दर्शन सिंह ते सारा परिवार इना ने मैसेज किया है जी पेंड कुणियाणा जिला फजलका तो फतेहाबाद हरियाणा पुरानी तहसील चौंक तो इंद्रपाल बिंटू चंचल आंचल गगन प्रिंस ते नाल इना दे जीवन सिंह बूक ते सारा परिवार लिख रहे ने पिंड बुरज मानसा नेड़े मोड़ मंडी तो राम सिंह पिंदर कौर कमलप्रीत मीत राणी पोती गुरतेज कैंत लिख रहे ने सारा परिवार नाल लिख रहे ने करण वीर हाउस पूछो कैंचिया बठिंडा पंजाब तो लिख रहे ने प्रेम सिंह जोड़ा मनजीत कौर करणवीर दुपिंदर कुलदीप दमन ते अभिजोत वड़िंग खेड़ा पंजाब तो मिंटू पिंकी लवली आरती ते सारे परिवार कोई भी गीत सुनना चाहते ने न्यू गुरु रामदास कलोनी गुरदासपुर तो प्रीतम दास सत्या देवी अनुराग वाणी पोतरे अरमान ते नालिंदे अविताज ते इन्हां दे दोस्त काका देविक जिला मुरादाबाद पिंड दुलापुर उत्तर प्रदेश तो मुकेश कश्यप शीतल सोनू राजपाल काजल मानव लक्ष्य मोहिनी ते बलवीर लिख रहे ने जगराओं तो सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गाव्या ते सारा परिवार आदर्श नगर मलवाण पंजाब तो राज शर्मा मीना शर्मा योगेश मैंडी सौरव सायना ते निवान शर्मा पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान तो मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति भूमिका ते सारा परिवार कोई भी गीत सुनना चाहते ने जीयर पाल ते पूरा पाल परिवार सराबा नगर जलंधर तो लिख रहे ने सानू चंडीगढ़ तो सतीश अनेजा बिमला शिफाली शैफी ते मास्टर डेविस हरीश सैगल खन्ना तो जगदीश सैगल राज सैगल पूजा सैगल पार्थ सार्थक ते कोई भी गीत सुनना चाहते ने मेन बाजार सिरपुर जिला संगरूर तो कमलजीत कौर अजीत ते अमनदीप कौर लिखे ने बक्सर बिहार तो शरूफ अंसारी फातिमा खातून ते सुमीत रमेश ते इन्हां सारे नूं सुना रहे हैं निमृत खैरा दी आवाज़ विच गीत है तुसी सुन रहे प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक वक चैनल्स ते FM रेनबो प्राइमरी चैनल DRM ते DTH चैनल्स ते। इहदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
3: ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।

एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलों जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीद

होश ते लगदा तुसी भुली जा रहे हो ते ये सारे मैसेज कर कर की ते बैठे हो जी इस प्रोग्राम नू सुनन दे लई। प्रोग्राम दा नाम तमक जलंधर पैंदी। तलाल जी लिख रहे ने सानू इंद्रजीत मंगा ते नीलम मंगा पिट्सबर्ग कैलिफोर्निया USA तो सानू मैसेज कर रहे ने। लिख रहे ने ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही ते मेरा जहां। लिख रहे ने आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड तो। रिमी छत्तीसगढ़ तो दिनेश ते सारा परिवार। पेंड जाखोदा राजस्थान तो शंभुदयाल विमला अमरजीत सुंदर लाल योगेश कुमार दीपक कुमार ते कुमारी पूजा। पेंड चांदमरी तो लिख रहे ने कमराज सुखदेव सिंह ते लक्ष्मी बाई ते नाल इना दे सोनू। रावल करनाल तो ज्ञान भूषण शर्मा सोमनाथ कालिया ते सारा परिवार। लिख रहे ने बेड शहर महाराष्ट्र तो नंद किशोर संगीता साक्षी अंजली बाला साहेब जयश्री राम निवास ते धनंजय ते सारा परिवार। लिख रहे ने पिंड ते डाकाना नीमना बाद नेड़े सफेदू मंडी जिला जिंद हरियाणा तो जसबीर सिंह तजिंदर गुरप्रीत लवप्रीत कौर ते करमजीत कौर। हरजिंदर सिंह बराड़ पिंड इन्हों का जीदा जिला बठिंडा तो लिख रहे ने सानू मैसेज। लिख रहे ने नवी बस्ती गंज डुंडवारा तो मोहम्मद यासीन हाशमी नाजमा तौसिफ तैमूर हाशमी मोहम्मद कलीम अंसारी ते सारा परिवार। लिख रहे ने जिला पश्चिम सिंहभूम चायबासा झारखंड तो शिवा गोप प्रेम गोप कपिल शिवांश संगीता लिपि गोप ते दीपाली गोप। लिख रहे ने पेंड चंद मारी तो लिख रहे ने मंगत राम जगदीश संदीप ममता अभिषेक ते दिव्या सुनना चाहते ने कोई भी गीत। फिरोजपुर तो लिख रहे ने सानू रामपाल शर्मा ते सारे साथी। कंगनपुर जिला कसूर जाफर मीव अब्दुल गफूर ते नाल इन्हां दे मोहम्मद सरवर। लिख रहे ने कृष्ण लाल राजू दीपू शीतल ते सारा परिवार। लिख रहे ने अनीता संधु रोहित रितेश शिखा प्रतीक्षा ते मैक्स इन्होंने सानू मैसेज किया है गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर तो। मेन बाजार हटूर तहसील जगराऊं जिला लुधियाना तो इकबाल सिंह राजेंद्र कौर इंजीनियर अमनदीप सिंह ते सिमरन जीत कौर हटूर। ते सुन लिया जी सुशांत रिंकू ते ज्योतिका टंगरी की आवाज़ विच गीत है। तुसी सुन रहे प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। जापान में एशियाई खेलों में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किया। भारतीय टीम ने कुल 328 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। चीन पहले और कुवैत तीसरे स्थान पर रहा। एशियाई खेलों में भारत कुल 47 पदकों के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें 5 स्वर्ण, 21 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ADGPI पर पोस्ट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा हालात पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सऊदी अरब भारत का भरोसेमंद और महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, संस्कृति और पारस्परिक आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने दोहा में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2026 वार्षिक बैठक के दौरान सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान से मुलाकात की। श्री जदान ने भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और बेहतर निवेश माहौल के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को बधाई दी। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत के सफल समापन का स्वागत भी किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पारादीप बंदरगाह दल के त्वरित संयुक्त बचाव के प्रयासों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत के बंदरगाह हर समय पूर्ण समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ओडिशा के पारादीप तट के पास जहाज लगभग 9000 मीट्रिक टन पाम ऑयल ले जा रहा था और उसमें 23 चालक दल के सदस्य सवार थे। रविवार सुबह मुख्य इंजन के फेल होने और गिट्टी टैंक में तेजी से पानी भरने के कारण जहाज एक तरफ झुक गया, जिसके बाद जहाज ने आपातकालीन संकट कॉल जारी की थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी पदाधिकारियों की ये पहली बैठक है। इसमें पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय रोगों, उनकी रोकथाम और वैश्विक प्रभाव के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए

0: ये दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 257 अंक गिरकर 72,514 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मेरी में 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। समय हो रहे 12:05 ते पेश है प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: नमस्कार।
1: प्रोग्राम वस्ते वेड़े लेके अर्चना हाजिर।
0: ते प्रभजोत भी हाजिर है। अर्चना की हाल चाल है?
1: भाई हाल चाल नौवर नौ ने दब के खाई दे, दब के वाई दे सारा दिन।
0: अच्छा जी
1: जी।
0: भाई आज की खा के आए हो फिर?
1: भाई तुसी खान दी गल ता मेनु ना पूड़ियां छोले या कचौड़ियां समोसे ये चीजां बड़ियां स्वाद लगदियां ने, पर तुहाडा स्वाद सीगा कि अज मैं सवेरे की खादा।
0: हां जी
1: अज सवेरे मैं खादियां पूड़ियां ते छोले।
0: ओहो हो, ते पूड़ियां छोले खा के कोई सैर सूर भी कीती के नहीं?
1: ना ना मैं नहीं सैर सूर करदी, मैनू ते मजा आंदा है खा के, नाल इक चाह दा कप चौकड़ी मार के पी लवां ते मैनू लगदा आनंद भाव हो जांदा
0: ते नाल ही फिर सो जावां।
1: जी जी जी अजे
0: इक ग्लास लस्सी पीती ते फिर अपने आनंद ही आनंद है।
1: जी जी।
0: अर्चना गल ए है कि अज दा दिन जिहड़ा है असीं तुहाडे वास्ते ही रखिया। अज दा दिन जिहड़ा असीं पूरे विश्व दे विच हार्ट डे मना रहे हैं, है ना?
1: अच्छा जी।
0: ते तुहाडे वर्गे जिहड़े बच्चे ने या जिहड़ियां बच्चियां ने या साडियां सवाणियां बजुर्ग घर ने जिहड़े अपने दिल दा ख्याल बिल्कुल नहीं रखदे ते खाई जा रहे ने, कदी मिठा खा रहे ने, कदी अपना फ्राइड खा रहे ने और सैर जिहड़ी आ ओह बिल्कुल नहीं कर रहे।
1: जी प्रभजोत जी, तुहाडे कोलों तां इह गल्लां सुन के मेरा मन नहीं मेरा दिल डर गया।
0: नहीं बई डरना नहीं है
1: जी,
0: क्योंकि डरांगे ता ना जे असीं कुछ भी नहीं करांगे। भी अग्गे तो ए ख्याल रखना अर्चना के खाओ पावे दबके
1: जी,
0: पर अपना लाइफस्टाइल जिहड़ा है वह थोड़ा जा जिहड़ा चेंज करना है, क्योंकि जिवें हुण मौसम बदल रहा ना मौसम, और बहुत सारे बाजारां दे विच पत्ता गोभी आ गई, मटर आ गए, गाजर आ गई, है ना, मूलियां आ गई, तुसीं उन्हां दा सेवन करो। और देखो मैं तो कहांगी साग आ गया, पर देखो लोगों ने कहना है कि लो जी प्रभजोत ने कहा कि साग खाओ, साग तो खाओ पर देखो दब दब के मक्खन नहीं पाना।
1: जी ठीक
0: है, मक्खन जे पाना है जरूर पाओ जे तुहानू चंगा भी लगता है, असी मना नहीं करते, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत फैट जिहड़ा है वह भी बॉडी लई बहुत ज्यादा जरूरी हुंदा है, और थोड़ी थोड़ी चीज जिहड़ी है वह सारी ही खानी चाहिए है। पर यह है कि जे तीनों टाइम तुसी साग खा रहे हो और तीनों टाइम तुसी भर भर के मक्खन पा के खा रहे हो तो फिर वह गलत है, और तुसी उहदे नाल कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई सैर नहीं कर रहे, फिर तो तुसी दिल दा ख्याल नहीं रख रहे ना।
1: जी जी, जी। बिल्कुल भाई, जिहड़ी तुहाडे कोलों जिहड़ी जानकारी मिल रही है जिहड़ी गलबात दे जरिए ते यही है कि सुचेत होंदी है
0: जी।
1: जानकारी दे नाल अपने जीवन दे विच जागरूकता भी लियाउण दी जरूरत है।
0: बिल्कुल जी, और हां जी
1: की लोड़ है कि आपां सैर भी करिए जिस तरह तुसी कहा, ते अपना आहार यानी कि जिहड़ा पौष्टिक आहार है वह भी खाइए, पूड़ियां छोले रोज रोज ना खाइए,
0: बिल्कुल
1: एक दिन खा के फिर सैर भी कर लीए।
0: बिल्कुल जी जरूर करो, असीं इह नहीं कहिंदे खाना पीना नहीं छड्डना, क्योंकि सानू डॉक्टर माहिर भी दस के गए ने कि खाना पीना बिल्कुल नहीं छड़ना, और तुसी अपने चेंजेस करनी है। और देखो जिहड़े बजुर्ग घर ने उन्हां वास्ते भी असी बहुत सारिया हिदायतां अक्सर देने रहने कि तुसी उन्हां दी जिहड़ी डाइट है वह हल्की फुल्की डाइट रखो। हुण मौसम जिहड़ा बदल रहा है, और देखो वैसे अर्चना जे तुसी सवेरे सवेरे सैर करन जाओ ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है, किते किते ठंडी हवा चल रही है, पंछी जिहड़े ने वह अपना संगीत पेश कर रहे ने, है ना, चहचहाट रहे ने, और तुहानूं बड़ा ही मधुर संगीत उन्हां दा कन्नां नूं मिलदा है, और तुहानूं इक इक एनर्जी जिहड़ी है वह मिल जाती है।
1: जी बिल्कुल, सैर दे नाल नाल आहार दा भी ख्याल रखना, ते इहदे नाल नाल इक होर चीज़ दा भी बहुत ख्याल रखना, वह है कि अपने टाइम टू टाइम बंदे अपने डॉक्टर दे कोल जाके जिहड़े भी वह टेस्ट लिख रहा है उन्हां नूं करवाना, ते अपना रेगुलर चेकअप जरूर करवाना।
0: बिल्कुल जी, और इसी गल दे उत्ते कि अपने दिल दा ख्याल असी किवें रखना है, ते इहदे विच साडे कोल डॉक्टर अमृतपाल आए सन, है ना, और पूनम उन्होंने इन्हां नाल बहुत ही विस्तार पूर्वक गलबात कीती सी।

0: अपना ख्याल असी किवें रख सकते हैं। अपना तो असी रखना ही रखना है, तो असी अपने नाल दा जिवें मैं हुणे तुहाडा ख्याल रखिया ना कि पूड़ियां छोले रोज नहीं खाने, ठीक है ना, थोड़ा जा अपना ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जे ध्यान रखांगे तां ही खुश रहांगे। सो जी आओ फिर अपन चलदे हां ते सुणदे हां डॉक्टर अमृतपाल सानू की कह रहे ने।
1: दिल की जेकर असी गल करिए तो कहते हैं कि दिल की गल सुननी बहुत जरूरी है। जो इंसान दिल की गल सुनता है वह जिंदगी हमेशा सफल रहा है। दिल की गल सुननी सिर्फ भावनावां की गल सुननी नहीं है, बल्कि दिल की सेहत की गल सुननी भी है। दिल साढ़े शरीर का कितना जरूरी अंग है। इसी तंदुरुस्ती की गल करने लई ते इस प्रति जागरूकता दे लई हर साल 29 सितंबर नूं वर्ल्ड हार्ट डे भी मनाया जाता है। अज असी इसे संबंधी गल करनी है कि दिल की संभाल किवें करिए, इसका ख्याल किवें रखिए। वो सारिया गल्लां जो जरूरी ने दिल की संभाल रखने लई सानू दसणगे डॉक्टर अमृतपाल सिंह, जो कि MD मेडिसिन ने पुलथ विच। डॉक्टर अमृतपाल जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
2: शुक्रिया जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडा। ते तुसी बहुत वधिया तरीके नाल दस्या कि वर्ल्ड हार्ट डे दे बारे असी अज डिस्कशन करांगे जी।
1: जी वर्ल्ड हार्ट डे वैसे तो असी सारे समझते हैं कि जो साढ़े दिल दी तंदुरुस्ती दे लई उसकी जागरूकता दे लई ये दिन मनाया जाता है, पर फिर भी तुहाडे तों जानना चाहवांगी कि इस दिन की की महत्ता है।
2: मैडम देखो, वैसे तो दिल साडा 24 घंटे धड़कदा है, सारी उम्र धड़कदा है, तो उहदे वास्ते डेडिकेटेड फिर एक दिन बना दिता गया। काफ़ी साल तो शुरू किया गया 29 सितंबर में मनाया जाता है कि उसके प्रति असी साल च एक बार एक टाइम कढ़िया जाए कि असी आम जनता नू, खुद नू, सब नू जागरूकत किया जाए दे बारे। हुण दिल साढ़े शरीर का एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल का बनया हुआ है, जो कि सारे शरीर नू खून सप्लाई करता है। सो जे दिल आप तंदुरुस्त होएगा तो शरीर तंदुरुस्त होएगा।
1: बिल्कुल,
2: साडा खून एक मीडियम है, खून एक जिवें सड़क वांगू एक रस्ता है जिहदे उत्तों जो असी खाणा पीना खाने आ उह हर एक अंग नू जांदा है। फिर जो ऑक्सीजन साढ़े कोल आती है, सह असी लैने हैं, फिर ऑक्सीजन शरीर च आती है, फेफड़े ऑक्सीजन खून च पहुंचाते हैं, वो ऑक्सीजन हर एक अंग नूं जाती है। सो दिल अगर ठीक है तो सारे अंग ठीक ने, जां फिर एक भी कह सकते जो दूसरे अंग खराब होंगे ने वह भी दिल की खराबी करते हैं। सो दिल बहुत जरूरी है, दिल की सेहत भी जरूरी है, नाल दी नाल बाकी अंगा की भी सेहत जरूरी है। उस दे प्रति ही असी इस दिन दे विच जागरूकता फैलाने हाँ जी।
1: जी ये 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, तो हर साल इसकी थीम भी कुछ ना कुछ रखी जाती है। इस साल की थीम के बारे जेकर असीं जानना चाहिए तो इस साल की थीम है?
2: मैडम इसकी जो हुण करंटली 2-3 साल तो कॉमन ही एक थीम के उत्ते वर्क किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, वह है डू नोट मिस अ बीट। इसका मतलब जो पंजाबी च आपां सीधा इहदा किया जाए वह है कि धड़कन नूं नहीं छड़ना
1: जी।
2: बट इसका जो असल च मतलब है उसका मतलब यह है कि अगर दिल की कोई दिक्कत आती है, दिल सानू कोई ना मैसेज दिंदा है, कोई ना कोई अलामता जो आती ने सानू पहला दिल दसदा है भी इदा शरीर दे विच कोई प्रॉब्लम आती है भी अगे जाके जिहड़ी खराबी हो सकती है। सो उन्हां चीज़ां नू असी मिस नहीं करना, साडा मकसद असल च इस जिहड़ा थीम है इसका यही है
1: जी। विश्व सेहत संगठन वालों ये दिन मिथ्या गया है ताकि असी दिल की संभाल प्रति सारे जागरूक रहिए। डॉक्टर अमृतपाल जी, ये असी सब जानते हैं कि पिछले काफ़ी लंबे समय तो हार्ट अटैक संबंधी केसिस बहुत वधे ने, खास तौर पर नौजवानों के विच। वह नौजवान भी जिहड़े अपने सेहत प्रति सतर्क सन, जिम जाते सन या चंगी डाइट लेंदे सन, जो दिल संबंधी मामले ने वह इन्ने ज़्यादा क्यों वध रहे ने?
2: इस दे विच एक

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: जापान दे खेड मैदानों विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक वक चैनल्स दे FM रेनबो प्राइमरी चैनल DRM ते DTH चैनल्स दे। इदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
2: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
3: जी
4: सुनेहा भरी ब्रेक तो बाद फिर तो हाजिर है। प्रोग्राम चल रहा है बसते बड़े।
3: बिल्कुल जी,
4: जो असि जानकारी दी गल करदे आ ना पूरा प्रभजोत जी, ते जदों जानकारी दी गल करदे आ ते किते ना किते साडा ध्यान जांदा अपने देश दी तरक्की वल।

0: बिल्कुल जी। और देखो केंद्र सरकार वालों बहुत काम किए गए, बहुत ज्यादा है ना, जन सेवा तो देश सेवा तक है ना, जिहड़ी एक मुहिम चलाई गई है। और इस मुहिम दे तहत अज अर्चना असी केड़ी गलबात कर रहे हैं?
1: असी गलबात कर रहे हैं कि जिहड़ी साढ़े सारिआं दे नाल जुड़ी हुई
0: अच्छा
1: स्टार्टअप इंडिया, यानी कि इस तरह की स्कीम सरकार वालों दिती गई है सारिआं नूं, खास तौर ते नौजवान वर्ग नूं
0: जी,
1: क्योंकि वह अपनी जिंदगी दे विच कुछ भी करन दा सोचन ते उन्हां नूं कोई भी मुश्किल ना आवे।
0: बिल्कुल जी। और बहुत सारे जिहड़े साढ़िआं भैणां ने बच्चिया ने उन्हां ने स्टार्टअप कंपनियां शुरू कीतियां है ना, और ए उसे तहत ही शुरू कीतियां गईआं, जदों कि साडे प्रधानमंत्री सत्कारयोग नरेंद्र मोदी जी ने जदों ए स्कीम शुरू कीती और उन्हां दे दसे मार्ग दे उत्ते चले और बहुत सारे इन्हां ने मुकाम हासिल कीते साडे बच्चिया ने भी
1: जी। जे असीं इस स्कीम दी खास तौर ते गल करिए ते भारत सरकार वल्लों महत्वपूर्ण पहल है ते 16 जनवरी 2016 तो शुरुआत इसकी की गई कि स्टार्टअप इंडिया, इसका मुख्य उद्देश्य है नवे कारोबार, नवी तकनीक, नवे विचार उत्साहित करना अते देश दे विच रोजगार दे होर मौके पैदा करना
0: जी जी।
1: इहदे नाल जदों असीं नवे रोजगार दे मौकियां दी गल करदे हां ते अक्सर कई बार जिहड़ा नौजवान वर्ग सीगा चाहे ओह कुड़ियां होण या मुंडे होण ओह घबरा जांदे सीगे कि फॉरमैलिटीज़ बहुत सारियां हुंदियां
0: ने जी,
1: ते कई बारी उन्हां दे कोल स्टार्टअप करन वास्ते शुरुआत करन वास्ते उन्हां दे कोल पैसे भी नहीं सी हुंदे
0: जी।
1: ते सरकार दा इह जिहड़ी योजना है इक बहुत ही थंब बन के बच्चियां दी मदद वास्ते साबित हुई। जदों बच्चियां कोल पैसे नहीं हुंदे सीगे या हुंदे नहीं है ते सरकार दे वल्लों स्टार्टअप वास्ते इक अजिहियां योजनावां लैके आया जिन्हां नूं उन्हां नूं आर्थिक पक्खों होर मजबूत करन वास्ते मददगार साबित हो सके। इह स्कीमां जिहड़ियां ने इह मुहैया करवाईआं जांदीआं ने बच्चियां नूं, इहदी जिहड़ी डिटेल है उह वैबसाइट दे उत्ते वी स्टार्टअप इंडिया तुसीं भरोगे नाल ही तुहानूं सारी जानकारी मिल जाएगी
0: जी।
1: इस तो बाद जदों असीं टेंडर्स दी गल करदे हां स्टार्टअप्स वास्ते, टेंडर्स दे विच वी स्टार्टअप्स लई कुछ आसान नियम बनाए गए ने। सरकार ने फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स अते स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम वर्गे फंडिंग प्रोग्राम भी चलाए ने
0: जी।
1: इस सपोर्ट प्रोग्राम्स ने तां जो हर किसे नूं मदद मिल सके। इस दे नाल नाल पेटेंट अते आईपीआर लई फास्ट ट्रैकिंग अते होर सहायता प्रोग्राम भी मुहैया करवाए गए ने। सरकारी खरीद टेंडर्स दे विच स्टार्टअप लई कुछ आजाद नियम भी ने।
0: बिल्कुल जी। और बहुत ही वधिया तुसी तरीके नाल दस रहे हो कि स्टार्टअप जिहड़े है असी किस तरह कर सकते हैं और बहुत ही निवेश जिहड़ा है आसान है करना। और इहदे वास्ते अर्चना मैनूं लगदा है कि असी बैंकां तों लोन लै सकदे हां और इह असी निवेश जिहड़ा है शुरू कर सकदे हां। इक छोटी जी शुरुआत करन दी देर हुंदी है और तुसी किते ना किते पहुंच ही जांदे हो
1: जी। बिल्कुल जी। ते इंसान जदों सोच लैंदा मन दे अंदर ठान लैंदा है कि मैं इह कुछ जिंदगी दे विच हासिल करना है ते अगे हुंदा सीगा तुहाडे नाल परिवार खड़े हुंदे सीगे, हुण देश वी तुहाडे नाल खड़ा है।
0: बिल्कुल जी खड़ा है। और बहुत सारे देखो छोटे छोटे बच्चे ने जिन्हां ने कंपनियां खोलियां और पिछे जे एक आई सीगी कि एरोस्पेस वाली कंपनी भी जिहड़ी है एक प्राइवेट तौर ते खोली गई और उन्नू भी मानता जिहड़ी है ओह दित्ती गई
1: जी ना। बिल्कुल जी। इह जिहड़े प्रोजेक्ट ने गवर्नमेंट ने साफ साफ लफ्ज़ां दे विच इह भी लिखिया वै कि इहनूं तुसीं इक प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना के तुसीं कल्ले भी शुरू करना चाहो तां कर सकदे हो ते उहदे विच तुसीं चार जाने पांच जाने मिल के भी तुसीं इस कंपनी दी स्थापना कर सकदे हो तां जो सब दे अलग अलग विचार ते नाल सब दा इकजुट हो के काम नूं करना ते कारोबार नूं उचाइयां दे उत्ते लै के जाना ते उहदे नाल नाल अपने देश नूं भी उचाइयां।
0: बहुत ही वधिया गल है जी। और मैनू लगता है कि हुण जिहड़े भी सवाणिया या साडे बुजुर्ग भैन भरा जिहड़े भी प्रोग्राम सुन रहे ने साडा, ओह इस स्टार्टअप कंपनी जे उहनां दे बच्चे खोलना चाहुंदे ने जां कुछ सवाणिया आप कोई काम करना चाहुंदियां ने ते ओह जरूर इस तों फायदा उठाउणगियां और उहनां नूं इस चीज़ां दा पता भी लग गया होएगा। और अर्चना पर गल इह है कि असीं स्टार्टअप कंपनी दी गल भी कर ली है ना, और असीं होर भी अज साडा सिलसिला है मंगलवार ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲਈਏ
1: ਜੀ। ਸੁਣਦੇ ਆ
0: ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੀਤ।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਜੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक

0: से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरा होने का स्वागत भी किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि तीन दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने तथा ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिक्की फ्रेम्स 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि कोई कहानी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होती, बल्कि वो किसी विषय, स्थान या मुद्दे के बारे में लोगों की सोच को प्रभावित कर सकती है और समाज को एक दूसरे को समझने के तरीके को आकार दे सकती है।
1: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। फिल्म शूटिंग और उसके साथ साथ में किसी एक लोकेशन को प्रमोट करने के लिए फिल्म का उपयोग, ये पर्यटन के लिए निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
0: फिक्की एम्बेसडर और अभिनेता आयुष्मान खुराना ने कहा कि भारत का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र अब फिल्म, वेब सीरीज, टेलीविजन, गेमिंग, खेल, संगीत, कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक विस्तारित हो चुका है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव प्रभात ने गलत सूचना, सिंथेटिक कंटेंट और तेजी से उत्पन्न हो रही AI जनित सामग्री से उत्पन्न चुनौतियों का जिक्र किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये मयूर विहार फेज 1 और सरायकाले खां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करता है और पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। इस अवसर पर उन्होंने 1900 करोड़ रुपए से अधिक की कनेक्टिविटी परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नीडवे 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। ते ओ जान लेने अज रात तक दे प्रोग्रामा दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समा। एक बज के 15 मिनट तो लेके

2:15 तक तुसी सुनोगे प्रोग्राम फौजी वीरां लई। इस दौरान खबरां आपो अपने समय मुताबिक पेश कीतियां जाणगियां। दोपहर 2:30 सुनोगे प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस प्रोग्राम च तुसी सुनोगे सुरेश सहदेव ते साथियों दियां आवाज़ां च माता दियां भेटां। शाम 4:02 ते सुनोगे पंजाबी फिल्म संगीत। श्री दरबार साहिब अमृतसर दा सीधा प्रसारण सर्वण करोगे 4:30। साढ़े 5:00 रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार सर्वण करोगे। स्पॉन्सर प्रोग्राम किसान वाणी च सुनोगे अज मेरी खेती च वार्ता कमलजीत सिंह नाल। नदीन नाशकों की सही चोण ते छिड़का इस बारे डॉक्टर चरणजीत कौर की गलबात सुनाई जाएगी। इस तो अलावा मौसम का हाल ते खेती समाचार भी सुनाए जाएंगे। सत बजे सुनोगे पंजाबी गीत। जन सेवा तो देश सेवा प्रोग्राम सुनोगे 7:10। 7:45 ते सुनोगे इंग्लिश टॉक। जन सेवा तो देश सेवा प्रोग्राम होएगा। इस सिलसिले तहत सुनोगे 3 तलाक 2019 8:10 ते 8:40 ते सुनोगे पंजाबी गीत। 8:45 ते समाचार संध्या सुनोगे न्यूज एट 9। खेत संसार प्रोग्राम होगा रात 9:30। एशियन खेडां दियां मुख झलकियां सुनोगे राती ठीक 10:00। 10:20 ते सुनोगे पंजाबी गीत। कंपेयरिंग बेस्ड प्रोग्राम सुनोगे सरगम 10:30। समाचार राती अपने मिथे समय के मुताबिक सुनोगे

0: जरूरी सूचना आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिला जलंधर शहीद भगत सिंह नगर मलेरकोटला संगरूर बरनाला बठिंडा मानसा फिरोजपुर मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। आओ सुनदे हां प्रादेशिक खबरां।

ने एशियाई खेडा च औरतां दे ट्रैप मुकाबले विच भारत लई पहला व्यक्तिगत सोने दा तमगा जीत के इतिहास रचिया है। हुण खबरां विस्थार नाल। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत के चीन नाल संबंध पिछले साल नालों मौजूदा समय विच बेहतर ने। न्यूयॉर्क विच एशिया सोसायटी वालों कराए गए एक समागम विच बोलदिया डॉ जयशंकर ने कहा कि सरहदी रुकावट हल होने तो बाद संबंधा भी सुधार होना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय तो चीन नूं दसदा आ रहा है कि दवल्ले संबंधा विच गिरावट किसी भी देश की मदद नहीं करती है, लंबी रुकावट किसी भी देश के हितों नूं पूरा नहीं करती। भारत अफ्रीका संबंधा ते व्यापार समझौते की गलबात बारे बोलते हैं विदेश मंत्री ने कहा कि दोवे देश एक अजिही स्थिति विच पहुंच गए ने जिथे व्यापार समझौते ते एक समझ है। उन्होंने दस्सिया कि भारत छोटे उत्पादकां छोटे खेतीबाड़ी उत्पादकां ते छोटे कारखानियां दा समाज है। उन्होंने अगे कहा कि भारत ते अमरीका विचकार प्रति व्यक्ति भाड़े तो इलावा उत्पादन की प्रक्रिया प्रकृति ते समाज की प्रकृति बहुत वखरी है। उन्होंने कहा कि व्यापारक गलबात लई इस नूं देखण लई कुछ हद तक धीरज ते वेरवे की लोड़ हुंदी है। उन्होंने कहा कि टैरिफ ने पिछले साल संबंधा विच एक रुकावट पैदा की थी। डॉ जयशंकर ने दहशतगर्दी के मुद्दे से भी चलना पाया, कहा कि यह भारत लिए एक खास महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस बारे अमरीका वालों लोड़ी समझ या हमदर्दी नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस यूक्रेन ते ईरान खाड़ी टकराव का आलमी दक्षण की आर्थिकतावां ते विनाशकारी प्रभाव पे। उन्होंने ऊर्जा स्थिति बारे चिंता प्रगट करदे कहा कि बाजार बेहद तंग है। उन्होंने कहा कि जेकर लोग इस नाल राजनीति करते हैं तो यह बाजार पेचीदगियां नूं वधाउंदा है अते जिहे समें कीमतां नूं वधाउंदा है जदों लोकां नूं कीमतां नूं स्थिर करना चाहीदा है। भारत अते साउदी अरब ने रक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश ऊर्जा तकनालोजी सिहत संभाल अते सिख्या दे खेतरां विच सहयोग की समीक्षा कीती है। दोहां विच एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की सालाना मीटिंग के मौके से साउदी अरब के खजाना मंत्री मुहम्मद अल जदान नाल मुलाकात विच खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने साउदी अरब ने एक भरोसेमंद ते रणनीतिक भाईवाल दस्सिया। उन्होंने भारत साउदी अरब दुवल्ले निवेश समझौते ते गलबात दे सफल सिट्टे दा स्वागत कीता जिसका उद्देश एक होर मजबूत अते भरोसेमंद निवेश सिलसिला प्रदान करना है। श्रीमती सीतारमन ने भारत विच निवेश दे मौकियां ते चर्चा करन लई स्विट्जरलैंड दे एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक दे गवर्नर पीटरो लाजेरी नाल मुलाकात कीती। उन्होंने हड़ तो बाद दे यतना अते दवल्ले प्रोजेक्टां ते चर्चा करन लई नेपाल दे खजाना मंत्री स्वर्णिम बागले नाल मुलाकात कीती। उन्होंने यूपीआई एनपीआई डिजिटल भुगतान एकीकरण दे जल्दी लागू करन ते भी चर्चा कीती। चोन कमिशन ने 11 राज्यसभा सीटा लिए 2 साल चोणा लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस विच उत्तर प्रदेश दी 10 सीटा उत्तराखंड की 1 सीट शामिल है। भाजपा आगू और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बीएल वर्मा समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव बसपा के रामजीत 6 होर 25 नवंबर नूं अपना कार्यकाल पूरा कर रहे ने। उत्तराखंड तो नरेश मानसल भी 25 नवंबर नूं अपना कार्यकाल पूरा कर रहे ने। कमिशन ने पश्चिम बंगाल विच राज्यसभा दी सीट ते जिमनी चोण लई नोटिफिकेशन भी जारी कीता है। ए सीट टीएमसी संसद मैंबर रुकमणी मलिक दे इस्तीफे कारण खाली हो गई सी। नामजदगी अज तों शुरू हो गई है ते 16 अक्तूबर नूं वोटिंग होएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रधान नितिन नवीन ने अज नवी दिल्ली स्थित पार्टी सदर मुकाम विखे सूबा इंचार्जा अते सह इंचार्जा की मीटिंग की प्रधानगी की। ए मीटिंग हाल ही विच कीतियां गईयां संगठनात्मक नियुक्तियां तो बाद पार्टी के सूबा इंचार्जा अते सह इंचार्जा की पहली मीटिंग सी। मीटिंग विच सारे सूबा इंचार्जा अते सह इंचार्जा ने शिरकत की अते इस विच पार्टी दीयां संगठनात्मक तरजीहां ते ध्यान केंद्रित कीता गया। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ xhandle@eirrn ਜਲੰਧਰ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਲਮੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੂਟਸ ਏਸ਼ੀਆ 2027 ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੀਬ 24 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 130 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਏ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014 ਵਿਚ 74 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾ ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਰੂਟਸ ਏਸ਼ੀਆ 2027 ਦੇ 23ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੂਟ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सरहद से मुतालिक तातुल को हल करने से भारत चीन ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद मिली है। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि मुल्क आलमी हवाबाजी का एक बड़ा मरकज बनकर उभरा है और वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हवाबाजी मार्केट बनने की सम्त काम कर रहा है। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में AIIB सालाना मीटिंग से अलग दिफा, सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में तआवुन का जायजा लिया। इंतखाबी कमीशन ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात

के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। और एशियन गेम्स 2026 में मीरू ढांडा ने तारीख रकम की है। उन्होंने खवातीन के इंफिरादी ट्रैप मुकाबले में पहला इंफिरादी एशियन गेम्स सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ पिछले साल के मुकाबले ताल्लुकात आज बेहतर हुए हैं। एक तकरीब से खिताब करते हुए, जिसका अहतमाम न्यूयॉर्क एशिया सोसाइटी ने किया था, डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जब सरहद से मुतालिक तातुल को हल कर लिया गया तो ताल्लुकात में बेहतरी आना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि भारत चीन को एक लंबी मुद्दत से बता रहा है कि दो तरफा ताल्लुकात में किसी भी तरह की कमी से मुल्क को कोई मदद नहीं मिलती और देरीना तातुल से किसी भी मुल्क के मफादात पूरे नहीं होते। भारत अमरीका ताल्लुकात और तजारती समझौते पर मुजाकरात के बारे में वजीर खारिजा ने कहा कि दोनों ममालिक एक ऐसी सूरत हाल पर पहुंच गए हैं जहां तजारती मुआहदे पर मुफाहमत कायम हो गई है। डॉ जयशंकर ने यह कहते हुए दहशतगर्दी के मामले को उजागर किया कि ये भारत के लिए एक अहम मामला है। उन्होंने रायजनी की कि अमरीका की तरफ से इस सिलसिले में कोई वाफर मुफाहमत या हमदर्दी का इजहार नहीं किया गया। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि मुल्क आलमी हवाबाजी का एक बड़ा मरकज बनकर उभरा है और वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हवाबाजी मार्केट बनने की समत काम कर रहा है। आज नई दिल्ली में रूट्स एशिया 2027 से मुतालिक एक तारुफी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब नायडू ने कहा कि भारत का मकसद मुसाफिरों की तादाद को, जो फिलहाल 24 करोड़ है, साल 2047 तक 6 गुना करके 130 करोड़ करना है। वजीर मौसूफ ने खास तौर पर कहा कि मुल्क में जिन हवाई अड्डों पर परवाजें चलाई जा रही हैं, उनकी तादाद साल 2014 में 74 थी और अब यह तादाद 166 से ज्यादा हो गई है। भारत और सऊदी अरब ने दिफा, सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, हिफ्जान सेहत और तालीम के मैदानों में तआवुन का जायजा लिया है। सऊदी अरब के वजीर खजाना मोहम्मद अल जदान के साथ एक मीटिंग के दौरान, जो दोहा में AIIB सालाना मीटिंग से अलग मुनाकिद की गई, वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सऊदी अरब को भारत का एक भरोसेमंद और काबिल कद्र अहम शराकत दार करार दिया। दोनों वज़राए खजाना ने भारत सऊदी अरब दो तरफा सरमायाकारी समझौते के बारे में मुज़ाकरात की कामयाब तकमील का खैर मकदम किया। इस समझौते का मकसद सरमायाकारी के लिए एक मजबूत तर और मजीद काबिले एतबार फ्रेमवर्क फराहम करना था। मोहतरमा सीतारमन ने स्विट्जरलैंड के AIIB गवर्नर सफीर पियत्रो लाजेरी से भी मुलाकात की और NIIF, नीज, गिफ्ट IFSC समेत भारत में सरमायाकारी के मौकों पर बातचीत की। उन्होंने नेपाल के वजीर खजाना स्वर्णिम वागले से सैलाब की सूरत हाल से बहाली और दो तरफा प्रोजेक्टों पर बातचीत की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इंतखाबी कमीशन ने आज राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल हैं। बीजेपी के रहनुमाओं और मरकजी वजरा हरदीप सिंह पुरी, BL वर्मा, समाजवादी पार्टी रहनुमा रामगोपाल यादव, BSP के रामजी और 6 दीगर अरकान की मुद्दतकार 15 नवंबर को मुकम्मल हो रही है। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल में राज्यसभा की 1 सीट के लिए जिमनी इंतखाब का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। ये सीट TMC की रुकने पार्लियामेंट रुक्मिनी मलिक के इस्तीफे के बायस खाली हुई थी। नामजदगी का अमल आज से शुरू हो गया है और 16 अक्टूबर को वोटिंग होगी। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने नई दिल्ली में पार्टी के हेडक्वार्टर में पार्टी के रियासती इंचार्जेस और शरीक इंचार्जेस की मीटिंग की सदारत की। ये मीटिंग हालिया तंजीमी तकर्रियों के बाद पार्टी के रियासती इंचार्जेस और शरीक इंचार्जेस की पहली मीटिंग है। इस मीटिंग में सभी रियासतों के इंचार्जेस और शरीक इंचार्जेस ने शिरकत की और इसमें पार्टी की तंजीमी तरजीहात पर तवज्जो मरकूज की गई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज बारापुला फेज 3 कॉरिडोर का इफ्तिताह किया। इस कॉरिडोर से मयूर विहार फेज 1 और सराय काले खां के दरमियान बिना किसी रेड लाइट के कनेक्टिविटी फराहम होगी, जिससे मशरकी और जनूबी दिल्ली के दरमियान कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वजीर मौसूफ ने 1,900 करोड़ रुपए से जायद मालियत वाले कनेक्टिविटी प्रोजेक्टों का भी आगाज किया। इफ्तिताही तकरीब में दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता, अवामी कामकाज से मुतालिक महकमे के वजीर प्रवेश साहिब सिंह, शहरी तरक्की के वजीर आशीष सूद और दीगर वजरा ने शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अजम के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये मुसलसल

0: आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि किस तरह माइकोव प्लेटफॉर्म के जरिए ये विजन हकीकत में तब्दील हुआ।
1: वक्फ से मुतालिक 2025 का तरमीमी बिल एक अहम कानूनी कदम है, जिसके जरिए हुकूमत ने सदियों पुराने तसव्वुरात को खत्म करने की कोशिश की। इस कानून के जरिए न सिर्फ वक्फ इमलाक का बेहतर बंदोबस्त किया जा सकेगा, बल्कि इमलाक में खवातीन की विरासत भी यकीनी हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्फ से मुतालिक बिल की मंजूरी और मुसलमान वक्फ तरमीमी बिल की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मंजूरी एक यकसर तब्दीली वाला लम्हा था। दाऊदी बोरा समाज के साथ बातचीत में उन्होंने जिक्र किया कि इस कानून पर अमल मुस्लिम खवातीन और मुसलमानों के दीगर अकलियती तबकों के साथ जारी नाइंसाफी का जायजा लेने के बाद किया गया।
2: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया। उसमें ज्यादातर बहने बेटी, तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं है, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सर। तो मुझे मालूम था कि बोरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब को तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है, उनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया।
1: उस्मान गनी ने, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में एक वकील हैं, कहा कि वक्फ में की गई तरमीम से मुस्लिम खवातीन को इमलाक में उनका हक मौसूल हुआ है।
3: इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस है। महिला लोगों के लिए एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिलाओं लोगों का वाकअप बोर्ड और वाकअप काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये मास्ट कर दिया गया है कि वाकअप बोर्ड में कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए और वाकअप काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
1: कोलकाता से कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बे।
0: यूनेस्को की आरिजी फहरिस्त में भारत के 5 नए मकामात और सिलसिलावार नीस बैनुलअक्वामी नामजदगियों की तजावीज शामिल की गई हैं, जिसके बाद इस फहरिस्त में भारत के मकामात की तादाद बढ़कर 78 हो गई है। नए शामिल किए गए मकामात में बागकारों की बुद्धमत से मुतालिक दीवारों पर बनाई गई तस्वीर शामिल हैं। एशियन गेम्स 2026 में नीरू ढांडा ने खवातीन के इन्फिरादी मुकाबले में सोने का तमगा हासिल करके पहली भारतीय शूटर बनकर तारीख रकम की है। आशिमा अहलावत और मनीषा खीर के खवातीन के टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने के बाद भारत को ये सोने का तमगा हासिल हुआ है। बॉक्सिंग में प्रवीण हुडा और अंकुश पंघल ने आज निशियो में अपने मुकर्रा वजन के जुमरों में सोने का तमगा हासिल किया है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सरहद से मुतालिक तातुल को हल करने से भारत चीन तालुकात को बेहतर बनाने में मदद मिली है। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि मुल्क आलमी हवाबाजी का एक बड़ा मरकज बनकर उभरा है और वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हवाबाजी मार्केट बनने की समत काम कर रहा है। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में AIIB सालाना मीटिंग से अलग दफा सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में तआवुन का जायजा लिया। इंतखाबी कमीशन ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। और एशियन गेम्स 2026 में नीरू ढांडा ने तारीख रकम की है। उन्होंने खवातीन के इन्फिरादी ट्रैप मुकाबले में पहला इन्फिरादी एशियन गेम्स सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
4: चल रहे प्रोग्राम फौजी विरले त्यां सुन दिया अगला गीत। तेस गीत ने संगीत बद कीता है चित्रंजन पाटनी ते गीतकार ने मनोज यादव ते आवाजा अरजीत सिंह ते पलक मुचल दी।

0: एचआईवी किमें फैलदा है?
1: एचआईवी
0: नहीं पता ना, समझदार वीरे ता सुन, एचआईवी किमें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
3: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
3: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
0: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
4: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
0: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किमें फैलदा है?
1: एचआईवी
0: नहीं पता ना, समझदार वीरे ता सुन, एचआईवी किमें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
6: की कहा, तुहाडी लॉटरी निकली है? टिकट खरीदी सी? नहीं, अच्छा, तुहानू फोन आया है कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया है, ते हुण आधार नंबर पैन नंबर ते अकाउंट नंबर देके पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको, अजिहा ना करना, ए धोखा हो सकदा है तुहाडी निजी जानकारी चुराउण दा। चौकस रहो, जागरूक बनो, कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसे नाल सांझी ना करो।
7: फौजी वीरो, तुहाडा एक बार फिर तो स्वागत है प्रोग्राम फौजी वीरा लई। ते आओ सुनते हां आक्रोश मूवी दा एक गीत, आवाज़ जावेद अली दी।

फौजी रो अगला गीत आवाज़ साची टंडन दी, गीतकार शेरा अपूर्वा ते संगीतकार अभिजीत श्रीवास्तवा। फौजी वीरो इसी गीत दे नाल अपनी दोस्त कृतिका कौशल नूं दिओ इजाजत। जय हिंद।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2:15 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है, देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रच

हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में आज बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित

0: जाए खोजो, तो ये रातों रात नहीं आए। लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश किए सर। तो मुझे मालूम था कि गौरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब को और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है, इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया।
1: कोलकाता उच्च न्यायालय की वकील शिवली शाह ने कहा कि वाकफ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को उनके संपत्ति की अधिकार प्राप्त हुए हैं।
2: इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस है महिला लोगों के लिए। एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिलाओं लोगों का वाकअप बोर्ड और वाकअप काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये मास्ट कर दिया गया है कि वाकअप बोर्ड में कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए और वाकअप काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कुल्लन लहा की रिपोर्ट।
3: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी के इन पदाधिकारियों की ये पहली बैठक थी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी और 6 अन्य नेताओं का कार्यकाल 25 नवम्बर को समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड से नरेश बंसल का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त हो रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही।
4: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
3: असम के सोनितपुर जिले में सोनाई रुपाई वन्य जीव अभयारण्य एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में सोनाई रुपाई जंगल और हाथियों के लौटने का उल्लेख किया था।
5: हिमालय की तलहटी में स्थित सोनाई रुपाई वन्य जीव अभयारण्य 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 सितंबर 1998 को इसे आधिकारिक रूप से वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। असम वन विभाग की 2024 की हाथी गणना के अनुसार इसकी सीमाओं के भीतर 140 हाथी दर्ज किए गए थे। यह अभयारण्य कभी सैकड़ों हाथियों का घर हुआ करता था, लेकिन बढ़ती मानवीय गतिविधियों और भूमि अतिक्रमण के कारण हाथियों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों को हटाने और वनीकरण के माध्यम से हरियाली बहाल करने के लिए किए गए विशेष प्रयासों ने जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजतन अब उन क्षेत्रों में भी हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं जहां वे कई वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। सोनितपुर से रजत भरद्वाज के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी न्यूज, गुवाहाटी।
3: और जापान एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
6: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों 2026 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीन ने रजत पदक हासिल किया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से

0: सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मेरे वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं।
2: जापान दे खेड मैदान विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तो वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा शिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानन लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक वक चैनल्स ते FM रेनबो प्राइमरी चैनल DRM ते DTH चैनल्स ते। इहदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
3: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
4: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलिया जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े BMC चौंक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वेबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार नहीं है।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। 2:30 बजके ने ते पेश है प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस प्रोग्राम च तुसी सुरेश कुमार सहदेव ते साथियां दियां आवाज़ां च माता दियां भेटां सुनोगे। आओ सुनदे हां सब तों पहला ए भेट।

0: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिले जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े बीएमसी चौंक जलंधर है। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वेबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तारीख 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार नहीं है।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: तुसी सुन रहे हो रंगली धरती तहत सुरेश कुमार सहदेव ते साथियां दियां गाइयां माता दियां भेटां ते सुनदे हां अगली भेंट।

विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत के चीन नाल संबंध पिछले साल नालों मौजूदा समय च बेहतर ने। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा ते तकनालोजी समेत वक-वक खेत्रां विच सहयोग की समीक्षा की। चोण कमिशन ने अज 11 राज्यसभा सीटा लिए 2 साल चोणों वास्ते नोटिफिकेशन जारी कर दिता है। शहरी हवाबाजी मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि भारत दुनिया का तीजा सब तो वड्डा हवाबाजी बाजार बनने वाल काम कर रहा है। इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट वालों मोहाली के सैक्टर 119 स्थित TDI इंफ्राटैक के दफ्तर में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि उनकी सरकार शहीद आजम भगत सिंह के सुपनों को साकार करन अते लोक भलाई ते आधारित पंजाब की सिरजना के दृढ़ अहद नाल काम कर रही है। पंजाब नूं नशा मुक्त बनाउण दे उद्देश नाल BJP वालों कढ़ी जा रही नशा मुक्त पंजाब यात्रा अज लुधियाणा पहुंची। संसद मैंबर मनोज तिवाड़ी, रवनीत सिंह बिट्टू ते होर BJP नेता इस च शामिल होए। राज्यसभा मैंबर ते प्रसिद्ध वातावरण प्रेमी संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने ड्रेना नूं प्रदूषण मुक्त करन लई कीते जा रहे उपरालियां दी समीक्षा कीती ते कहा कुदरती स्रोतां नाल खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कीता जाएगा। श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित गुरदासपुर विखे एक विशेष ड्रोन शो करवाया गया। दिल दीयां बीमारियां उन्हां दी रोकथाम अते विश्वव्यापी प्रभाव बारे लोकां विच जागरूकता पैदा करन लई अज विश्व दिल दिवस मनाया जा रहा है। निशानेबाजी विच नीरू टांडा ने एशियाई खेडां च औरतां दे ट्रैप मुकाबले विच भारत लई पहला व्यक्तिगत सोने दा तमगा जित के इतिहास रचिया है। इह सन हुण तक दीयां न्यूज हेडलाइंस। आओ सुनते हैं प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। नमस्कार, तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां लैके मैं तुहाडा दोस्त ते RJ तेजिंदर सिंह हाजिर हाँ। इस प्रोग्राम च असी तुहाडे वल्लों भेजिया जांदियां प्यार भरिया चिट्ठियां नूं शामिल करदे होए तुहाडे वल्लों कीती जांदी पंजाबी गीतां दी फरमाइश नूं पूरा करदे हाँ। दोस्तों, अज 29 सितंबर विश्व हार्ट दिवस मनाया जांदा है। इस दिवस का मुख उद्देश दिल दीयां बीमारियां ते उहनां दे खतरियां बारे लोकां नूं जागरूक करना है ते इस दे नाल ही सेहतमंद जीवन शैली अपनाउण प्रति भी प्रेरित करना है। इस दिवस नूं मनाउण दी शुरुआत वर्ल्ड हार्ट फाउंडेशन वालों WHO के सहयोग नाल साल 1999 च कीती गई सी। पहला हार्ट दिवस 24 सितंबर 2000 मनाया गया सीगा। दोस्तों, गल्लां प्रोग्राम दे नाल नाल चलदियां रहणगियां। प्रोग्राम दी पहली फरमाइश लई सानूं चिट्ठियां भेजण वाले ने आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार तों ताज मुहम्मद अंसारी गुलाब साबिर राहे महाराज जहां, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी तों द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, चौवेंद्र कुमार वर्मा, पिंड खाने की ढाब मलोट तों शमशेर सिंह कौलधर, जसविंदर कौर, करण प्रताप सिंह, मनरीत कौर, तरनवीर सिंह ते मनताज, सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तों TD मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका तो शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, गांधी चौंक रोपड़ तो हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक ते मीका बिरक, पिंड अमीर शाह वाला तहसील जीरा तो मुख्तियार सिंह वरवाल ते गुरसेवक सिंह ते होर बहुत सारे ने दोस्त मित्र, डब वाली हरियाणा तो JK बकोलिया, सुनीता बकोलिया, संजय, अनिल, मीनू बकोलिया, कृष्णानगर TV टावर सैमीनरी हिल्स नागपुर महाराष्ट्र तो नाना डोंगर दीवे, रमा ताई डोंगर दीवे, सीमा ताई डोंगर दीवे, रीमा ताई डोंगर दीवे, दीक्षा ताई ते राहुल डोंगर दीवे। इसी तरह मालवा रेडियो स्रोता संघ तो बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा ते ऋषि वर्मा। इसी तरह पिंड बुरज हनुमानगढ़ फाजिलका तो अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा ते पूरा वर्मा परिवार। दोस्तों, इन्हां सारयां दी फरमाइश ते सुणदे आं प्रोग्राम दा पहला गीत।

दोस्तों तुसे सुन रहे सिगे हरभजन मान की आवाज़ में खूबसूरत गीत लोरियां डी टी एच की पंजाबी प्रसारण सेवा ते आर जे तेजिंदर सिंह को तुसीं सुन रहे हो प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। दोस्तों तुसीं भी प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां च अपनी फरमाइश ते गीत सुनने लिए सानू चिट्ठियां भेज सकते हो। चिट्ठियां भेजने साडा पता है प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां मार्फत स्टेशन डायरैक्टर आकाशवाणी जलंधर। दोस्तों तुसीं सानू वध तों वध चिट्ठियां भेजो, असीं पूरी कोशिश करांगे कि तुहाडे वल्लों भेजिया गई चिट्ठियां प्रोग्राम च शामिल करते हुए तुहाडे वल्लों की जाती पंजाबी गीतां की फरमाइश नूं जरूर पूरा करिए। प्रोग्राम की अगली फरमाइश लिए सानू चिट्ठियां भेजने वाले ने फिरोजपुर नवांशहर तो जगजीत सिंह शेरगिल, राजविंदर कौर शेरगिल, चाहल कला नवांशहर तो अमरजीत सिंह बंगा, परमिंदर राजा ते कुलविंदर कौर। इस तरह गुरु रविदास नगर मलोड़ तो नानक चंद जाजोरिया, बंटी कुमार पलखड़िया, सुनील कुमार बुढ़ा, विजय कुमार रातिया ते रवि कुमार जसल। जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया ते पप्पी भाटिया। भवलाल हाजीपुर तो विजय कुमार कौंडल ते बहुत सारे साथी इन्हां दे

दोस्तों तुसी सुन रहे सी क्लियर कंठ की आवाज़ में खूबसूरत गीत इंतजार। दोस्तों असं गल कर रहे थे कि दिल हार्ट दिवस बारे। दोस्तों जिहड़ा दिल सानूं जिउंदा रखता है तो साढ़े शरीर की हर गतिविधि अहम भूमिका निभाउंदा है, उस दिल की सेहतयाबी लई सानूं भी थोड़ा जिहा ध्यान रखना चाहिए है। दिल नूं सेहतमंद रखने लई सानूं संतुलित भोजन जिस च ताज़े फल हरिया सब्जियां ते साबत अनाज शामिल हन खाने चाहिए हैं। इस दे नाल ही रोज़ाना घट्टो घट 30 मिनट सैर जां कसरत करते हुए तनाव दूर करने लई योग ध्यान ते इस दे नाल ही पूरी नींद लैनी चाहीदी है। सिगरट नोशी ते शराब तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों प्रोग्राम की अगली फरमाइश लई सानूं चिट्ठियां भेजने वाले ने सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुढलाणा महाराष्ट्र तो नरेंद्र नरवाड़े ज्योति आकांक्षा ते आकाश कुमार पिंड तेजा मोड़ी अंबाला तो बंसी लाल संधु कबीर जैजवीर संधु वरनीत पवनीत कौर ते होर इन्हां दा पूरा परिवार अनारकली बाजार जगराओं तो सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा आशीष मल्होत्रा बेबी गाव्या भाई सुचा सिंह पाठक कोटली कला पंजाब तो यादविंदर सिंह सुखविंदर सिंह रविंदर सिंह मनजीत सिंह ते गुरजोत सिंह कुलम रोड हरगोबिंद नगर नवांशहर तो सुरेंद्र संधु अनीता संधु रोहित रितेश शिक्षा संधु ते होर इन्हां दे परिवारक मैंबर। दोस्तों इन्हां सारयां दी फरमाइश ते सुणदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत कुलदीप माणक दी आवाज़।

मुड़ मिलन दे वादे ना प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां दा सुहाना सफर करन खत्म करन दी अपने दोस्त तजिंदर सिंह नूं दिओ इजाजत। इस प्रोग्राम दे खत्म हुंदे ही हुण तो कुछ ही पलां बाद

विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत दे चीन नाल संबंध पिछले साल नालों मौजूदा समय विच बेहतर ने। भारत अते साउदी अरब ने रक्षा व्यापार निवेश ऊर्जा ते टेक्नोलॉजी समेत वक्-वक् खेत्रां विच सहयोग दी समीक्षा कीती। चोण कमीशन ने अज 11 राज्यसभा सीटां लई 2 सालां चोणां वास्ते नोटिफिकेशन जारी कर दिता है। शहरी हवाबाजी मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि भारत दुनिया दा तीजा सब तो वड्डा हवाबाजी बाजार बनन वाला काम कर रहा है। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वालों मोहाली दे सैक्टर 119 स्थित TDI इंफ्राटेक दे दफ्तर विच तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि उन्हां दी सरकार शहीद आजम भगत सिंह दे सुपनियां नूं साकार करन अते लोक भलाई ते आधारित पंजाब दी सिरजना दे दृढ़ अहद दा नाल काम कर रही है। पंजाब नूं नशा मुक्त बनाउण दे उद्देश नाल BJP वल्लों कढ़ी जा रही नशा मुक्त पंजाब यात्रा आज लुधियाणा पहुंची। संसद मैंबर मनोज तिवाड़ी, रवनीत सिंह बिट्टू अते होर BJP नेता इस चीज शामिल होए। राज्यसभा मैंबर ते प्रसिद्ध चुगेड़दा प्रेमी संत बलबीर सिंह सिचेवाल ने ड्रेना नूं प्रदूषण मुक्त करन लई कीते जा रहे उपरालियां दी समीक्षा कीती। कहा कुदरती स्रोतां नाल खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कीता जावेगा। श्री गुरु रविदास जी दे 650वें प्रकाश पुरब समर्पित गुरदासपुर विखे एक विशेष ड्रोन शो करवाया गया। दिल दीयां बीमारियां उन्हां दी रोकथाम अते विश्वव्यापी प्रभाव बारे लोकां विच जागरूकता पैदा करन लई अज विश्व दिल दिवस मनाया जा रहा है। ते निशानेबाजी विच नीरू टांडा ने एशियाई खेडां च औरतां दे ट्रैप मुकाबले विच भारत लई पहला व्यक्तिगत सोने दा तमगा जित के इतिहास रचिया। एह सन हुण तक दीयां मुख चोणवीआं खबरां। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है पंजाबी फिल्म संगीत।

सुन रहे हो कुछ पंजाबी फिल्मी गीत। अगला सुनते हैं जस्सी गिल दी आवाज़ विच फिल्म लावा फेरे चों।

सुन रहे हो पंजाबी फिल्मी गीत। त्यां सुनते हैं फिल्म गोरियां नू दफा करो मूवी चू। प्रभ गिल की आवाज़ में प्यारा जगीत है, सुनते हैं।

सुन रहे हो पंजाबी फिल्म संगीत तहत फिल्मी गीतां नूं लैके तुहाडे सामने आ रहे हां। ते लो जी अगला गीत सुनदे हां गुरशबद सिंह दी आवाज़ विच फिल्म लौंग लाची तों।

लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। इस शब्द का गायन किया भाई सतविंदर सिंह अते भाई हरविंदर सिंह होरां दे रागी जत्थे ने।

0: ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ।
1: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਸਟਾਫ ਕੁਆਟਰ ਤੇ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਯਾਨੀ PSU ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਟਾਫ ਕਲੋਨੀ BMC ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅਰਬਨ ਇਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 1 ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟਸ। ਚਾਹਵਾਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਪ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 0181-298-3036। ਈਮੇਲ ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ।
2: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू रणनीतिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी देश की ब्लू वाटर नौसैनिक क्षमता को दर्शाती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में इस समय बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हित में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के लिए लाभदायक नहीं है।
3: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
2: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC की दूसरी बैठक नई दिल्ली स्थित संसदीय सौंध में आज हुई। गृह मंत्रालय और विधि तथा न्याय मंत्रालय के अधिकारी प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर सदस्यों को जानकारी दी। समिति शीतकालीन सत्र 2026 के पहले सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित करने की बात कही। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने की भी व्यवस्था की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से शिष्टाचार भेंट की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष बल दिया गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री नायडू नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। भारत और केन्या के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकश आज पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पहुंचा। INS तरकश की ये यात्रा 2 अक्टूबर तक चलेगी। जापान एशियाई खेलों में महिला 4x400 रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं 4x400 पुरुष रिले स्पर्धा और इसी स्पर्धा के मिक्स्ड वर्ग में भारतीय टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रच दिया। भारत 6 स्वर्ण 21 रजत 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं।

साढ़े दिल्ली के अंदर आई स्पॉटलाइट, नाश्ता किया जाएगा रात 9:15 बजे। खेड संसार स्पोर्ट्स मैगजीन का प्रोग्राम से सुनोगे रात 9:30 बजे। रात 10 बजे दिल्ली केंद्र तो विवियान एशियन खेडा दिया मुख झलकियां प्रसारित कीतियां जाएंगी। चंद पंजाबी गीत से सुनोगे रात 10:20 ते रात 10:30 बजे हिंदी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगा।

0: मीडिया पोस्ट विच राष्ट्रपति ने कहा कि देश लिए बहुत माण वाली गल है। आखिर च खास खबर एक बार फिर तो बीजेपी वालों शुरू की गई नशा मुक्त पंजाब यात्रा कल जलंधर विखे होगी समाप्त। गृह मंत्री अमित शाह इस यात्रा विच शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री डॉ बलजीत कौर ने नशा मुक्ति मित्र वजो सेवावां निभा रही भी आंगनवाड़ी वर्करां नूं उन्हां दे योगदान लई सन्मानित किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वालों मोहाली स्थित TDI इंफ्राटेक के दफ्तर च छापेमारी जारी। एशियाई खेडां विच निशानेबाज नीरू टांडा ने औरतों के ट्रैप मुकाबले भारत लिए पहला व्यक्तिगत सोने का तमगा जीत के इतिहास रचा। इस दिन प्रदेशक खबरों का यह बुलेटिन खत्म होंगे। राष्ट्रीय खबरों का अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे रात 8:30। नमस्कार।
1: खबरों तो बाद एक बार फिर स्वागत आकाशवाणी के जलंधर केंद्र से। जलंधर 343 शहरी 873 किलोवाट से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है स्पॉन्सर प्रोग्राम किसान वाणी।

0: प्रोग्राम किसान वाणी दे प्रयोजक ने खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना नाल छोटे किसानों का भविष्य होएगा सुरक्षित।
2: अते 60 साल की उम्र वालों नूं 3000 रुपए महीने की पेंशन होएगी सुनिश्चित।
1: 55 रुपए तो 200 रुपए महीने की किश्त दे के योजना विच शामिल हो सकते ने 18 तो 40 साल तक के किसान।
2: इस योजना विच सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सारे किसान भैन भरा इस योजना के लाभ लई जन सेवा केंद्र विच जान
2: ते अपना नाम मुफ्त विच दर्ज कराण।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता की मेहनत नूं समर्पित। पेंशन नाल सुरक्षित उन्हां दा मान। कृषि ते किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित विच जारी।
3: किसान वीरों, जे तुसी सरों, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी या होर तेल बीज फसलां दी काश्त करते हो तां तुहाडे लई एक लाभदायक सहायता सेवा उपलब्ध है, ऑल सीड्स किसान मित्रा। यह सेवा भारतीय खेतीबाड़ी खोज परिषद ICAR दे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च हैदराबाद वालों किसानों नूं तेल बीज फसलों संबंधी खेतीबाड़ी सलाह देने लई शुरू की गई है। किसान वीरो, इस सेवा राही तुसी फसल की किस्म, बिजाई, खादा की वरतों, सिंचाई, कीड़े मकौड़िया अते बीमारी की रोकथाम अते फसल की सुचजी संभाल नाल संबंधित सवाल पूछ सकते हो। इसलिए अपने मोबाइल फोन 40 24 59 81 80 नंबर ऑयल सीड्स किसान मित्रा दे नाम नाल सेव करो अते व्हाट्सएप राही अपना खेतीबाड़ी संबंधी सवाल पूछो। ए सेवा किसानों नू तेल बीज फसलां बारे विज्ञानक अते खोज आधारित जानकारी प्राप्त करन विच मदद कर सकती है। सो किसान वीरो, आधुनिक टेक्नोलॉजी नू खेती नाल जोड़ो अते अपनी फसल दे नाल संबंधित सही जानकारी लई ऑयल सीड्स किसान मित्रा नाल व्हाट्सएप राही संपर्क करो। नंबर एक बार फिर तो नोट कर लो, 40 24 59 81 80। वधेरे जानकारी लई जुड़े रहो आकाशवाणी जलंधर दे किसान वाणी प्रोग्राम नाल।
0: जय हिंद किसान वीरो, उम्मीद करते हैं कि साडे किसान वीर सुआणिया सब चढ़दी कला विच होणगे। और जिथे तक गल करते हैं असी खेती दी, तां असी किसान वाणी दे अंतर्गत हर मंगलवार, वीरवार, शनिवार वध तों वध जानकारी देने की कोशिश करते हैं ता कि साडे किसान वीरां नूं सुआणिया नूं कोई समस्या ना आवे। तो हुण खेती संदेश की गल करिए, कमाद की खेती नूं वधाउण दे लाहेवंद बनाउण लई कुछ नुकते ने, क्योंकि कमाद एक बहुमंतवी फसल है ते इस दी बिजाई दे रुत्तां पतझड़ ते बहार विच हुंदी है। ते सितंबर अक्टूबर भाव वर्ष दी बिजाई दा समा नेड़े आ चुकिया है ते खंड मिल दी समर्था दे आधार ते गन्ने दी मंग दी पूर्ति नहीं हो पा रही। ते इसे टीचे दी पूर्ति लई किसानां नूं कुछ विशेष गल्लां दा ध्यान रखना चाहीदा है, जो कि पैदावार नूं वधाउण विच होर सहायता करदियां ने। जिवें कि बीज दी चोण दी गल कर लईए, कमाद विच तंदरुस्त बीज दी चोण ते बिजाई इक अहम पड़ा है। इसलिए इस सिफारिश की जाती है कि बिजाई लई गन्ने दे उपरले इक तिहाई नरोए हिस्से दे बीज दे तौर ते वर्त

करनी चाहिदी है। ए हिस्सा कूला कच्चा ते रोग मुक्त होण करके इसका जमा वधिया हुंदा है। ते जेकर काश्तकार इस इलावा निचले दो तिहाई हिस्से की भी वरतों करना चाहता है तो बीज की सोध करना यकीनी बनाना चाहिए। इसलिए पौरिया नू रात पर ईथरल 25 मिलीलीटर 100 लीटर पानी विच भिओ के रखना चाहिए। ते इस उपरंत बीजन तो पहला एमिस्टार टॉप 325 1 लीटर पानी विच दे कोल विच प्यो के बीजना चाहिए, जो कि खेत विच आने वाली मुख बीमारियों तो बचाने विच मदद करता है। ये जरूर ध्यान रखना है। ते जदों बीज वरतना है तो बीज वरतन तो पहला यकीनी बना लो कि गन्ना बीमारी ते कीड़िया दे हमले तो मुक्त होवे। ते जे किस्मा ते व्योंतबंदी दी गल करिए तां वड्डे पद्धर ते कमाद दी खेती खंड मिल नूं कच्चा माल दे तौर ते देण लई कीती जांदी है। कमाद दी फसल दा जीवन काल लंबा लगभग 10 तों लैके 12 महीने होण करके इस दे बीज दी चोण गेती ते दरमियानी पिछेती किस्मा दे आधार ते करनी चाहिदी है। खंड मिल नूं ज्यादा समय तक कमाद उपलब्ध करवाउण लई किस्मा दी सही व्योंतबंदी होना बहुत ही जरूरी है। किस्मा दी पक्कण दे आधार ते बिजाई 3.2 अगेती दरमियानी पिछेती किस्मा विच करन दी सिफारिश कीती गई है, जिस नाल वध चार ते खंड दी मात्रा मिलदी है ते मिलां दी पिड़ाई दा अंतराल वध सकदा है ते इस तो वध मुनाफा खटिया जा सकदा है। इस लई अगेतियां किस्मा COPB95 COPB96 COPB92 CO61 CO J85 ते दरमियानी पिछेती किस्मा COPB98 COPB94 COPB91 सिफारिश अधीन ने, जिन्हां दा औसतन झाड़ क्रमवार 425 382 335 320 305 410 क्विंटल प्रति एकड़ है। इन्हां किस्मां तो इलावा दो नवीं किस्मां COPB99 ते COPB100 CVRC तो सिफारिश अधीन है, जिन्हां दा औसतन झाड़ क्रमवार 385 ते 380 क्विंटल प्रति एकड़ है, जो कि दरमियानियां पछेती किस्मां ने। गुड़ शक्कर लई सिफारशी किस्मा वधिया गुड़ बनाउण लई अगेतियां किस्मा COJ64 COI 75 COPB92 CO61 CO185 ते दरमियानी पछेतियां किस्मा COJ88 COPB98 COPB99 दी सिफारिश कीती गई है। बिजाई दी विधि विच कमाद दी फसल विच लेबर दी घाट मशीनीकरण नूं मद्देनजर रखते हुए फसल दी बिजाई चौड़ी ते डूंगी बिजाई 120 सेंटीमीटर दी दूरी ते जां फिर 120/30 सेंटीमीटर ते दो कतारी विधि नाल करन दी सिफारिश कीती गई है। इस विधि नाल फसल विच वरते जांदे खाद ते दवाईयां दी वरतों घटन कारण कमाद दी खेती विच मुनाफा वधदा है। इस अलावा इस बिजाई नाल गन्ने दी मशीनी कटाई विच भी मदद मिलदी है। वधिया गुणवत्ता वाला गुड़ बनाउण लई कमाद दी सांभ संभाल इक महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदी है। गन्ने विचली सुक्रोस कण दी मात्रा इस दी गुणवत्ता तय करदी है। इस लई सुक्रोस दी सही मात्रा नूं कायम रखण लई कमाद नूं समें सिर खाद ते पानी देना जरूरी है। गुड़ बनाउण लई ताज़ा कट्टिया कमाद जो कि कीट जां फिर जानवरां दे संक्रमण तों रहित होवे नूं वरतना चाहीदा है। डिग्गे होए ते पुंगरे होए कमाद नाल बणे गुड़ दी गुणवत्ता घट जांदी है। इस लई साफ गन्ने दी वरतों करनी चाहीदी है। गन्ने नूं डिगण तों बचाउण लई समें सिर बनाई ते मिट्टी चढ़ाउणी जरूरी है। कमाद दी उमर लगभग 10 तों 12 महीने दी होनी चाहीदी है ते इस दी रस दी ब्रिक्स औसतन 19 तों 20 होनी चाहीदी है ते इस ब्रिक्स नूं नापण लई गन्ने दे हेठले विचकारले ते उपरले हिस्से तों रस कढ के ब्रिक्स देखणी चाहीदी है ते इस दी औसत कढणी चाहीदी है। औसत 19 तों 20 ब्रिक्स वाला गन्ना पक्का मन्निया जांदा है, जिस विच खंड ते गुड़ उत्तम गुणवत्ता वाला बन सकता है। इसी कमाद दी खेती नूं वधाउण ते लाहेवंद बनाउण लई कुछ नुक्ते ते हुण सौणी दीआं फसलां दी विक्री संबंधी जरूरी जानकारी है कि पंजाब मंडी बोर्ड वल्लों सौणी 2026 मंडीकरण सीजन दौरान 154 मुख मंडियां ते उहनां नाल जुड़े 288 हालतियां सब यार्ड 1450 आरजी खरीद केंद्रा समेत कुल 1892 मंडियां विच झोने दी खरीद वेच दे प्रबंध कीते गए ने। किसान अपनी उपज नियमित मंडियां विच ही वेचण, वाजब मुल लैण लई मंडी विच चिणस नूं सुखा के लै जाण तां जो बोली समय सिर हो सके। मंडी विच चिणस दी तुड़ाई अपनी निगरानी हेठ करवाउण। किसानां ते खेती कामियां नूं सलाह है कि मशीनरी दी वरतों सुचेत हो के करन तां जो कोई दुर्घटना ना होवे। अजिही दुर्घटना होने की सूरत विच तुरंत 77 मार्केट कमेटी नाल संपर्क करन। मंडी विच किसे किस्म दी

0: ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨ ਸੇਵਾ ਸੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ।
1: ਯੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾ ਜਨ ਸੇਵਾ ਸੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕੇ 13ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਮੇਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੈ ਪਰਿਚਰਚਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ। ਇਸ ਮੇਂ ਭਾਗ ਲੇ ਰਹੇ ਹੈ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕੇ ਸਦਸਯ ਔਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਚੀਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰ ਸੌਮਿਆ ਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼। ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਭੁਵਾਨੀਆ।
2: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं जन सेवा से देश सेवा की। आज के हमारे खास अतिथि हैं डॉक्टर सौम्या कांति घोष, जो कि 16वें फाइनेंस कमीशन के सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के भी सदस्य हैं और साथ ही साथ SBI के चीफ ग्रुप इकोनॉमिक एडवाइजर भी हैं। नमस्कार डॉक्टर सौम्या कांति घोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: चर्चा शुरू करने से पहले इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कि पिछले वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में किए गए सुधारों ने अर्थव्यवस्था को किस तरह नई गति देने में योगदान दिया है।
3: एक समय भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती थी, बैंकों की फाइलों में ऐसे ऋण बढ़ रहे थे जिनकी वापसी मुश्किल हो रही थी, इन्हें गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कहा जाता है। इसका असर सिर्फ बैंकों तक सीमित नहीं था, जब बैंक का पैसा फंसा रहता है तो नए ऋण देने की उसकी क्षमता भी प्रभावित होती है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बैंक और कंपनियों की कमजोर बैलेंस शीट ने मिलकर उस समय ट्विन बैलेंस शीट की समस्या को जन्म दिया था। इसी चुनौती से निपटने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की एक व्यापक प्रक्रिया शुरू हुई। इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था एसेट क्वालिटी रिव्यू, यानी बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता की विस्तृत जांच। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015 में एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू किया। इसका उद्देश्य था कि बैंकों की किताबों में छिपे वित्तीय दबाव को स्पष्ट रूप से सामने लाया जाए और खराब ऋणों की सही पहचान की जा सके। खराब ऋणों की पहचान के बाद अगली चुनौती थी इनका समाधान कैसे किया जाए। इसी क्रम में वर्ष 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी IBC लागू किया गया। इसका उद्देश्य कंपनियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के दिवालियापन और ऋण समाधान के लिए एक समयबद्ध और व्यवस्थित ढांचा उपलब्ध कराना था। IBC के तहत ऋणदाता और देनदार दोनों के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई। इस पूरी व्यवस्था में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT की महत्वपूर्ण भूमिका है। NCLT के समक्ष कॉरपोरेट दिवाला समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जबकि इसके फैसलों के खिलाफ अपील के लिए NCLT का प्रावधान है। वहीं IBC के क्रियान्वयन और उससे जुड़े पेशेवर तंत्र की निगरानी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI की स्थापना की गई। IBBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक IBC के तहत कुल 1194 मामलों में समाधान योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी थी। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस व्यवस्था के कारण कई मामलों में दिवाला प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही देनदारों ने अपने बकाए का निपटारा किया, लेकिन केवल खराब ऋणों की पहचान और समाधान ही पर्याप्त नहीं था। बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी होना भी जरूरी था ताकि वे अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकें और नए ऋण उपलब्ध करा सकें। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की दिशा में कदम उठाए। पूंजी बढ़ने से बैंकों को अपने वित्तीय आधार को मजबूत करने और ऋण देने की क्षमता बनाए रखने में मदद मिली। RBI के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण ने भी बैंकों की पूंजी स्थिति मजबूत करने में योगदान दिया। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी। इसका उद्देश्य बैंकों को अधिक मजबूत और सक्षम बनाना, उनकी परिचालन क्षमता बढ़ाना।

0: ना और बेहतर तरीके से जोखिम का प्रबंधन करना था। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2017 से 2020 के बीच कई बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय हुआ और वर्तमान में देश में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। बैंकिंग सुधारों का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा बैंकों के कामकाज में बेहतर प्रशासन, जोखिम प्रबंधन और तकनीक का इस्तेमाल। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ईज यानी इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस जैसे सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से शासन, जिम्मेदार ऋण वितरण, जोखिम प्रबंधन और तकनीक आधारित बैंकिंग पर जोर दिया गया। इन सभी कदमों का व्यापक उद्देश्य एक ही था, बैंकिंग व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना, वित्तीय जोखिम को कम करना और अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रभाव को बेहतर करना। इन सुधारों के परिणाम बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न संकेतकों में भी दिखाई दिए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल NPA अनुपात मार्च 2016 में 14.5% था, जो मार्च 2024 तक घटकर 2.8% रह गया। सर्वेक्षण के अनुसार बैंकिंग नियमन को मजबूत करने, ऋण वसूली कानूनों में बदलाव, IBC और अन्य उपायों ने बैंक तथा कॉरपोरेट क्षेत्र की वित्तीय स्थिति को सुधारने में योगदान दिया। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि बैंकिंग क्षेत्र की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया 2018-19 से जारी रही और सितंबर 2023 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल NPA अनुपात एक दशक के निचले स्तर पर पहुंच गया था। यही बदलाव उस स्थिति की ओर संकेत करता है जिसे आर्थिक सर्वेक्षण ने ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज के रूप में रेखांकित किया है, यानी बैंक और कॉरपोरेट क्षेत्र दोनों की बैलेंस शीट में पहले की तुलना में सुधार। मजबूत बैंकिंग व्यवस्था का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बैंक अर्थव्यवस्था में बचत को निवेश में बदलने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जब बैंकों की वित्तीय स्थिति बेहतर होती है तो वे कारोबार, उद्योग और आम लोगों की ऋण जरूरतों को अधिक मजबूती से पूरा कर सकते हैं। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: डॉक्टर घोष, इससे पहले कि हम एसेट क्वालिटी रिव्यू, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड या फिर बैंक रिकैपिटलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर बैंक मर्जर्स के बारे में चर्चा करें, हम थोड़ी सी नजर हमारे अर्थव्यवस्था के हाल पर डालना चाहेंगे। 90 से लेकर अब तक हमारी अर्थव्यवस्था किस माहौल से, किस दौर से गुजर रही थी?
2: इंडियन इकोनॉमी ने, अगर आप इसका जर्नी देखते हैं कि 1990 से अगर हम शुरू करते हैं, 1991 में जब पहले हम रिफॉर्म शुरू किया था, उसी टाइम में रिफॉर्म वाज बिकॉज ऑफ नेसेसिटी एंड कॉम्पल्शन। नाउ रिफॉर्म इज बेसिकली एक पार्ट है, हमको रिफॉर्म करना है क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। उसी टाइम भी हमने रिफॉर्म किया था, काफी मार्केट में रिफॉर्म किया था, एक्सटर्नल सेक्टर में रिफॉर्म किया था, रूपी को हमने डिवैल्यू किया था, लाइसेंसिंग राज को खत्म करने का कोशिश किया था। लेकिन काफी सारे उसके बाद 1996 के बाद 1990 से 2004 का जो पहले जो सेशन था NDA, उसमें तो इतने सारे रिफॉर्म्स हुए थे। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उसमें आपको पता है कि गोल्डन क्वाड्रेंट बने थे, टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म हुआ थे, पावर सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था, फिर उसी टाइम में आपको क्रेडिट ब्यूरो का भी आपका स्थापना हुआ था, और उसी टाइम इतने सारे रिफॉर्म्स हुआ था। उसी टाइम में आपको FRBM कमिटी का भी रिफॉर्म हुआ था, और मॉनेटरी पॉलिसी का जो होता है उसमें हमने पहले बार देखा था कि मार्केट में उसको एक जो बोलते हैं कि रिपोर्ट जो आदम जानते हैं, जहां से वो सब लोग उसको देख के बैंक्स बोरो करते हैं, तो ये सारे रिफॉर्म्स उसी टाइम में हुआ था। पावर सेक्टर का पहले जो रिफॉर्म था, क्योंकि आपको पता है कि पावर सेक्टर एक काफी सेंसिटिव इश्यू है, और अभी से लास्ट 30 साल से पावर सेक्टर को हम रिफॉर्म करने चाहते हैं, तो उसी टाइम खास पावर सेक्टर के भी रिफॉर्म हमने लेके आए थे। तो बहुत सारे रिफॉर्म उसी टाइम चालू हुआ था। फिर 2004 से अगर हम देखें, उसके बाद हमारा उसी जो 4 से 8 में ग्रोथ हमारा अच्छा था, उसी टाइम सबसे बड़ा मुद्दा था ग्रोथ का जो पुश था, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी उसी टाइम बहुत अच्छा कर रहे थे। तो उसके लिए क्या हुआ था, ग्लोबल इकोनॉमी का मोमेंटम इंडियन इकोनॉमी को भी मिल गया था, इसके लिए उसी टाइम हम अच्छा किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2007-08 में एक फिनेंशियल क्राइसिस आ गया। जैसे ही फिनेंशियल क्राइसिस आ गया, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर था 2008-09 में जो क्राइसिस के बाद, उसी टाइम क्या हुआ था, उसी टाइम हम बहुत सारे एक्चुअली हमने बहुत फिस्कली एक्स्ट्रा वैकेंट हो गया था। आपको अगर याद है 2009 में हमने पे कमीशन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया था
1: जी।
2: हमने उसके साथ हमने जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है उसको भी हमने इम्प्लीमेंट किया था, और उसके साथ हमारा जो फिस्कल डेफिसिट जो बोलते हैं वो भी काफी बढ़ गया था। उसके लिए क्या हुआ, उसके बाद से इंडियन इकोनॉमी का प्रॉब्लम शुरू हो गया, और उसके बाद आपको उसी टाइम इन्फ्लेशन जो था वो 10% से ऊपर रहते थे। कुछ दिनों बाद

क्या हुआ, एक टैग आ गया कि हमने फ्रेजाइल 5 का हो गया। बैंकिंग सेक्टर का उसी टाइम एसेट क्वालिटी खराब होना शुरू किया, और ये क्या हुआ था कि उसी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बैंक्स ने लेन किया था। लेकिन उसका इशू क्या था कि क्योंकि ग्लोबली जो कमोडिटी साइकिल था उसी टाइम बहुत ऊपर था, लेकिन उसके बाद उसका प्राइसेस का दाम कम हो गया। इसके लिए जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था उसमें सारे उनका लोन्स काफी बिगड़ गया। फिर उसके बाद क्या किया, 2015 के बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड किया कि हमको सारे बैंक्स को क्लीन अप करके एक एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आना है। तो उन्होंने एक एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आए थे, फिर सारे बैंक्स को एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आए थे, जितना उसका लोन्स था और लोन्स को रिकॉग्नाइज किया।

0: सारे उनका लोन्स काफी बिगड़ गया। फिर उसके बाद क्या किया, 2015 के बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड किया कि हमको सारे बैंक्स को क्लीन अप करके एक एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आना है। तो उन्होंने एक एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आए थे, फिर सारे बैंक्स को एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आए थे, जितना उसका लोन्स था और लोन्स को रिकॉग्नाइज किया, हाँ ये लोन्स बैड लोन्स है, ये हम वापस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बैंक्स का जो था प्रोविजन बढ़ गया था, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो गया था और सारे जो नंबर्स था वो बिगड़ गया। और उसके बाद एक बहुत बड़ा रिकैपिटलाइजेशन भी गवर्नमेंट में किया था, और उसके बाद उनका साथ उन्होंने ईज ऑफ बैंकिंग को रिफॉर्म्स किया था। तो इसके चलते क्या हुआ, 3-4-5 साल के बाद बैंकिंग सेक्टर का हालत, पैंडेमिक के बाद आपको पता है कि पैंडेमिक में पूरा इकोनॉमी बंद हो गया, लेकिन हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड बैंकिंग सिस्टम उसमें एक्चुअली वो अच्छा किया उसी टाइम में। तो मैं आपको कुछ अगर नंबर बताऊं कि ये जो AQR हुआ, फिर बैंकिंग सेक्टर में लास्ट 10 साल में जितना उन्होंने रिफॉर्म्स लेके गवर्नमेंट आया है, उसको हम ईज रिफॉर्म्स बोलते हैं, उसमें बैंक्स को रिकैपिटलाइजेशन किया था, बैंक को रिकॉन्सोलिडेशन किया है, बैंक्स नॉर्म्स को चेंज किया है और बैंक्स को पूरा फ्रीडम दिया है कि आप इसको काम कीजिए। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, कुछ डेटा 2017-18 में बैंकिंग प्रॉफिट था नेगेटिव, मैंने 32,400 करोड़ सारे बैंक्स का प्रॉफिट था 2017-18। आज का दिन 2025-26 में बैंक का प्रॉफिट है 4 लाख करोड़। तो उसका मतलब ये प्रॉफिट आपको 5 गुना बढ़ गया, 5 से 6 गुना बढ़ गया। ग्रॉस एनपीए रेशियो रिकॉग्निशन हम AQR करने के लिए जो 11% था 2017-18 में, आज का दिनों नंबर है 1.7%, तो सबसे अच्छा नंबर है 13 साल का। नेट एनपीओ रेशियो, उसका मतलब कितना जो लोन हमारा खड़ा था उसका हमने प्रोविजन किया, आज उसका रेशियो है 0.4%। उसका मतलब बैंकिंग सेक्टर का जो सारे लोन्स है वो सारे लोन्स एडिक्वेटली कवर्ड है। स्लिपेज रेशियो जो हम बोलते हैं कितना लोन, वो 7.5% था उसी टाइम में, आज वो 1% का आसपास है। प्रॉफिटेबिलिटी का जो ग्रोथ है, 2017-18 में प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 174% गिरा था, आज का दिन वो 2025-26 में और 26-27 पे और 10% से ऊपर से ग्रो कर रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.5% के आसपास है। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सारे नंबर्स आज काफी अच्छा है। और हमको अनुमान है कि ये बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स जो हुआ है, काफी सारे रिफॉर्म्स हुआ है, और एक जो सबसे बड़ा रिफॉर्म्स इसमें जो हुआ है अपार्ट फ्रॉम द AQR, सेक्टर वाइज अगर आप मुझे पूछे, SME जो सेक्टर है आपका, जो पता है जो बैंकिंग सेक्टर जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है 18-19% हो रहा है, बहुत लोग हमको पूछते हैं कि आपको इतना क्रेडिट ग्रोथ कैसे होगा, आगे जाके ये चल सकते हैं कि नहीं। लेकिन इससे सबसे बड़ा चीज है कि इसमें ये SME क्रेडिट ग्रोथ 23-24% लास्ट 2 साल से चल रहा है एंड दे आर ऑल सॉलिड ग्रोथ। एंड ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी सारे इंसेंटिव दिया इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है और बैंकिंग सिस्टम में जुड़ा है, वैल्यू चेन में ऊपर गया है, और आज का दिन उसका हमने उसका बेनिफिट्स देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर एक ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे गया है। पहले भी रिफॉर्म्स हुआ था 1998 में, अगर आप देखें उसी जो हमने आपके पहले बोला, उसी टाइम नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेशन आए थे, फिर उसके बाद बेसिल कमेटी रिकमेंडेशन भी उसी टाइम चालू हुआ था, फिर 2014 के बाद हमने काफी सारे रिफॉर्म्स किया। एक तो उसमें है जो रिकवरी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड जो हमने किया है। तो मुझे चलते ये लगता है कि बैंकिंग सेक्टर इज नाउ पॉइज्ड फॉर एन वेरी गुड रन, बिकॉज इसका जो बेसिस है वो काफी सॉलिड है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी एंड अदर पैरामीटर्स।
1: जी बिल्कुल। और अब इन्हीं सब विषयों के बारे में थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं एसेट क्वालिटी रिव्यू से। हमारा मानना यह है कि हमारी जो सरकार है उनकी योजना हमेशा से रही है कि पहले समस्या को ढूंढा जाए, फिर उसका समाधान ढूंढा जाए और फिर बैंकिंग सेक्टर में मजबूती लाई जाए। तो एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है वो पहले समस्या को ढूंढने पर निर्भर था और उसके जरिए बैंकों की जो स्ट्रेस लोन्स की स्थिति थी वो ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आए। तो आपके नजरिए से एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है वो बैंकिंग सेक्टर में बाद में सुधार लाने में इसकी क्या भूमिका रही?
0: देखिए, एसेट क्वालिटी रिव्यू तो इनेविटेबल था। प्रॉब्लम ये था कि हम उसको पहले 2009 के बाद जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में गया था, हम हो सकते थे उसी टाइम जो लोन खराब है उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं। हम उसको 3-4 साल ऐसे जाने दिया कि उसको हम नहीं करें, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। लेकिन आगे जाके जो होना था वही हुआ, जैसे ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में डिक्लाइन हुआ था, ये सारे जो लोन्स था बिगड़ गया। और इसमें आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो बैंक्स का लोन था 20-30%, सारे लोन मोस्टली उसी सेक्टर्स में उस पर बिगड़ गया था।

0: गुड्स था, पावर था, ट्रांसपोर्ट था, इस पे काफी सारे लोन आपका बिगड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे बिगड़ गया उसके बाद आरबीआई ने एक रिफॉर्म्स लाए, AQR रिव्यू, इसको हम बोलते हैं RRR, रिफॉर्म्स रिकैपिटलाइजेशन एंड रिजोल्यूशन। तो रिफॉर्म्स किया, रिकैपिटलाइजेशन, गवर्नमेंट में 3 ट्रिलियन रिकैपिटलाइज किया, फिर रिजोल्यूशन किया और रिफॉर्म्स किया। तो ये तीनों आरओ करके बैंकिंग सेक्टर में और जो ग्रोथ हुआ, सबसे बड़ा चीज कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का आज जो क्रेडिट ग्रोथ है, जो नंबर्स है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी अच्छा है, ये पहले था नहीं। तो ये जो हम बीच बीच में, आप काफी टाइम आपने ये बात सुनता है कि इतने सारे लोन्स को हमने बैंक्स का राइट ऑफ कर दिया, ये बेसिकली AQR था। ये लोन जो पहले था, ये लोन को आपको क्लीन अप करना था, क्लीन अप पहले हुआ नहीं, बाद में क्लीन अप हुआ। जो प्रॉफिटेबिलिटी बैंक का नेगेटिव था, आज जो 4 लाख करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी है। और मैं आपको बाकी भी जो नंबर्स दिया कि लिक्विडिटी देखिए, अर्निंग्स देखिए, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, सारे नंबर्स अब डिकेड हाई में है। तो मेरे यही कहना है कि AQR इनेविटेबल, एक नेसेसरी इविल था, हम उसको करना था, हमने कर लिया। दो तीन साल के लिए बैंक्स का प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव हो गया, लेकिन उसके बाद सारे बैंक्स इन इंडिया आर ऑन स्ट्रॉन्ग एंड वार्ड फुटिंग एंड स्ट्रॉन्ग फुटिंग। एंड मुझे लगता है कि जो अब इकोनॉमी आज ग्रो हो रहा है 18-19% में, जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है, इसका रीजन हम उस रिफॉर्म्स के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि हमने सारे सेक्टर में रिफॉर्म्स किया। हमने SME में भी काफी रिफॉर्म्स किया, हम बाकी जो सेक्टर्स लोन से, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमने रिफॉर्म्स किया है, जो लोन्स का जो रूल्स है उसको भी हमने अच्छा किया, बैंक्स का अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड काफी इंप्रूव हो गया। तो सारे चीज अगर हम मिला, सारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी सब डिजिटाइज हो गया। अगर आपको आज का दिन आपको अगर कुछ लोन चाहिए तो आप उसको बहुत जल्दी कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा क्रेडिट स्कोर है। तो सारे चीज मिला के आई थिंक ये बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आज बैंकिंग सेक्टर एक्चुअली एक ग्रोथ का बैकबोन हो गया, एंड इट इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल कि हाउ कैन अ बैंकिंग सेक्टर टेक फॉरवर्ड एन इकोनॉमी एंड सपोर्ट द फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्रेडिट नीड्स।
1: आपने SMEs का भी जिक्र किया था अपने जवाब में, तो मैं चाहूंगी कि आप SME सेक्टर में जो रिफॉर्म आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, और साथ ही साथ 2016 में आए IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड के बारे में भी बताएं, और IBC के आने के बाद कंपनियों के बैड लोन से निपटने के तरीके में किस तरह बदलाव आया।
0: देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले तो मैं IBC लेके आता हूँ। IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड 2016 में आए थे, और वो बेसिकली वो एक डिमांड था बैंकिंग सेक्टर का, क्योंकि अगर हमको कोई लोन को रिजोल्व करना है उसको हमको कोर्ट, अगर नहीं होता है उसको हम एक कलेक्टिव मेकानिज्म में डालेंगे, उसमें उसका रिजोल्यूशन होगा। पहले क्या होता था कि अगर हम किसी को रिजोल्यूशन के लिए बैंकिंग सेक्टर किसी प्रोमोटर से किसी को बुलाते थे, वो करते नहीं था। तो ये कोड आने के बाद ये उनके लिए मस्ट हो गया, अगर आप सेटलमेंट नहीं करेंगे तो ये आपको मार्केट में चला जाएंगे, दूसरा किसी के हाथ में चला जाएंगे। ये जो हम बार बार बोलते हैं ना कि आप अगर ये देख डिबेट देखे, बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव डिबेट है कि इतना पैसा आपने लोन उसको मकूब कर दिया, लेकिन उनके साथ ये बात भी बोलना है कि लोन राइट ऑफ जो होता है बैंकिंग सेक्टर क्लीन अप के लिए, उसके बाद उनके हाथों से उस कंपनी का मैनेजमेंट चला जाते हैं, बिकॉज ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड में एक बीडिंग होता है, जो सबसे अच्छा बीट करेंगे उसको कंपनी मिलेगा। इसके बाद हमने देखा कि काफी स्टील सेक्टर में, जो सबसे खराब सिचुएशन से गुजरा था, सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन स्टील सेक्टर में हुआ था। कुछ कंपनीज का नाम आपको पता है, तो भूषण स्टील फॉर एग्जाम्पल, उसको टेक ओवर हुआ और उसी टाइम में करके वो कंपनी आगे चलते रहा। तो ये तो पहला बात है। दूसरा बात है कि अगर आप SME सेक्टर को बात करें, SME सेक्टर में काफी सारे रिफॉर्म्स आए। पहले रिफॉर्म जो आए थे कि वो जो ECLGS स्कीम, बेसिकली लोन गारंटी, गवर्नमेंट में बोला था कि जो लोन बैंक्स एक्सटेंड करेंगे पैंडेमिक टाइम्स पे, उसके लिए कोई उसको रिस्क वेट नहीं लगेंगे, तो उसके लिए वो लोन काफी सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट में फिर ECLGS लेके, आपको अगर पता है कि कुछ दिन पहले ये वेस्ट एशियन क्राइसिस में ECLGS में 2,50,000 करोड़ का लोन बैंकिंग सेक्टर ने दिया है, और उसके साथ SME सेक्टर में काफी सारे रिफॉर्म्स आए। एक तो फॉर एग्जाम्पल जो SME सेक्टर में अभी स्ट्रीमलाइंड हो गया, लोन अगर मिलना है तो आपको पास अगर पेपर्स है प्रॉपर, ये लोन आप 59 मिनट्स में मिल सकते हैं। उसके बाद जो क्रेडिट गारंटी स्कीम थे SME सेक्टर, उसको भी सिंप्लीफाई हुआ है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, एक पोर्टल खुला हुआ है, उसका आपको पता है कि उसका नाम है उद्यम पोर्टल। उसमें जितने सारे MSME सेक्टर का प्लेयर्स है जो फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, वहां पर आपका अगर

0: नाम डालेंगे तो बैंकिंग सेक्टर से आप जोड़ सकते हैं। तो सारे चीज अगर देखे, ये सारे चीज देख के आज का दिन मुझे आश्चर्य नहीं लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ एसएमई सेक्टर का 24% चल रहा है। एमएसएमई सेक्टर का क्रेडिट ग्रोथ का पोटेंशियल काफी हाई है, क्योंकि जो उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन है वो 7 करोड़ का ऊपर है, और हमको 7 करोड़ में अगर पहुंचना है तो हमको और ज्यादा लोन एमएसएमई सेक्टर को हम दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका डिजिटाइजेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन हो जाते हैं, अब रिकॉर्ड आपके पास हो जाते हैं, आप देन लोन देना आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो यही चीज सबसे अच्छा हुआ है एसएमई सेक्टर के लिए, क्योंकि पहले ये लोग का बीच जो पेपर्स था वो फॉर्मलाइज नहीं था, अभी फॉर्मलाइजेशन के चक्कर में इनका बैंकिंग सेक्टर में इससे जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एक छोटा सा चीज में इंसॉल्वेंसी कोर्ट के लिए बोलना चाहता हूँ। इंसॉल्वेंसी कोर्ट के लिए आपने सुना है कि बीच बीच में एक खबर आते हैं कि इसका जो रिकवरी हुआ है बहुत कम हुआ है, इसका रिकवरी और होना चाहिए था। हाँ, ये बात सही है, लेकिन इसमें एक बात आपको मानना चाहिए कि बीच में जब इंसॉल्वेंसी कोर्ट का दो फेज है, पैंडेमिक का पहले, पैंडेमिक के बाद। पैंडेमिक का पहले क्या हो रहा था कि पैंडेमिक का पहले उन्हें कोर्ट पे बहुत अच्छा रिकवरी हुआ, लेकिन पैंडेमिक के बाद सर 1-2 साल आपको पता है कि कोर्ट बंद था, काम नहीं हुआ, उसके लिए काफी सारे आपको बैकलॉग आ गया। तो हो सकता है कि इसमें हम और कुछ रिफॉर्म करें, और कुछ सुधार लेके आए, और ज्यादा कोर्ट बनाए, और थोड़ा जैसे मेकानिज्म है थोड़ा ठीक से देखे। तो इसमें इंप्रूवमेंट आनी है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कोई जब लॉ आते हैं उस लॉ में अमेंडमेंट्स लेके उसको हम कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव कर सकते हैं। तो हो सकता है मैं फ्यूचर में इसको हम इंप्रूवमेंट में इसका कुछ स्कोप है, बट ऑन द होल ये अच्छी रिफॉर्म के लिए जो कंपनी का कंट्रोल आपका हाथों में होता है वो चला जाते हैं दूसरा किसी का हाथों में। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये रिजोल्यूशन कोर्ट का।
1: इससे पहले कि मैं आईबीबीआई यानी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, एनक्लैट और एनसीएलटी की चर्चा करूं, मैं आपसे एक और विषय में बात करना चाहती हूं जो कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है। यानी कि एक तरफ तो हमारे बैंक्स थे जो कि स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, और दूसरी तरफ थी हमारी कंपनीज जो कि सेम समस्या से गुजर रही थी। तो ये जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, इसको एक साथ एड्रेस करना कितना जरूरी था, बजाय इसके कि दो अलग अलग हिस्सों में दो अलग अलग समस्याओं का समाधान होता। यानी एक तरफ हम बैंकों का समाधान ढूंढते और दूसरी तरफ हम कंपनियों के खराब हुए लोन्स का समाधान ढूंढते।
0: देखिए, ये दोनों चीज एक साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेके आए, बैंक्स ने रिकॉग्नाइज किया, लोन रिकवरी चालू हो गया, उसके साथ काफी सारे सेटलमेंट भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज हम बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट, मतलब आप टेबिल में आ जाओ, आप कितना पैसा आप दे सकते हैं उसके हिसाब से आपको सेटलमेंट होगा। तो क्या हुआ, उसके बाद ये सेटलमेंट चालू हुआ कंपनीज का, कंपनीज का बैलेंस शीट का भी काफी इंप्रूवमेंट हो गया। आपको, आप सुनने में आश्चर्य हो जाएंगे, 2020 से 2026 तक आप देखे कंपनीज को जो मार्केट से जो पैसा उठा है 15-16 लाख करोड़, उनका ओवरऑल कैपिटल उन्होंने मार्केट से उठाया है। और अगर आपका कैश भी देखे, उसका कैश भी उसका काफी सारा अच्छा 14 से 15 लाख करोड़ कैश है। तो उसका मतलब कि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में काफी क्लीन हो गया। उसका पैंडेमिक के टाइम में इंटरेस्ट रेट काफी नीचे चला गया, इसके लिए जो पुराना लोन उन्होंने लिया था वो सारे लोन उन्होंने रिपेमेंट कर दिया। उसका बैलेंस शीट में अभी कोई लेवरेज नहीं है। तो एक तरफ बैंक का बैलेंस शीट इज परफेक्टली फाइन नाउ, कॉर्पोरेट का भी बैलेंस शीट है वो भी काफी अच्छा अभी है, क्योंकि बैंक का कॉर्पोरेट का बैलेंस शीट में अभी कैश काफी हैंड में है, कैश इन हैंड अच्छे में है, और पैसा भी उठा सकते हैं, और उसका रेटिंग भी अच्छा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम हमारा ट्वाइन बैलेंस शीट के था, दिस इज नाउ अ प्रॉब्लम ऑफ द पास्ट।
1: हमारे श्रोताओं के लिए एक बार आप अगर संक्षिप्त में एवरग्रीनिंग का मतलब समझा सकें तो शायद हमें आगे की बात समझने में और आसानी होगी।
0: एवरग्रीन का जो प्रॉब्लम था, पहले ये बात होते थे कि पहले जब ग्लोबल क्राइसिस के बाद 2009-10 में क्या होते थे कि एक लोन अगर खराब हो गया उसमें के उसी लोन को आप ठीक करने के लिए और लोन उस कंपनी ले रहा है किसी इंस्टीट्यूशन से, उसका मेवर ग्रीनिंग बोलते। जब को पता है कि ये लोन वो वापस नहीं कर पाएंगे, आप उसको और एक दूसरा लोन देंगे उसी लोन को वापस करने के लिए, तो उसका मेवर ग्रीनिंग बोलते हैं। तो इसके लिए AQR रिव्यू हुआ था, देखना चाहते थे RBI गवर्नमेंट की कितना सारे स्ट्रेस बैंक के ऊपर है। ये अच्छा है कि वो हम चीज निकल लिया। बैंकिंग सेक्टर का आज जो प्रॉफिट ग्रोथ है, मैं आपको दोबारा बार बार बोलना चाहता हूँ, राजा रिकॉर्ड प्रॉफिट ग्रोथ है, और इसी आगे चलते भी बैंक का प्रॉफिट ग्रोथ ऐसे ही रहेगा।
1: जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि समस्या के तीन हिस्से हो गए। पहला हिस्सा हो गया समस्या को पहचानना, जो कि एसेट क्वालिटी रिव्यू ने किया। दूसरा हिस्सा हो गया

0: समस्या का समाधान ढूंढना, और तीसरा हो गया उसे इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अगर हम देखें तो IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया और NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल की बहुत अहम भूमिका रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: 2016-17 में एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफी सारे बिल लोन वेवर चलते थे। अगर कोई भी आ गया बैंक्स, कोई बोलते थे हम गवर्नमेंट पावर में आएंगे तो हमको लोन वेव कर देंगे। इसके लिए क्या होता है कि जो पहले जो लोन वापस कर रहे थे वो भी बंद कर देते, तो वो लोन वेवर खत्म हो गया। क्योंकि अभी बहुत सारे जो फार्म स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है उसके लिए आप उनको KYC उसका KCC नॉर्म्स हो गया और लोन का जो अमाउंट है वो भी बढ़ा दिया। तो इसमें भी काफी सारे रिफॉर्म्स हुआ है, अलाइव सेक्टर के लिए काफी सारे रिफॉर्म्स लेके आए फार्मर्स का इनकम बढ़ाने के लिए। तो ओवरऑल सारे सेक्टर्स अगर आप देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बात कर सकते हो, इंडस्ट्री है, रिटेल है, हर सेक्टर में कुछ ना कुछ हुआ है जिसके लिए आज बैंकिंग सेक्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ है और डिपॉजिट ग्रोथ है वो इतना अच्छा देख रहे हैं। और दुनिया में अनसर्टेनिटी भरे हुए है, आपको भी पता नहीं है आज US में क्या होगा, कल क्या होगा। आज हो सकता है कि टैरिफ लग गया, हो सकता है कि कल टैरिफ हट भी गया, हो सकता है कि टैरिफ फ्यूचर में नहीं भी आया। पर दुनिया बहुत तरफ से त्रस्त है कि क्या होने वाला है। इसका बीच में अगर इतना अच्छा परफॉर्म करना इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट है। और ये जो ग्रोथ भी हो रहा है इसके लिए क्रेडिट ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 20% के करीब क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है लास्ट 2-3 साल में। ये सचमुच मुझे लगता है कि काफी सारा एक आश्चर्य नंबर है। वो समटाइम्स वी थिंक कि इतने सारे क्रेडिट ग्रोथ कैसे हो रहा है, बट इसके अगेंस्ट में सॉलिड मैक्रो फंडामेंटल्स भी बैठे हुए हैं।
0: अब वक्त आ गया है कि हम हमारी चर्चा को बैंकिंग सेक्टर की मजबूती की तरफ लेकर चलें। जब हम बैंकिंग सेक्टर की मजबूती की बात करते हैं तो इसमें दो अहम कदम उठाए गए थे। पहला था बैंक रिकैपिटलाइजेशन और दूसरा था पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करना। पहले हम रिकैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो रिकैपिटलाइजेशन जो है वो कितना अहम कदम था ताकि पुराने नुकसानों को आसानी से अब्सॉर्ब किया जा सके?
1: नहीं देखिए, रिकैपिटलाइजेशन तो करना था क्योंकि सेक्टर के लॉस था। और रिकैपिटलाइजेशन जब कैसे किया भी था, कोई इनोवेटिव उपाय से गवर्नमेंट ने किया था। रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स था तो उसके लिए क्या था, वो कैश न्यूट्रल था। उसके लिए क्या हुआ था, डेट बढ़े थे लेकिन फिस्कल डिफिसिट उसमें नहीं बढ़े थे। तो सबसे बड़ा पहले ये चीज है। तो उसपे आई थिंक ये मुझे इतना याद है 3 लाख करोड़ का अराउंड रिकैपिटलाइजेशन हुआ था 1-2 साल में। तो सबसे बड़ा चीज वो था। दूसरा जो चीज था कि रिकैपिटलाइजेशन के लिए क्या हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर उसमें बढ़ गया था। इसके लिए आगे चलते अगर गवर्नमेंट उसको स्टेक को नीचे करना चाहते हैं तो नीचे कर सकते हैं, उसको अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको अभी पता है कि वो थोड़ा सा दूसरा का बात है कि गवर्नमेंट IDBI बैंक को डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पहले बात है। रिकैपिटलाइजेशन तो होना था, रिकैपिटलाइजेशन हमने 3 ट्रिलियन किया था, लेकिन रिकैपिटलाइजेशन हमने कैसे किया था, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड से किया था। इसके लिए हमारा ये कैश न्यूट्रल था, उसका मतलब फिस्कल डेफिसिट के ऊपर हमको इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन हमारा डेट के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। ये तो पहला बात है और ये बहुत सक्सेसफुल भी था रिकैपिटलाइजेशन एक्सरसाइज। लेकिन उसके साथ, इसके साथ जो गवर्नमेंट ने किया है जो मार्जेस, आपको पता है कि हमारा ओवरऑल पब्लिक सेक्टर बैंक 27 था लेकिन आज का दिन मार्जर होकर ये 12 था। आपको पता होगा कि एक गवर्नमेंट में अनाउंस किया कि एक बैंकिंग सेक्टर कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसका रोल होगा कि बैंकिंग सेक्टर का रोड मैप देखने के लिए। इंडिया में एक डिबेट है, अगर आप इंडिया को चाइना के साथ कंपेयर करें, चाइना में जो 4-5 लार्ज बैंक्स है, इंडिया में अभी काफी 12 लार्ज बैंक्स है, उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो सबसे बड़ा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन GDP का 22% होता है। तो ये जो 27 से 12 हो गया, इसके लिए आपको क्या हो गया था कि कंसोलिडेशन हुआ। आगे चलते हमारा कोशिश है कि हमारा बैंक्स दुनिया के सबसे अच्छा बन गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, अगर आप देखें वो बहुत ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक्स है। और इसका SBI फॉर एग्जाम्पल, उसका रैंकिंग भी काफी अच्छे है अगर आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक्स देखें। और आगे चलते हमारा यही कोशिश रहेगा, ये कंसोलिडेशन जो हमने 27 से 12 तक लेके आए, अगर हम और कुछ कंसोलिडेशन कर सकते हैं, दुनिया का जो सबसे अच्छी बैंक्स है उसमें हमें इंडिया का बैंक्स का भी रहेगा, तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल अगर इसे हम चलते रहे तो अगले 4-5 साल से हम उसी तरफ जा सकते हैं।
0: डॉक्टर घोष, क्या मर्जर का मतलब हमेशा

0: और एफिशिएंसी होता है या इसका एक दूसरा पहलू भी है?
1: नहीं देखिए, इसका पहले तो बहुत सारे है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको एफिशिएंसी, एंड इसको हम स्केल इकोनॉमीज बोलते हैं। जो काम आप समझ रहे हैं कोई एक बैंक कर रहे हैं, अगर दोनों बैंक एक साथ जुड़ जाए उसमें स्केल इकोनॉमीज काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक एक एरिया में अच्छा है, दूसरा बैंक दूसरा जगह में अच्छा कर रहे हैं, प्रेजेंस दूसरा तरफ है, तो अगर दोनों बैंक को आप जोड़ दे उसका प्रेजेंस भी बढ़ जाएगा, और इसको हम स्केल इकोनॉमी बोलते हैं। और उसपे क्या होता है, उसपे खर्चा भी कम हो जाता है, बिकॉज अगर सारे बैंक एक साथ आते हैं तो डिजिटाइजेशन के चक्कर में उसका खर्चा भी कम होता है। तो खर्चा कम होता है, स्केल इकोनॉमीज इंप्रूव होता है, जो अलग अलग मार्केट्स होता है कॉन्सोलिडेट हो जाते हैं, और विजन उसका एक साथ बन जाते हैं। तो आई थिंक ये बैंकिंग कॉन्सोलिडेशन एक अहम मुद्दा है, तो फ्यूचर में भी ये शायद होगा। और इंडिया को, जो मैं आपको पहले बोला कि फर्स्ट चीज हमको करना है कि बैंकिंग सेक्टर को हम आगे बढ़ाने के लिए हमको मर्जर का जरूरत है, और इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बैंक्स तभी हो सकते हैं जब बहुत सारे बैंक्स एक साथ जुड़ जाए।
0: जी बिल्कुल, और इसी के साथ साथ हमारी चर्चा अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गई है। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और वो ये कि अगर हम इन सब रिफॉर्म्स को एक बड़े रूप में देखें, इफ वी लुक एट द बिगर पिक्चर, तो इनके पीछे जो व्यापक विजन था वो क्या था हमारी सरकार का, हमारी लीडरशिप का, और साथ ही साथ हमारी आगे की ग्रोथ स्टोरी, हमारे बैंकिंग सेक्टर की आगे की यात्रा किस तरह की दिख रही है?
1: बैंकिंग सेक्टर, अगर आप मुझे देखें, बैंकिंग सेक्टर का आज फंडामेंटल साउंड है, स्ट्रांग है, एसेट क्वालिटी इज वेरी गुड, अंडररेटिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है, बैंक का कंसोलिडेशन हो चुका है, बैंक डिजिटाइजेशन एक्सरसाइज में बहुत आगे हो चुका है, बैंक्स का आज आप देखें एक फिजिटल एक्सपीरियंस है, बैंक का क्रेडिट ग्रोथ 20% तक जा रहा है, डिपोजिट ग्रोथ भी आप ज्यादा हो गए एफसीएल में, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का आपको पता है कि एफसीएल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में हमने 140 US बिलियन की ज्यादा मोबिलाइज किया, बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रेंथ है, और सारे चीज मिला के मुझे इंडियन बैंकिंग सेक्टर का जो विजन है वो 2047 तक एक रोड मैप है, जिसे रोड मैप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा बैंकिंग सेक्टर की कस्टमर फर्स्ट। इसके लिए इसमें अभी जो डिजिटाइजेशन है, कंप्यूटराइजेशन है, AI का यूज करके बैंकिंग सेक्टर को उसका बेस को बढ़ा रहे हैं, और चैलेंजेस तो रहेगा, सबसे बड़ा चैलेंज जो बैंकिंग सेक्टर को रहेगा डिजिटेशन का युग होगा साइबर सिक्योरिटी, उसके लिए बैंक्स को उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड विल कंटिन्यूअसली हैपन, और फ्यूचर बैंक्स का इंडिया में काफी अच्छा होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैंकिंग सेक्टर में एक आई थिंक कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ बोल रहा था, शायद बिल गेट्स बोले थे कि फ्यूचर इज नॉट अबाउट बैंक्स बट इज अबाउट बैंकिंग। सो बेसिकली बैंक्स का सर्विसेज के लिए एवरीबॉडी विल बी इंटरेस्टेड। ये जो करंट जनरेशन था, 10 साल 20 साल में हो सकता है बैंक्स के तरफ लोग और ज्यादा डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके लिए इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजिकली बैंक को सेवी होना है, और ये एक प्रोसेस जो चलते रहेगा। तो मुझे लगता है कि भारत का ग्रोथ स्टोरी बैंक के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर होश हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और आपने बहुत ही अच्छे आंकड़े हमें बताए और बहुत ही सफाई से हमें ये समझाया कि हमारा बैंकिंग सेक्टर कैसे मजबूती की ओर बढ़ा और हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में इसकी क्या भूमिका रही। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
1: धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 13वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, बैंकिंग सुधार से मजबूत अर्थव्यवस्था तक। इसमें भाग ले रहे थे 16वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: होने से सुन रहे थे दिल्ली केंद्र आई प्रोग्राम।

नायक फिल्म दा गीत से सुन रहे थी अलका याग्निक दे उदित नारायण दी आवाज च। अगला गीत सुनते हैं आतिफ असलम दी आवाज च, फिल्म दा नाम है फटा पोस्टर निकला हीरो।

आतिफ असलम ते चिन्मय श्री प्रधाति आवाज फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो का गीत तुसी सुनिया। इस तो बाद सुनते हैं उदित नारायण, श्रेया घोषाल ते विनोद राठौर दी आवाज़ च फिल्म देवदास दा गीत।

0: प्रदीप शिंदा दी आवाज से तुसी सुन रहे सी पंजाबी गीत।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: जापान के खेड मैदान हुण गूंजेगा एशिया का दम। खेडा दे सब तो वड्डे महाकुंभ एशियन खेडा का रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित का शिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानन लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडा की रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर के वक् वक् चैनल्स से FM रेनबो प्राइमरी चैनल DRM ते DTH चैनल्स से इहदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
0: असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद यानी 8:45 से तुसी सुनोगे दिल्ली तो समाचार संध्या न्यूज एट 9 ते 9:15 दिल्ली केंद्र तो ही स्पॉटलाइट।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
2: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को। ये तय किया, तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: श्री चौहान ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से उभर रहे नए बाजार अवसरों का लाभ उठाएगा।
2: FTA का जो हमारे कृषि समझौते हुए दुनिया के देश, वो भारत के किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पर दुनिया के बाजारों में जा सकते हैं, हमारे फल, हमारी सब्जी, हमारे अनाज। अगर बाजार से किसान को ठीक कनेक्ट कर दिया तो उसको दाम ठीक मिलने की गारंटी है।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 10 से ज्यादा राज्यों के कृषि मंत्रियों को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मंजूरी के पत्र भी सौंपे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलें शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों का उदाहरण बनेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल या उससे नीचे के मानक वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध अब सोनीपत में भी लागू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को

0: अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
2: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवारंटेड रेफरेंसेस।
3: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी।
4: अमेरिकी कांग्रेस के जो यहाँ पर डेलीगेशन आई हुई है उनकी मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरी से हुई और उस मुलाकात में अन्य विषयों के अलावे जो हमारी चिंताएं हैं इसको लेके कि इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर और उसके अलावे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊर्जा की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चिंताओं के बारे में उनको दोहराया उनसे।
1: फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। इन पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाजरानी मंत्रालय इन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है। भारत बांग्लादेश गंगा जल संधि से जुड़े सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग है और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर इसी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करेगी और शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से मुलाकात की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष रूप से बल दिया गया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
5: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपए में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि DBT के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।
1: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
0: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के किसान दिनेश कुमार राठौर ने बताया कि डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं।
2: अब हमारे खाते में सीधे सरकार द्वारा डायरेक्ट पैसे आ जाता है। साथ ही जब भी हम खाद या बीज लेने जाते हैं तो हमें डीबीटी के माध्यम से काफी छूट मिलता है। वहीं किसान सम्मान निधि के द्वारा अब सालाना 6,000 रुपए मिलता है।
0: इस साल अगस्त तक डीबीटी के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53,00,000 रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। डीबीटी ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
3: ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज दोहा में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की वार्षिक बैठक के दौरान कतर के वित्त मंत्री अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कतर में भारत की UPI भुगतान प्रणाली के विस्तार और दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान कतर की भारत में $10 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के जुड़ाव और द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने पर विशेष बल दिया गया। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। और अब बात एशियाई खेलों की। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में और गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाजी में नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत 6 स्वर्ण 21 रजत 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
5: मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की गिरावट से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 रुपए प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार रहा।
3: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9।

0: रेडियो में 343.6 MHz किलो हर्ट से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है स्पोर्ट्स मैगजीन का प्रोग्राम खेड संसार।
1: खेड संसार आकाशवाणी जलंधर के खेड संसार प्रोग्राम च अज साडे नाल इदां दी शख्सियत है जिदी जिंदगी दा मुख मकसद, जिदी जिंदगी दा मुख जनून, जिदी जिंदगी दा टीचा सिर्फ ते सिर्फ हॉकी रहा। अपनी भर जवानी च पहलां इन्हां ने अपने हॉकी दे हुनर नाल, हॉकी दी कला दे नाल भारत दी सेवा कीती, भारत लई नामना खट्टिया। हॉकी दे विच भारत दा नाम अपने हुनर दे जरिए पूरे संसार विच रोशन कीता। ते फिर जदों कैरियर खत्म होया ते उस तों बाद

0: आज की हेडलाइंस। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप में इतिहास रचा, स्वर्ण पदक और नया एशियाई रिकॉर्ड। महिला टीम के साथ देश के नाम किया आज का दूसरा पदक, रजत पदक। एथलेटिक्स के अंतिम दिन आया स्वर्ण पदक और साथ में 4 कांस्य पदक भी। बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल और परवीन हुडा ने शाम से फाइनल्स में एंट्री की तो नरेंद्र बेरवाल को मिला कांस्य पदक। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची और आर्चरी में भी 3 तीरंदाज रिकर्व स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल्स में। शूटिंग और एथलेटिक्स दोनों में ही शानदार प्रदर्शन आए आज, लेकिन एथलेटिक्स से पहले बात शूटिंग की। नीरू ने नया इतिहास रच दिया आज। शॉटगन की ये शेरनी खेलों के इतिहास में पहला महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली शूटर बनी। निशाने इतने सटीक कि नया एशियाई रिकॉर्ड। और यही नहीं, उन्हीं के दम पर बहुत कड़ी स्पर्धा में टीम रजत पदक भी भारत के खाते में गया। एक बार फिर तालियां बजाने के लिए सुनिए पूरा विवरण मुदिता से।
1: शूटिंग में भारत ने 1 स्वर्ण और 1 रजत के साथ यादगार प्रदर्शन किया। ट्रैप शूटिंग टीम इवेंट में भारतीय महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रही। चीन ने 346 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया, वहीं कुवैत ने 325 के साथ कांस्य पदक जीता। और फिर आया गोल्ड मेडल जो नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में हासिल किया। 26 साल की भारतीय शूटर ने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रही। उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंदी चीन की सुन युनोंग से वो 2 शॉट आगे रही। उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इसके पहले 2025 में नीरू ने वुमेन ट्रैप इवेंट में अपना पहला एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता। 2026 में नीरू ने इटली के लोनाटो में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में वुमेन ट्रैप में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। आइए सुनते हैं उनके कोच मनशेर सिंह ने नीरू ढांडा के बारे में क्या कहा।
2: She joined the academy and then COVID hit. She went back home and she got COVID and we lost her in the hospital. We couldn't find her for 10 days. And something happened to her. Found her lying in a bed somewhere with the most distressful condition. Pulled her out of there, got her support in Chandigarh. Then psychologists had to get involved because she was so traumatized. So we didn't manage all that support, got her back into the academy. Today, she's an Asian champion because of her life-changing experiences. Become the most strongest shooter in a final in the present group of shooters.
0: एथलेटिक्स के अंतिम दिन हुए सभी फाइनल्स में भारतीय उपस्थिति थी, जो दिखाती है भारतीय एथलीट्स के बढ़ते हुए स्तर को। लेकिन हाँ, अगर पदकों के हिसाब से आंकें तो जरूर पोडियम फिनिश में हम कहीं न कहीं थोड़े ढीले दिखे हैं। पिछले एडिशन में 6 स्वर्ण पदक दिलाने वाले इस खेल में इस बार अंतिम दिन तक पहले स्वर्ण पदक की बाट जोही जा रही थी और आज ये उम्मीद पूरी हुई। अंतिम से ठीक पहले की स्पर्धा में लड़कियों ने पूरी की 4x400 मीटर रिले में। पहले ही एक पदक जीत चुकी विद्या रामराज ने अंतिम लैप में क्या जबरदस्त एंकर दौड़ लगाई। पूरी ताकत के साथ शानदार फर्राटा और भारतीय राष्ट्रगान की धुन फिजा में गूंज उठी। स्वर्ण पदक 3:01.61 के साथ। आज पूरे समय बारिश की फुहारों के बीच हुई स्पर्धाओं में भारत ने 4 कांस्य पदक और जीते। 4x400 मीटर पुरुषों में डिफेंडिंग चैंपियन था भारत, आज कांस्य पदक आया। लेकिन याद रहेगी तीसरे नंबर पर जय की दौड़ जिसने भारत को लड़ाई की स्थिति में ला दिया और उसके बाद विशाल थिन्नारसु की अंतिम दौड़ बस देखने ही वाली थी। भारत को तीसरे स्थान पर ले आए वो। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जापान की टीम ने पाया। किसान परिवार में जन्मे, फौज में भर्ती होने का सपना सच करने के लिए अलीगढ़ की सड़कों पर दौड़ की तैयारी करते करते फौज में आने के बाद उनका टैलेंट पहचाना गया और आज वो गुलवीर सिंह पिछले 1-2 सालों में सबसे उम्दा प्रदर्शन करने वाले भारतीय एथलीट हैं। अपनी पेट 5000 मीटर स्पर्धा में वो 13:32.75 के साथ तीसरे स्थान पर आए और कांस्य पदक के साथ इन खेलों में अपना तीसरा पदक पाया। 40 साल बाद इन खेलों में 3 या ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने वो। ऊंची कूद में पूजा ने अपने 5वें प्रयास में 1.84 मीटर ऊंचाई पार की जो उन्हें

0: ला गई कांस्य पदक। स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान की बार्नोखोव ने 1.90 मीटर के साथ जीता। देव कुमार मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट में 7वां स्थान पाया, लेकिन उनकी तारीफ इसलिए कीजिए कि अपना बेस्ट झोंक दिया और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कुलदीप 10वें स्थान पर रहे तो महिला हैमर थ्रो में तानिया चौधरी ने भी अपना बेस्ट दिया। 65.35 मीटर दूर तारगोला फेंका, लेकिन चौथा स्थान ही पाया। महिला 800 मीटर में पूजा 7वें तो पुरुष 800 मीटर में मोहम्मद अफसल अंतिम स्थान पर रहे। एथलेटिक्स में भारत का अभियान 1 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 14 कांस्य पदक। मुक्केबाजों ने रिंग में भारतीय दबदबा आज भी बनाए रखा। पदक तो पहले से ही पक्के थे। आज सेमीफाइनल में 3 मुक्केबाज रिंग में उतरे, 2 के पंच उन्हें ले गए फाइनल्स में, यानी अब दांव स्वर्ण पदक पर रहेगा। वो दृश्य फिर से खींचने की कोशिश प्रेरणा शर्मा द्वारा।
1: इट वॉज एन इनक्रेडिबल डे फॉर इंडिया इन द बॉक्सिंग रिंग एज वेल। टू रिकैप द एक्शन फ्रॉम द मॉर्निंग सेशन, द इंडियन बॉक्सिंग कंटिंजेंट पुट ऑन एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंसेस, लॉकिंग इन 3 मेजर मेडल आउटकम्स। इन द वुमेन 65 kg सेमीफाइनल, परवीन हुडा डिलीवर्ड अ डोमिनेंट डिस्प्ले, डिफीटिंग चाइनाज ली शू 5-0 टू स्टॉर्म इन टू द फाइनल। दैट फर्स्ट हाफ विन गारंटीड हर एटलीस्ट अ सिल्वर मेडल, पुटिंग इंडिया विद इन टचिंग डिस्टेंस ऑफ अनदर गोल्ड। ओवर इन द मेन्स 80 kg सेमीफाइनल, अंकुश पंघाल पुट ऑन अ मास्टर क्लास, पुलिंग ऑफ अ ब्रिलियंट कमबैक टू आउटपंच उज़्बेकिस्तान फासलुद्दीन। हिज विक्ट्री सिक्योर्ड हिज प्लेस इन द फाइनल एंड अश्योर्ड टीम इंडिया ऑफ अनदर कंफर्म्ड सिल्वर मेडल एट मिनिमम। एंड इन द मेन्स प्लस 90 kg सेमीफाइनल, हेवीवेट स्टार नरेंद्र बरवाल स्टूड टो टू टो इन अ फियर्स बैटल अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियन एबेक ओरलबे। डिस्पाइट अ करेजियस एफर्ट, बरवाल वॉज एज्ड आउट, साइनिंग ऑफ विद अ हार्ड अर्न ब्रॉन्ज मेडल फॉर द नेशन, हिज सेकंड कंसेक्यूटिव एशियन गेम्स ब्रॉन्ज। 2 spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring. Parveen Hooda delivered a dominant display, defeating China's Li Shu 5-0 to storm into the final. That first half win guaranteed her at least a silver medal, putting India within touching distance of another gold. Over in the men's 80 kg semi-final, Ankush Panghal put on a masterclass, pulling off a brilliant comeback to outpunch Uzbekistan's Fazluddin. His victory secured his place in the final and assured Team India of another confirmed silver medal at minimum. And in the men's plus 90 kg semi-final, heavyweight star Narinder Barwal stood toe-to-toe in a fierce battle against the world champion Ebek Oralbe. Despite a courageous effort, Barwal was edged out, signing off with a hard-earned bronze medal for the nation, his second consecutive Asian Games bronze. 2 spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring.
0: आज रिकर्व की एकल स्पर्धाएं थीं। धीरज देव बोमरा से तो उम्मीदें स्वाभाविक थीं, लेकिन नीरज ने भी शानदार तीर चलाए और कुमकुम ने कमाल कर दिया, यानी तीन धनुर्धर चिड़िया की आंख, यानी स्वर्ण पदक की राह में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। और माइक की कमान मुदिता के पास आप तक ये विवरण पहुंचाने के लिए।
2: तीरंदाजी में धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों की रिकर्व एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नीरज चौहान ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रहे कोरिया के किम जे देओ को 6-4 से पराजित किया। वहीं टॉप सीड और मौजूदा एशियन चैंपियन धीरज बोमदेवरा ने ताइपे के चेंग शियांग हुई पर 6-2 से जबरदस्त जीत दर्ज की। अगले राउंड में सेमीफाइनल स्पॉट के लिए वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन धीरज का मुकाबला उज़्बेकिस्तान के अमीर खून सादिकोव से और नीरज चौहान का भूटान के लैम दोर्जी से होगा। वहीं कुमकुम अनिल मोहोद महिलाओं की रिकर्व इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में कुमकुम का मुकाबला रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कांग च्याय यंग से होगा। यंग ने भारत की ही दूसरी तीरंदाज कीर्ति शर्मा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है।
0: स्क्वाश में महिला टीम पूरे रॉ में दिख रही है। नए स्टार्स पैदा कर रहा है ये गेम्स। 18 बरस की अनहत सिंह तो स्क्वाश की नई पोस्टर गर्ल बन गई हैं। महिलाओं का जलवा आज भी जारी रहा। खुलासे के साथ मुदिता।
2: भारतीय महिला स्क्वाश टीम ने अपने आखिरी पूल सी मैच में ईरान को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। तन्वी खन्ना ने ईरान की नरगिस सुल्तानी के खिलाफ मैच जीता, जो खेल के बीच में ही रिटायर हो गयी। अनाहत सिंह ने फरिश्ते इख्तदारी को सीधे गेमों में 11-5, 11-4, 11-7 से शिकस्त दी। वहीं जोशना चिनप्पा ने भी अपना मैच ईरान के खिलाफ 11-1, 11-3, 11

0: रन 9 से जीत कर 3-0 का क्लीन स्वीप पूरा किया। पुलसी ने टॉप करने के बाद भारतीय महिला स्क्वाश टीम अब क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर से मुकाबला करेगी।
1: हाल ही में हुए डेविस कप मुकाबले में सुमित नागल दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी से हार गए थे और आज भी विपक्षी कोरिया से ही था, लेकिन सुमित के रैकेट के इरादे कुछ और थे। दूसरे राउंड के मुकाबलों में और भी भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर उतरे। टेनिस पर आज की कहानी अभिनव कुमार झा से।
2: एशियन गेम्स में टेनिस खिलाड़ियों के लिए मंगलवार का दिन अच्छा रहा। पुरुष एकल के दूसरे दौर में डीके सुरेश ने इंडोनेशिया के गुनावान त्रिसमोहन तारा को कड़े मुकाबले में 7-5 7-6 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं सुमित नागल ने बारिश के कारण दो दिन तक चले मुकाबले में दक्षिण कोरिया के सियोंग चान होंग को 6-4 6-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। उनका अगला मुकाबला उज्बेकिस्तान के सर्गेई फोमिन से होगा। आज भारतीय खिलाड़ियों के डबल्स मुकाबले भी कार्यक्रम में थे। पुरुष डबल्स के दूसरे में यूकी भामरी और डीके सुरेश की जोड़ी का सामना कजाकिस्तान की जोड़ी से हुआ, जहां भारतीय जोड़ी ने 6-1 7-5 से मैच अपने नाम किया, जबकि अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना नेपाल के अभिषेक बस्तौला और प्रदीप खड़का से होना था, जहां पूरे मुकाबले में एक तरफा तरीके से 6-2 6-1 के साथ भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज की। अब बात करें मिश्रित डबल्स की, तो मिश्रित डबल्स के पहले राउंड में अंकिता रैना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना हांगकांग के युडीस चोंग और कैरन थॉम्पसन से हुआ, जिसमें 4-6 और 4-6 के सीधे सेटों से भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार मिक्स डबल्स की इस जोड़ी का सफर एशियन गेम्स में यहीं समाप्त हुआ। हालांकि यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले के रूप में मिक्स डबल्स में भारतीय चुनौती अभी कायम है।
1: वॉलीबॉल में पूल सी में आज एक सुपर रोमांचक मैच हुआ। भारत कुवैत से पहले दोनों से ठार बैठा, लेकिन इसके बाद वो जुझारूपन और संघर्ष दिखाया कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। भारत अपने पूल में टॉप पर और माइक पर प्रेरणा शर्मा।
3: इंडिया हैव प्रोड्यूस्ड अ सेंसेशनल कमबैक टू डिफीट कतर 3-2 इन देयर फाइनल पूल सी एनकाउंटर। इंडिया हैड ऑलरेडी बीटन वियतनाम एंड हांगकांग चाइना 3-0 इन देयर ओपनिंग मैचेस, बट कतर प्रोवाइडेड अ मच टफर चैलेंज। दे एज्ड द ओपनिंग सेट 28-26 आफ्टर इंडिया मिस्ड टू सेट पॉइंट्स एंड देन टुक द सेकंड 27-25 डिस्पाइट इंडिया बिल्डिंग अ 4-point लीड मिडवे थ्रू द सेट। टू सेट्स डाउन इंडिया शोड ट्रेमेंडस कंपोजर टू टर्न द मैच अराउंड। दे केप्ट देयर होप्स अलाइव बाय taking the third set 25-23 before dominating the fourth to win 25-20 and level the contest. That sent the match into a deciding fifth set, which turned into another dramatic battle. India held their nerve in their extended tiebreak to win 24-22 and complete a stunning reverse sweep. With 3 wins from 3 matches, India finished unbeaten at the top of Pool C and advanced to the quarterfinals in style.
1: केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ, बता रहे हैं अभिनव कुमार झा। केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ, बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
2: केनो स्लैलम में भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाया है। पुरुष कयाक सिंगल हीट्स में हितेश केवट ने 118.22 सेकंड के साथ 8वां स्थान प्राप्त किया, वहीं प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने 127.70 सेकंड के साथ 10वां स्थान प्राप्त कर सेमीफाइनल राउंड के लिए अपनी जगह पक्की की। बात करें महिला कयाक सिंगल हीट में, तो शिखा चौहान ने भी 344.87 सेकंड के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने हिस्सा लिया था, जहां पल्लवी जगताप ने 7वां स्थान प्राप्त करके तो वहीं रीना सेन ने 9वां स्थान प्राप्त करके सेमीफाइनल के लिए अपना नाम दर्ज कराया।
1: बहाव वाले पानी से अब चलते हैं अपेक्षाकृत शांत समंदर की ओर। मौसम और बारिश ने सेलिंग में आज खासा व्यवधान डाला। सर्फिंग में एक ही भारतीय स्पर्धा में बचा था। आज क्वार्टर फाइनल पुरुष शॉर्टबोर्ड में लहरों से उनकी गुफ्तगू कैसी रही, जानते हैं अभिनव से।
3: Looking back at the earlier action from Pacific Long Beach in Tahara, surfing made its official Asian Games debut, a huge milestone for the sport. In the men's shortboard quarterfinals, Heat 4, India's Kishore Kumar Anbarasu went head-to-head against Toby Espejon of the Philippines. Kishore put up a spirited effort on the waves, finishing with a score of 5.37 to Espejon's 8.53, which unfortunately ended India's historic run just shy out of the medal rounds. Even though the campaign came to a close,

0: Kishore's quarterfinal appearance marked a landmark moment for Indian surfing.
1: आज से साइकिलिंग ट्रैक की स्पर्धाएं आरंभ हो गईं। भारतीय दल में कुल 14 सदस्य हैं। कई स्पर्धाओं में भारतीय साइकिल सवार हवा से बातें करने की कोशिश करते दिखे। विवरण के साथ एक बार फिर अभिनव।
2: ट्रैक साइकिलिंग में भारत के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहा। महिला टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में सेलेस्टिना, सरिता कुमारी, कीर्ति रंगास्वामी चिक्का और त्रिशा पॉल की भारतीय टीम छठे स्थान पर रही, जिसकी बदौलत उन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन फर्स्ट राउंड में चाइनीज ताइपे की टीम से हार का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही सूरत हाल पुरुष टीम स्प्रिंट का भी रहा, जहां रोहित सिंह यांगलेम, डेविड बेकहम, एल्का टोचोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोन जाम की टीम को चाइना से हार के एशियन गेम से बाहर होना पड़ा। आपको बता दें श्रोताओं की इसी चाइनीज टीम ने इस इवेंट में यानी पुरुष टीम स्प्रिंट में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। हालांकि इस इवेंट में भी क्वालिफिकेशन राउंड में भारतीय टीम ने सातवें स्थान पर रहकर फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया था। वहीं बात करें महिला टीम परशूट में तो हर्षिता झाकर, पूजा बबन डानोले, मीनाक्षी और स्वास्ति सिंह की भारतीय टीम को फर्स्ट राउंड में ज्यादा समय लेने के कारण बाहर कर दिया गया। किंतु दिन की शुरुआत इन्होंने भी क्वालिफिकेशन राउंड में क्वालिफाई करके की थी, जहां इन्होंने पांचवा स्थान हासिल किया था।
1: कुराश में कल एक पदक आया था और आज अंतिम भारतीय एंट्री भी स्पर्धा में थी। हुआ क्या, बता रही हैं मुदिता।
3: कुराश में पुरुषों के 66 किलोग्राम भार वर्ग में विपिन कुमार का अभियान राउंड ऑफ 16 में खत्म हो गया। वे साउथ कोरिया के यून ह्यूनसो से 0-3 से हार गए और इस नतीजे के साथ गेम्स में उनका इंडिविजुअल कैंपेन खत्म हो गया। इसके पहले कुराश में पिंकी मल्हारा ने महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था।
1: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के बारे में जानते हैं आप। आज की स्पर्धा की जानकारी अभिनव से।
2: स्पोर्ट क्लाइंबिंग की स्पर्धाओं में भारत की नजरें खास तौर पर महिला स्पीड क्लाइंबिंग पर रहीं। भारत की 19 वर्षीय जोगा पूर्ति ने अपने एशियाई खेल पदार्पण में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालिफिकेशन राउंड में 7.28 सेकंड के साथ 9वां स्थान हासिल करके महिला स्पीड क्लाइंबिंग के क्वार्टर फाइनल में तो जगह बनाई ही, साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी दोबारा से अपने नाम किया। स्पीड क्लाइंबिंग में खिलाड़ी 15 मीटर की एक समान दीवार पर सबसे तेज समय में ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसलिए शुरुआत, गति और संतुलन बेहद महत्वपूर्ण होता है। महिला स्पीड का क्वालिफिकेशन नागोया के पोर्ट में आयोजित किया गया। भारत के नजरिए से जोगा का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना स्पोर्ट क्लाइंबिंग में देश की बढ़ती मौजूदगी का अहम संकेत है।
0: India has jumped from the 12th position to the 10th position with the courtesy of 2 gold medals today. India's total medal tally now stands at 52 medals, broken down into 6 gold, 21 silver and 25 bronze. China leads the table with 143 gold, 62 silver and 49 bronze, followed by Japan in second with 45 gold, 71 silver and 67 bronze medals, and the Republic of Korea in third with 24 gold, 27 silver and 44 bronze medals.
1: कल कुश्ती आरंभ होगी, जिसमें पदकों की खासी उम्मीद है। निशा और सुनील कुमार मैट पर होंगे। महिला हॉकी सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से भिड़ंत होगी। बॉक्सिंग में प्रिया और लवलीना सेमीफाइनल जीतने के प्रयास करेंगी। शूटिंग में 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश होंगे और मिक्स्ड ट्रैप स्पर्धा भी होगी। आर्चरी में कंपाउंड के मुकाबलों में भारतीय पदकों की ओर बढ़ने के प्रयास करेंगे। स्क्वैश में महिला टीम सिंगापुर से भिड़ेगी क्वार्टर फाइनल में। जूडो भी कल शुरू होगा और गोल्फ भी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही मैदान पर होंगे। इसके साथ ही ई स्पोर्ट्स, सेलिंग, कैनो स्लालोम और साइकिलिंग में भी भारतीय खिलाड़ी दिखेंगे।
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

ये यादें भी कमाल होती हैं, गम में खुशी लाती हैं और खुशी में गम। जी दोस्तों, सरगम प्रोग्राम लेके आशा थोड़ी सेवा च हाजिर।

बड़ी देर तक याद आते हैं सफर में बेवक्त बिछड़ने वाले। आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र से प्रोग्राम चल रहा सरगम।

इंतज़ार भी, उम्मीद भी, वफा भी, बस मिलने का नसीब नहीं। सरगम प्रोग्राम दी आखिरी पेशकश।

0: मंजिल का शौक नहीं हमें, कभी सफर में रहना भी अच्छा लगता है। सरगम प्रोग्राम से बस इतना ही, चल दे यहाँ दिल्ली के अंदर जितो सी सुनो गया 11 बजे हिंदी च समाचार, 11:05 अंग्रेजी च समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
2: India rejects the unwarranted references.
3: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: And no external party has any locus standi on this issue.

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 7% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
1: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP, हम बाजार से कैसे जोड़ दें किसानों को। ये तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में 65वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में पुरस्कार पाने वाले 20 कलाकारों को सम्मानित किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन ललित कला अकादमी ने किया। इस मौके पर श्री शेखावत ने रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित सेवा ही संस्कृति पहल इसका अच्छा उदाहरण है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में श्रम संवाद नाम से जिला स्तर पर क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एक निजी कानून फर्म के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं और उद्योग से जुड़े लोगों को नए श्रम कानूनों के प्रमुख प्रावधानों और उनके पालन से जुड़ी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करना था। नागालैंड में कोहिमा पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की 7,740 बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने आज जारी एक बयान में बताया कि यह खेप कल दोपहर जुब्बा थाना क्षेत्र में नियमित जांच के दौरान एक ट्रांसपोर्ट वाहन से पकड़ी गई। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है। मामले की जाँच जारी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली है। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amid challenges arising from evolving technology, unpredictability, and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi today, Mr. Singh said the country's goal is clear, that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. The minister underlined that the ongoing Operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said the government is working on a multidimensional strategy to ensure that farmers receive fair and remunerative prices for their produce. The strategy includes strengthening post-harvest management, scientific warehousing and marketing systems. Addressing the second day of the National Agriculture Conference Rabi Campaign 2026 in New Delhi today, Mr. Chauhan assured 100%

सीधा प्रसारण श्रवण करोगे। प्रोग्राम में शामिल होने लिए व्हाट्सएप का सुनेहा पहुँचता करने लिए 94-655-3607 नंबर ते अपना प्यारा जिहा सुनेहा पहुँचता कर देना जी। तो फोन लाइन के लिए 0181-3342-171 ते तुसी फोन मिला देना 0181-3342-171। तो जी कर रहे हैं शुरुआत अज दे प्रोग्राम दी, प्रोग्राम स्वागत। मैं हरप्रीत एक बार फिर तो सब का स्वागत करता हाँ।

प्रोग्राम स्वागत की दी शुरुआत इस प्रोग्राम के नाल मैं हरप्रीत एक बार फिर तो थोड़ा सारे का करता हाँ स्वागत तो जुड़ चुके ने साढ़े नाल मलोट तो नथू राम शर्मा जी ललित शर्मा इंदराज शर्मा सुरेश शर्मा इस प्रोग्राम दे विच अपनी फरमाइश भेज रहे हैं तो जरूर तुहाडी फरमाइश नूं जल्दी ही मैं पूरा करांगा जी। तो नाल ही नाल वड़िंग खेड़ा पंजाब तो भी मिंटू थॉमस पिंकी लवली अरोड़ा जुड़ चुके ने उन्हां दा भी स्वागत करते हैं। वड़िंग खेड़ा पंजाब तो जुड़े ने साढ़े नाल ते अनित सं अनीता संधु जी रोहित संधु रितेश संधु शिखा संधु ते प्रतिशा संधु ते मैक्स ए भी जुड़ चुके ने गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर तो सुरिंदर संधु ते इहनां दा इह सारा परिवार जुड़िया होया प्रोग्राम दे विच ते प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्कार ते राम राम जी। जलालाबाद वैस्ट तो सुरेश गगनेजा पूनम जी विशाल प्रिया दिशानी ते निमित आहूजा इस सब प्रोग्राम च जुड़े हुए ने ते साडे नियमित सरोचन जो संदीप बाजार पटियाला तो प्रेम कुमार रहेजा ते उहनां दा सारा परिवार कांता राणी जी चरण रहेजा डैनी नीतू ज्योति सजनी जुड़ चुके ने इन्हां सब दा स्वागत करते हाँ। तो एक फरमाइश नूं करांगे जी पूरा हरजीत हरमन दी आवाज़ दे विच सुणदे हां ये अगला गीत।

इस वेले स्टडी घड़ी मुताबक रात 11:33 का समा होने वाला है। अगली फरमाइश सानू व्हाट्सएप तो पहुंची कनेरा मल्ला पटियाला तो बता परिवार मुकेश बता जी नीलम बता नितिन पलक करण गीतू निहारिका हार्दिक तेवंश बता जुड़े हुए ने। हंसराज हंस की आवाज़ के फरमाइश कर रहे हैं गीत सुन की। और नाल ही नाल प्रोग्राम दे विच साडे कोल साडे नियमित स्रोतियां दे विचों एक हरजिंदर छिंदारी जसवीर जसी सीता और गीता भी जुड़े ने पिंड नथाणा बठिंडा तो, इन्हां दा भी स्वागत करदा हाँ प्रोग्राम दे विच। ते नाल ही नाल सानू सुनेहा भेजिया है जी बठिंडा तो रविंदर सिंह गगनदीप कौर जसमीन कौर गुरलीन कौर ते शिंदरपाल जी ने भी बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम दे विच। ते सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टी डी मल्होत्रा रितिक मल्होत्रा जी प्रतीक जी अनिल जी जयवीर सिंह ते कालका तो शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज भी जुड़े ने। ते सुखबीर साजली जी तुहाडा भी स्वागत करदे आ सुखबीर सिंह जी कोमलप्रीत ते रोशनप्रीत सुन रहे ने प्रोग्राम तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम दे विच। अगला गीत हंसराज हंस की आवाज़।

प्रोग्राम चल रहा है जी सौगात ते एक गीत मैं एक ऐसी आवाज़ च सुना जा रहा जी ये मेरी अपनी पसंद है गीत आवाज़ है जी जगजीत सिंह जीरवी दी ते बड़ी पहला तकरीबन आज तो 1.5 साल पहला मैनू याद है जी इस आवाज़ के विच एक गीत उसर वे बरूटे आए गीत सुनाया सी ते अक्सर इस गीत की फरमाइश उस तो अगले दिन दे विच मेरे को आई सी पर मैनू अज पंजाब दी इस आवाज़ दा दी याद आई ते मैं तुहाडे नाल इस गीत नू सांझा कर रहा है ढोल मेरा मेरा वे जगजीत सिंह जीरवी दी आवाज़ च

प्रोग्राम चल रहे जी स्वागत ते स्टूडियो कड़ी मुताबक इस वेले रात दे 12 बज के ते 25 मिनट दा समा हो रहा है। देश विदेश विच तुसी इंटरनेट दे माध्यम राही साडी मोबाइल ऐप दे जरिए जुड़े हुए हो, प्रोग्राम सुन रहे हो स्वागत ते मैं तुहाडा साथी हरप्रीत। अगला गीत बबू मान दी आवाज च। स्वागत करती है चकला बाजार शहर समाणा तो पप्पू राजा खुशदिल, संगीत राणी जिंदल, पप्पू स्माइल खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदल, संजीव सुनीता बंटी जिंदल, आरजू महे खुशदिल ते सारा खुशदिल परिवार जुड़िया होया है जी, स्वागत कर रहा है। ते जी प्रेम कुमार हेजा ते सरहंदी बाजार पटियाला तो जुड़े ने जी सारे परिवार दे नाल, ते प्रोग्राम दे विच तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनदे हां गीत बब्बू मान दी आवाज़ दे विच।

0: हाथी तेरे छापा चले बाही तेरे चूड़ा, हाथी तेरे छापा चले बाही तेरे चूड़ा, नी दस क्यों पाया सी प्यार जंगीरो गूड़ा, नी दस क्यों पाया सी प्यार जंगीरो गूड़ा।
1: कोट पेंट तू पाके फिर दा लिखन न जाने उड़ा, कोट पेंट तू पाके।

बोल दी लेके छापा चले, लुट के सब कुछ ले गई जट दा कख रहा ना पले, लुट के सब कुछ ले गई जट दा कख रहा ना पले। पुली जुली गहने पाते विकिया पीड़ी मूड़ा, पुली जुली गहने पाते विकिया पीड़ी मूड़ा। नी दस क्यों पाया सी, नी दस क्यों पाया सी।

0: ते कर तू याद न सूड़न दस क्यों पाया सी प्यार जंगीरो कूड़ा
1: हासे पाने भी तू एवें मुँह कर लेना मोटा लड़न मरन ते उतरे आउना जो पुतरिया छोटा लड़न मरन ते उतरे आउना जो पुतरिया।

दीवाजदी कड़ा वजदा कड़ोली।

0: हड्डी मर जाना टूट दे मैं बोला।
1: सूरज लगदा मथे टूट ना बोले, सूरज लगदा मथे टूट ना बोले।
0: हड्डी

श्री गुरु ग्रंथ साहिब सर्ब सांझीवालता बराबरता प्रभु प्रेम सुचजी जीवन जुगत सर्ब धर्म सद्भावना वाले अणमुले सिद्धांतों के खजाने ने इन्हां विचली उचारित बाणी धुर की बाणी है। मुखारबिंद गुरु साहबान भगत साहबान प्रभु भगति नाल एक सुर होए महापुरखां दा है। एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक प्रभु उस्तत है, मनुखता वास्ते मार्गदर्शन है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी राग बिलावल विच उचारे शब्द विच मंगलाचरण उपरंत बेअंत प्रभु दे कथन तो परे गुणा बारे हवाला दिंदे हन कि हे प्रभु, तू तां वड्डा राजा है, जे मैं तैनू मुखिया आखदा हाँ तां तेरी की वड्याई करदा हाँ। हे प्रभु, ओ वी जैसी तू मत दिंदा है मैं उस अनुसार ही आप जी दे बारे बयान करता हाँ। मैं मूरख की उस्तत कर सकता हाँ। मैनू आप जी दे गुण बयान करन दी सोझी बख्शो, जिस नाल मैं आप जी दी रजा विच राजी रह सका। जो कुछ भी वरत रहा है वह सब तेरे हुक्म विच ही वरत रहा है, ये आप ही जानते हो। आप बेअंत प्रभु हो, मैं ज्ञानहीन हाँ, मेरी की सियाणप है, मैं की कहां, मैनू तो कोई गल आउंदी ही नहीं। तेरी कथा अकथ है, जो तैनू पौंदा है मैं तो उही आख सकता हाँ। ये तो बहुत थोड़ी

0: कहा हो मिया तेरी कमन वडाई, जो तू दे सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कहण न जाई। इस शब्द गायन की तसी बीबी जसपिंदर नरूला होरा ने। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम, पाले अकिर्त कना पूरन दृष्ट तेरी राम। सृष्टि दा स्वामी करता पुरख दयालु है, उसकी उपमा बयान नहीं कीती जा सकती, क्योंकि असी अल्प बुद्धि वाले जीव हाँ। उता अपनी सम दृष्टि द्वारा अकृत कणा की भी प्रतिपालना करता है। वो बलशाली है, उसका ओज अमिट है, वो अमितोज है। मेरे हर जियो सबको तेरा वस, असा जोर नाही जे किच कर हम साकह, जो पावै तिवै बक्स। तिलंग राग विच स्थापना है, वो बलशाली प्रभु ही मन दा आसरा है, ते उसे नू ही जपना चाहिदा है। तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। सर्व कला समर्थ सर्वोच्च परमात्मा दे ओज दा बल दा पसारा चौं दिशावां विच सर्वव्यापी है। उसका मेहर भरिया हथ सब सृष्टि दे जीवां उपर है। जदों ओ किरपा वाले कटाख खोलदा है, मेहर दी नज़र करदा है, ता अपने प्यारियां दा हर प्रकार दा दुख दर्द दूर कर दिंदा है। सुनदे हां संदीप कौर होरां पासों वार्ता। चतुर दिशा कीनू बल अपना, सिर ऊपर कर तारियो।
1: ए शब्द तनासरी राग विच पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर अते शक्तिशाली शब्द है। ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 681 उत्ते सुशोभित।

है। तनासरी महला पंजवा। चतुर दिशा की नोबल अपना सिर ऊपर कर तारियो। प्रभु ने चारे दिशावां विच अपनी ताकत तपसारा किता होया है अते उसने मेरे सिर उते अपना मेहर भरिया हथ रख्या है। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो। उस परमात्मा ने मेरे वल मेहे दी नज़र नाल वेख्या है अते अपने सेवक ते सारे दुख दर्द दूर कर दिते हन। हर जन राखे गुरु गोविंद। गुरु गोविंद ने अपने सेवकां दी हमेशा रख्या कीती है। कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बखसंद। रहाओ रहाओ ठहराओ है केंद्री भाव है। उस दयालु अते बख्शनहार प्रभु ने अपने सेवक नू गल नाल ला के उसे सारे औकुण पाप अते गलतियां मिटा दित्ते हन। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। प्रभु दा सेवक अपने मालक ठाकुर तो जो कुछ भी मंगदा है प्रभु उसनू ओही कुछ बख्श दिंदा है। नानक दास मुक्ते जो बोले इहां उहां सच होवे। हे नानक प्रभु दा दास अपने मुहों जो भी बचन बोलदा है ओ इत्थे इस लोक विच अते उत्थे परलोक विच पूरा होंदा है। इस शब्द विच गुरु साहिब दसदे हन कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है अते उसकी ताकत हर पासे फैली हुई है। जदों ओ अपने सेवक ते कृपा करदा है तां उसदे सिर ते अपना हाथ रखदा है अते उसनू गल नाल लगा के उसदे सारे गुनाह माफ कर देंदा है। परमात्मा अपने भगतां दी हर अरदास पूरी करदा है अते भगत दे मूहों निकले हुए बचन इस लोक अते परलोक दोवां थावां ते सच्चे साबित होंदे हन। ये शब्द सानूं परमात्मा दी शरण विच रहण अते उसी रजा विच विश्वास रखण दी प्रेरणा दिंदा है। इस शब्द दे अर्थां अते भावनावां नूं बिल्कुल सही तरीके नाल दर्शाउंदे होए श्री गुरु अर्जन देव जी अते उन्हां दे अनन सेवक भाई मनजी दी एक बहुत ही प्यारी इतिहासिक घटना है। ये साखी दसदी है कि किवें गुरु पातशाह अपने सेवक ते औगुण बख्श के उसनू गल नाल लाउंदे हन अते सिख जो भी मंगदा है ओ पूरा करदे हन। भाई मंजरी जिन्हां दा पहला नाम तीर्था सी श्री गुरु अर्जन देव जी दे दर्शन करन तो बाद उन्हां ने सिखी धारण कर ली। भाई मंजरी रोज़ाना जंगल विच्चों लकड़ां कट के लियाउंदे सन तां जो गुरु का लंगर अतुट चल सके। एक दिन भाई मंजरी जंगल विच्चों लंगर लई लकड़ां दा पार सिर ते चुक के वापस आ रहे सन कि अचानक बहुत तेज़ हनेरी अते तूफान आ गया। हनेरा होण कारण उन्हां नूं रस्ता नज़र नहीं आया अते ओह रस्ते विच पैंदे एक सुक्के खूह विच डिग पए। डिगण दे बावजूद भी भाई मंजरी ने लकड़ां दा पार हेठां नहीं रख्या। उन्हां सोचिया कि जेकर लकड़ां खूह दे पाणी जां चिक्कड़ विच पिज गईयां तां गुरु के लंगर विच अग किवें बलेगी। ओह सारी रात खूह विच सिर ते लकड़ां चुकी गुरबाणी दा जाप करदे होए खड़े रहे। अगली सवेर जदों गुरु अर्जन देव जी नूं पता लगा तां ओह आप कुछ सिखां नूं नाल लै के उस खूह ते पहुँचे। खूह विच रस्सा लमकाया गया अते भाई मन जी नूं बाहर आउण लई कहा गया, पर भाई मंज जी ने पहला लकड़ां बाहर कढ़वाइयां तां जो लंगर दी सेवा विच विघन ना पवे अते फिर आप बाहर आए। जदों भाई मंज जी खूह विच्चों बाहर आए तां उन्हां दे कपड़े चिक्कड़ नाल लिबड़े होए सन, पर गुरु अर्जन देव जी ने उसे वेले

ਟੇਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੁਲਹਿਆਲ ਪਤਾ।

दे दे मंगे सैसा गुणा सो करे संसार, चोरा जा रहा तै कुरियारा खराबा बेकार, एक हुंदा खाए चले ऐथाऊ तिना पेकाई कार, जल थल जिया पूरिया लोआ आकार आकार, ओए जिया कैसो तू है जाने इतना पे तेरी सार, नान पक्ता पुख सलान सच नाम आधार, सदा आनंद।

बिन सतगुरु के नैना पायो, बिन सतगुरु के नैना पाया, सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगट आग सुनाया, सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विच मोह चुकाया, उत्तम विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया, जग जीवन

0: ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ।
1: ਬਹੁਤ ਜਨਮ

0: पढ़िया जेते बर्फ बर्फ पढ़िया जेते मास पढ़िया जेते यार जा पढ़िया है जेते सास नानक लिखे एक गल और हो मैं जखना चाख महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते ता कड़िया बहु तीर्थ भविया ते तो लव्या बहु पेख किया देही दुख दिया शोभे जिया अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बोध पाया दूजा पाया वस्त्र न पहरे एनस करे मोहन विभूता क्यों जागे गोर बिन सूता पग पिता अपना किया कमाना अलमल खै श्री शाही पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विण नावे किश थाए ना पाई रह बिमानी मड़ी मसानी आंद न जाने फिर पछताणी

0: कूड़ मिठा कूड़ मख कूड़ डूबे पूर नानक बखाने बेनती तुद बाज कूड़ कूड़ महला पहला
1: सच ता पर जानिया जरदा सचा होए कूड़ की मल उतरे तन करे अशा तो हे सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार।

0: पहला दुखदार सुख रोग भया जा सुखताम ना होई। तू करता करना में ना ही जाओ करी ना होई। भले हारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा हो। जात में जोत जोत में जरदा कलकला पर पूर रहया। तू सच्चा साहिब सवाल जिन की थी सो पार पया। कौरान करते किया बात जो कुछ करना सो कर रहया।
1: योग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण है खत्री शब्द सूर शब्द शूद्र शब्द प्राकृत है सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पेयो नानक ता का दास है सो निरंजन देव माला दूजा एक विष्णु सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा वास देव से को जाने पेयो नानक ता का दास है सो निरंजन देव महला पहला कुंभे पता जल रहे जल बिन को मना होए ज्ञान का पता मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी
2: ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣੇਗਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਆ ਜਿਹੇ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਹੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀਆ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨੇ ਖੇਡੀਆ ਜਿਤ ਦਰ ਗਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀਆ ਪੜਿਆ ਤਿਉ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਗਾ ਵਿਚਾਰੀਆ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੁਗ ਮਾਰੀਆ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੁਗ ਮਾਰੀ।

संत नाम भज नानक राम रंग आत्म थ्यों रौ होछो काज अल्प सुख बंधन कोट जन्म कहाँ दुख पौ सिख्या संत नाम

माया मत कहां लो गारो, शतर न पतर न चोर न चावर, बहती जात रिधे ना बिचारो, रथ ना असव न गज सिंहासन, छिन में त्याग नांग सिधारो, सूर न वीर न

प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत इसे त्याग आन को जाचा मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूर सिमर सुखदा।

विष्टा अस्त क्रिम उदर भरयो है तह दिसताए महाबिखिया को पर तन छीन अज्ञान हरयो है। जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूतन

ਗਰਦ ਕਰਿਓ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਉਦਰ ਸੇ ਨਾਨਕ ਕਰ ਕਿਰਪਾ।

औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रो खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उच्चारी इशनान दान तापन सुच केरया चरण कमल हृदय प्रभ तारी साजन मीत सखा हर बंद जी तान प्रभ प्राण अदारी ओट गही स्वा

0: सदा बलहारी।
1: आवधि कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग, दामन बंदियो ना जात विदे मन।

अहनस सहज स्वभाये दर्शन परसय गुरु के

जस पास बैठिया सोहिया सबना दावे सा हो।

गोरमुख होवा सो मुक्त कहिया, मन मुख बंद विचारे

না পারে, যেসন নদর করে সোই জন পায়।

ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ।

0: दुआ प्रतापे का सत अगर्थ वाहो कल जुरथ गन का कूड़ अगर्थ वाहो महला पहला।
1: श्याम कै स्तंभ स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको।

पौड़ी सदगुरु विटोवारे अंजत मिलिया खसम संभालिया जिनकर उपदेश ज्ञान अंजन ग्रह नेत्री जगत ने हलिया खसम छोड़ दूजा लेके डुबे सेवन जा रहा सतगुरु है बहुत था विरले कने विचारिया कर कृपा पार उतारिया।